मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

0: तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मेरे देश की धरती पर हमने प्यारा तिरंगा लहराया है। मेरे देश की धरती पर हमने प्यारा तिरंगा लहराया है। एकजुट होकर रहे हम सब, ये राग दिलों पर छाया है। गर्व से कहते हैं हम सब की, गर्व से कहते हैं हम सब की, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरे देश की धरती पर हमने तिरंगा लहराया है। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। जग के रचयिता परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन में तू ही प्रथम और तू ही हमारा आधार है। कण कण में तेरा ही वास है, तेरे बिना न जीवन की आस है।

जब भी डगमगाए मेरे पग प्रभु, तू ही खड़ा हो मेरे संग, तेरी कृपा की छाया महान, मुझको तूने दिया जीवन दान।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख है अवधेश शंकर अवस्थी का, स्वर डॉक्टर किशोर सिन्हा का।
1: पर्यावरण आज के संदर्भ में संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश को कहा जाता है। विकास के अधुनातन दौर में मनुष्य ने अधिकाधिक प्रगति की है। इस प्रगति ने जहां प्रकृति पर मनुष्य के नियंत्रण को मजबूत किया है, वहीं प्रकृति से ज्यादा प्राप्त करने का अवसर भी बढ़ा दिए हैं। इस बढ़े हुए अवसर को और बढ़ाने की लालसा में आज का मनुष्य इस तरह लिप्त हो गया है कि उसने प्रकृति के भरपूर दोहन की नीति अपना ली है और इस कारण प्रकृति का संतुलन डगमगा उठा है। छटपटाती हुई प्रकृति हमसे विद्रोह करती जा रही है, हमें चेतावनी देती जा रही है, लेकिन हम उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। पर्यावरण पर लगातार छाता जा रहा जहर अब इस सीमा तक आ गया है कि इसने पूरी दुनिया को विवश आत्महत्या के कगार पर ला खड़ा किया है। पाश्चात्य संसार में पर्यावरण संबंधी विचार हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही उठी थी, लेकिन सजग दृष्टि और मौलिक अवधारणाओं के अभाव में उन पर आगे काम न हो सका। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर्यावरण संबंधी कानून बने, लेकिन इस कानून ने गांवों को अस्थिर कर उन्हें शहर की ओर मोड़ दिया। गांव शहर की ओर भागने लगे और ऐसी स्थिति में गांव के प्राकृतिक परिवेश की पूरी तरह उपेक्षा हुई। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार धरती की खुशहाली के लिए भूमि के एक तिहाई हिस्सों में वनों का होना आवश्यक है, क्योंकि वनों की हरितिमा वातावरण के असंतुलन को पाटती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य ऑक्सीजन निकालते हैं। यदि इनके बीच असंतुलन की स्थिति हो गई तो मानव जीवन के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए वन संपदा की सुरक्षा पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यक शर्त है। वैसे देखा जाए तो पर्यावरण बदलने या बिगड़ने के तीन मुख्य कारण हैं: निरंतर बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण की तीव्र गति और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन। क्लब ऑफ रोम के एक वैज्ञानिक मीडोज ने अपनी गणना में भयंकर संकेत दिया है कि मानव भयंकर यातनाओं से गुजरता हुआ अपने ही उद्योग जनित प्रदूषण द्वारा घुटकर मृतपाय हो जाएगा तथा जल, थल और वायु सभी दूषित हो जाएंगे। ये शुभ लक्षण है कि आज विश्व के कोने कोने से इस दिशा में जागरूकता दिखाई दे रही है। यूरोप की जनता द्वारा राइन नदी के प्रदूषण को लेकर काफी रोष प्रकट किया गया। इसी प्रकार भारत में गंगा नदी की स्वच्छता और सफाई की दिशा में भी काफी प्रयास हुए हैं। आज जबकि बढ़ते प्रदूषण का धीमा जहर धरती के कोख में फैलता जा रहा है, यदि हम इसी तरह सोए रहे तो निश्चित ही यह जहर हमें भी मौत की नींद सुला देगा। इसलिए आवश्यकता है इस दिशा में जागरूकता की, प्रयास की और अपने अपने दायित्व बोध की। पर्यावरण का संरक्षण वस्तुतः राष्ट्रीय क्षेत्रीय दायित्व बोध मात्र नहीं है, बल्कि एक विश्वव्यापी मानव हित का कार्य है, मानव सभ्यता को बचाने का कार्य है। मानव धर्म की ही भांति एक संपूर्ण पर्यावरण धर्म की आज आवश्यकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख था अवधेश शंकर अवस्थी का, स्वर डॉक्टर किशोर सिन्हा का। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है लता मंगेशकर का। संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर था लता मंगेशकर का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकोट।
1: किसान दादा दीदी मन असन तो सफाए फसल के कमनी करे सास, उसने चे गोटोक फसल होय से गोंदरी, आरु गोंदरी के सफाए जाने सास। दखा गोंदरी कांदा बीती फसल होय से एचो कमानी करतो काजे सबले पहिल खेती चो तैयार करुक पड़े से, और माटी रहे से उनके भुरु भूरा बनातोर होय से, और पानी खेती थाने नी मांडो हुनी काजे पानी चो निकासी काजे पहिल एके वल ध्यान देव पड़े से। गोंदरी फसल कमानी काजे दुई मुटिया भूई बारू असन जुगे अच्छा रहे से। मानत दखा करिया दुई मुटिया नाले लाल वीती माटी ने बले गोंदरी चो कमानी करुक लाय सकास। अच्छा फसल धरतो काजे पीएच मान 5.8 ले 6.5 होतोर होय से, और उतार चढ़ाव जोन थाना से डोंगरी असन तो असन थाने का गोंदरी चो फसल धरुकलाय नी होय, ये थाने नी होय बोलू। जोंदरी गोंदरी कांदा चो बाढ़ती काजे जुगे दीना चो समय अच्छा रहे से, बलन शीतकार बेरा एचो मान होय से 13 डिग्री ले धरुन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकलाय सके। उसने चे दखा गोंदरी चो बीज चो मात्रा के बले जान तो राय 8 ले धरुन 10 किलोग्राम बीज के 2.5 एकड़ चो हिसाब ने ये नर्सरी ने बोलू 8 ले धरुन 10 इंच ऊपरे ओरी असन माटी करुण बाती एथन चेगान देखलाय असन करुण बात तैयार करुकलाय सकास। असन वाटले कर लेने का है कि लाटा बूटा नाले कीड़ा किटिम बले जो कि जो टुकलाय नी सकोस। गोंदरी के ए बिच समया ने 10 ले धरुन 20 ग्राम नानी नानी बीती गोंदरी तैयार करुन भाती लगा कलाय सकास। गोंदरी फसल जुगे करुन शीत बेरा और घाम बेरा लगा कलाय सकास। मानतर एबे चो समय ने लगा लेने जुगे अच्छा रहे से। दखा दादा दीदी मन उन्नत किस्म चो नाव एके बले जानुक पड़े से, बल्ले ने जुगे उपज आम के मीरे दे, तो ये उन्नत किस्म मन चो नाव के मैं सांगे से अर्का निकेतन N241 एग्री फाउंड लाइट रेड पूसा रेड पंजाब रेड राउंड इतलो ये उन्नत किसी मंचो बीच बोलू हो ऐसे गोंदरी चो। असने दखा खद भात के बोले देतो समय आने के बोले लेख करू पड़े से कसन खद देत रहे के जान तो रहे। कंपोस्ट FYM 25 टन 2.5 एकड़ चो हिसाब ने देव कलाय सका। नत्रजन 217 किलोग्राम स्फुर 315 किलोग्राम पोटास 109 किलोग्राम 2.5 एकड़ चो हिसाब ने लगा कलाय सकास। मानतर रोप तो पहल माटी ने बलू मिलान देतो रहे से, ये जुगे अच्छा रहे से। उसने च दखा गोंदरी फसल थाने 1 ले धरुन 2 हार बलू निंजाई करुकलाय सकास। लाटा बूटा के गुचा कलाय सकास, और पानी बले समय समय ने छिड़काव होय दे, कौन कौन समय ने सूखे दे उसन समय ने ध्यान देव पड़े से, और कियारी मन के पानी बोलने उन थाने ठेबुक दे तोर नवाए पानी नीरो नाल उन बूटा कून जाए दे। असने दखा 75 ले धरुन 90 दिन होली तो ये थाने मैलेइक हाइड्राजाइड 1500 ले 25600 PPN बोलुआ ते के छिड़काव करुकलाय सकास। नहाले 0.1 ले धरुन 0.2% 1 लीटर पानी ने घोलन भाती बूटा मन ने बोल छिड़काव करुक लाय सकास। असन बोलू 15 दिन पहले बूटा थाने बोलू देवक लाय सकास। असन उसन वाट कर लेन का गोंदरी जुगे बोलू फसल धरुक लाय सकास।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहतया पाड़। वादक कलाकार हैं सुनारू और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पहतयापाड़, वादक कलाकार थे सुनारू और साथी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 3 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए, 9:55 पर और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आज के आकर्षण होंगे। कविता पाठ में सुनिए मनोज पानीग्राही की कविताएं, साथ ही फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म ममता के गीत। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10 बजे मेरी पसंद। सुबह 10:30 पर गुड़दुम कार्यक्रम में आप सुनेंगे सिरधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नरगिस दत्त पर। 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम रुसरुसा। इसमें सुनिए चंद्रकांत राजा भाग 5, गायिका होंगी शांति और साथी। लोक साहित्य पत्रिका दोपहर 12 बजे मोचो माटी, इसमें आप सुनेंगे संतोष कुमार जोशी की कविताएं, राजेंद्र राव राउत की हल्बी कहानी। छत्तीसगढ़ी कविता अरुण कोमरे से, कार्यक्रम के संपादक होंगे भरत कुमार गंगातीत्य। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट का प्रसारण किया जाएगा। श्रोताओं, रोजाना की तरह दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम कला और कलाकार। शाम 5:05 पर समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे गंगाराम और साथियों के गाए भत्री नाट गीत। 7 बजे होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम घलर, इसमें आज आप सुनेंगे दैमती नाग और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पिलामन का जेगोट हल्बी बोली में, प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम नंजर हल्बी बोली में, इसमें आप सुनेंगे गुलजार सिंह बघेल से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेल पत्रिका, इसमें आप सुनेंगे नैना सिंह धाकड़ से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगी पूर्णिमा सरोज। रात्रि 10 बजे सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस, प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर का। दोपहर 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए, 9:55 और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार क्रमशः संस्कृत फिर हिंदी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को शीबा सिंह का स्नेहिल अभिवादन। आज नमस्कार जगदलपुर के कार्यक्रमों में कविता पाठ में मनोज पानीग्राही की कविताएं, साथ ही फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

पेड़ पौधे हैं धरती की शान, इनसे ही है हमारा जीवन और जान। प्रकृति का जो करेंगे सम्मान, सुरक्षित होगा तभी भविष्य महान। पर्यावरण की रक्षा, मानव की सुरक्षा। श्रोताओं, पर्यावरण से जुड़ी हम और भी बातें करेंगे, क्योंकि आज है 5 जून और आज के इस दिन को हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
3: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
8: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
9: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
10: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जैसा कि आज हम मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पेड़ हम किस प्रकार लगा सकते हैं। पेड़ लगाना और संसाधनों का सही उपयोग बेहद आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस का जो महत्व है, पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, पानी और भोजन हमें इसी से मिलते हैं। श्रोताओं, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि और प्रदूषण जैसी समस्याएं आज हमारे सामने विकराल रूप लेती जा रही है। 5 जून का दिन हमें इन मुद्दों पर विचार करने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का अवसर देता है। यदि हम इतिहास की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा वर्ष 1972 में की गई थी। इसके बाद से पहला पर्यावरण दिवस 5 जून सन 1973 को मनाया गया। तब से हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र एक नई थीम और एक नए मेजबान देश तय करता है, जिसके जरिए पूरी दुनिया को एक विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दे पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम किस प्रकार से अपने जीवन में पर्यावरण दिवस मना सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा अपने घर के आसपास वृक्षारोपण, पेड़ लगाकर अपने घर या आसपास खाली जगह पर पौधा लगाएं, पानी की बर्बादी रोकें और वर्षा जल का संचय करें और उसको बढ़ावा दें, जिसके कारण हम जल संरक्षण कर सकते हैं। प्लास्टिक का बहिष्कार करें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें।

0: श्रोताओं, वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। यह कई गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थानों द्वारा समर्पित है और पर्यावरण का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक आउटरीच दिवस का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान करता है। श्रोताओं, जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए, क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले चरण में और लीजिए सुनिए कविता पाठ मनोज पानीग्राही से।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं मनोज पानीग्राही अपनी काव्य पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वन है सोना। वन है सोना, इसे न खोना। वन है सोना, इसे न खोना। इसे खोने से पड़ेगा रोना। वन देती है हमें लकड़ी इमारती। वन देती है हमें लकड़ी इमारती। इसके बदले वह हमसे कुछ न मांगती। वन है सोना, इसे न खोना। इसे खोने से पड़ेगा रोना। वन से प्राप्त होता है हमें जड़ी बूटी वाली औषधि। वन से प्राप्त होता है हमें जड़ी बूटी वाली औषधि, जिससे दूर हो जाती है हमारी सारी व्याधि। वन में रहते हैं शेर, चीता, बंदर, भालू व हाथी। वन में रहते हैं शेर, चीता, बंदर, भालू व हाथी। वन को काट कर ना छीनो इनकी आज़ादी। वन को कहते हैं हम हरा सोना। वन को कहते हैं हम हरा सोना। इसे खोने से पड़ेगा रोना। वन है सोना, इसे न खोना। इसे खोने से पड़ेगा रोना। वन से ही प्राप्त होता है हमें वन उपज। वन से ही प्राप्त होता है हमें वन उपज, जिसकी बिक्री कर पूरी करते हैं हम हमारी जरूरत। वन के कारण ही धरती की है हरियाली। वन के कारण ही धरती की है हरियाली। न होगा वन, न होगी नभ में लाली। वन है सोना, इसे न खोना। इसे खोने से पड़ेगा रोना। वन में रहते हैं अनेकों जंगली जानवर। वन में रहते हैं अनेकों जंगली जानवर। वन को काटकर इन्हें न करो बेघर। वन के कारण ही होती है वर्षा। वन के कारण ही होती है वर्षा। न होगा वन तो हर जीव पानी को तरसा। पेड़ों से ही मिलती है हमें शुद्ध वायु। पेड़ों से ही मिलती है हमें शुद्ध वायु, जिससे होती है हर जीव की आयु चिरायु। वन की न होने दे हम अंधाधुन कटाई। वन की न होने दे हम अंधाधुन कटाई। कट गए वन तो जिंदगी की होगी तबाही। वन है सोना, इसे न खोना। इसे खोने से पड़ेगा रोना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पेड़ से मिलती है छाया। पेड़ से मिलती है छाया। गर्मी में शीतल होती है काया। प्रदूषित हो रही है वायु। प्रदूषित हो रही है वायु। पेड़ों से शुद्ध होती है वायु। जीव की होती है आयु चिरायु। जीव की होती है आयु चिरायु, पेड़ से मिलते हैं हमें मीठे मीठे फल। पेड़ से ही मिलते हैं हमें मीठे मीठे फल, पेड़ से सीखो होना निश्चल। पेड़ पर पक्षियों का होता है बसेरा, पेड़ पर ही पक्षियों का होता है बसेरा, जड़ के कारण ही जमी रहती है यह धरा। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पर्यावरण। पंच तत्वों से मिलकर बना है मेरा यह पर्यावरण, पंच तत्वों से मिलकर बना है मेरा यह पर्यावरण, लोग कहते हैं मुझे यह पर्यावरण। पंच तत्वों से मिलकर बना है मेरा यह आवरण, लोग कहते हैं मुझे पर्यावरण। बच्चों को दे यह पहली शिक्षा, बच्चों को दे यह पहली शिक्षा, पर्यावरण का हम करें सुरक्षा। हम सभी का हो एक ही नारा, हम सभी का हो एक ही नारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। पंच तत्वों से मिलकर बना है मेरा यह आवरण, लोग कहते हैं मुझे पर्यावरण। प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। प्राकृतिक संसाधनों का करें हम सदुपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का करें हम सदुपयोग, यही होगा हमारा पर्यावरण संरक्षण का सहयोग। प्रकृति देवी का करें हम अनुसरण, प्रकृति देवी का करें हम अनुसरण, मिलकर बनाए हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण। कहते हैं सारे वेद पुराण, कहते हैं सारे वेद पुराण, एक वृक्ष है 10 पुत्रों के समान। पंच तत्वों से मिलके बना है मेरा यह आवरण, लोग कहते हैं मुझे पर्यावरण। वन्य जीव वनस्पतियां का करें हम संरक्षण, वन्य जीव वनस्पतियों का करें हम संरक्षण, मिलकर बनाए हम एक बेहतर पर्यावरण। मिलकर करें हम जैव विविधता का संरक्षण, मिलकर करें हम जैव विविधता का संरक्षण, इससे ही संतुलित रहता है हमारा पर्यावरण। पंच तत्वों से मिलके बना है मेरा यह आवरण, लोग कहते हैं मुझे पर्यावरण। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नक्सल मुक्त हुआ बस्तर हमारा। देखा था मैंने एक सपना प्यारा प्यारा, देखा था मैंने एक सपना प्यारा प्यारा, नक्सल मुक्त हुआ बस्तर हमारा। 4 दशकों से चल रही थी यह लड़ाई, 4 दशकों से चल रही थी यह लड़ाई, बस्तर ने फिर ली अंगड़ाई। लालगढ़ नक्सलगढ़ का था बस्तर पर्याय, लालगढ़ नक्सलगढ़ का था बस्तर पर्याय, पुनर्वास से जुड़ना है समझा इसका अभिप्राय। भय मुक्त हुआ अब बस्तर का वातावरण, भय मुक्त हुआ अब बस्तर का वातावरण, सभी ने किया स्वस्फूर्त आत्मसमर्पण। समाज के मुख्य धारा से जुड़ना है लक्ष्य, समाज के मुख्य धारा से जुड़ना है लक्ष्य, नक्सलवाद का हो समापन यह है प्रयोजन। जब जल जंगल जमीन है अपना, जब जल जंगल जमीन है अपना, तो क्यों जनता के सरकार को नहीं है अपनाना। देश के संविधान का करना है सभी को पालन, देश के संविधान का करना है सभी को पालन, मौलिक अधिकारों का न होगा हनन। नक्सलवाद आतंकवाद है एक अभिशाप, नक्सलवाद आतंकवाद है एक अभिशाप, निर्दोषों बेगुनाहों के मौत का कौन देगा हिसाब। हथियार गोली बारूद व बम, हथियार गोली बारूद व बम, इससे शांति नहीं मिलेगी यह जानते हैं हम। गणतंत्र की नहीं अपितु गणतंत्र की जय हो, गणतंत्र की नहीं अपितु गणतंत्र की जय हो, लोकतंत्र से चलता है देश इसकी सदा विजय हो। देखा था मैंने एक सपना प्यारा प्यारा, नक्सल मुक्त हुआ बस्तर हमारा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माटी। माटी की ओढ़नी और माटी का बिछोना, माटी की ओढ़नी और माटी का बिछोना, माटी में जन्म लिया और माटी में ही है मरना। माटी सदा ही साथ रहता, माटी सदा ही साथ रहता, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश हो या हार जीत, सब यहीं पर है पढ़ना है सहता। अकेले ही जन्म लिए हैं हम, अकेले ही जन्म लिए हैं हम, अकेले ही है जग पड़ता छोड़ना, माटी की ओढ़नी और माटी का है बिछोना। माटी में बीता बचपन खेल कूद कर, माटी में बीता बचपन खेल कूद कर, जवानी बीती पैसा कमाने में, आया बुढ़ापा दिन गिनता मैं, आया बुढ़ापा दिन गिनता मैं, कब प्राण छूटे मेरे इस माटी के पुतले से। माटी की ओढ़नी और माटी का है बिछोना, एक ही लक्ष्य है तराना, माटी की ओढ़नी और माटी का बिछोना, माटी के लिए ही जीना है और माटी के लिए ही है मरना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एहसास। बेहद ही होता है खास, बेहद ही होता है खास तेरे पास होने का एहसास, बेहद ही होता है खास तेरे पास होने का एहसास, वह हर लम्हा भी होता है खास जब तुम होती हो पास। तेरे पास न होने से मन रहता है उदास, तेरे पास न रहने से मन रहता है उदास, जब तुम होती हो पास तो सोचता हूँ मैं कि तुमसे यह कहूँगा मैं, तुम जब होती हो पास तो सोचता हूँ मैं कि तुमसे यह कहूँगा मैं, जब आ जाती हो पास तो मन में होता है यह संकोच, नियंत्रित कर लेता हूँ मैं अपनी सोच, मेरी व्याकुलता मेरी तड़प मेरी दिले दास्ता, क्या कैसे करूँ तुमसे तुम मुझे बता। तेरे नजरों का ये उठना व झुकना, तेरे नजरों का ये उठना व झुकना बड़े ही लगता है मुझे सुहाना, तेरे मुंह से निकली बोली, तेरे मुंह से निकली बोली जैसे मानो हो मिश्रिक की डली, तेरी मोरनी सी चाल व बलखाती चाल, तेरी मोरनी सी बलखाती चाल, तेरे घुटने तक के लंबे लंबे बाल को देखकर मुझे आता है यह एहसास, क्या यह सपना है या है यह सच, क्या यह सपना है या यह है सच, यदि यह है सपना तो यह मैं सपना देखता रहूं, यह यदि यदि है सच कभी ना छूटे यह सपना, और यदि है यह सच तो क्या मैं तेरी खामोशियों को तेरी मैं हाँ समझूं। तेरा सजना सवरना, तेरा यूं सजना सवरना यूं इठलना, तेरा आकर्षक रूप ऐसे लगे जैसे बारिश के बाद निकली हो धूप, एहसास ही जिंदगी है और जिंदगी है एहसास, बेहद ही होता है खास तेरे पास होने का एहसास। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शून्य हूँ मैं। शून्य हूँ मैं, शून्य हूँ मैं, गोल आकृति है मेरी निशान, शून्य हूँ मैं, शून्य हूँ मैं, गोल आकृति है मेरी निशान, शून्य के रूप में है मेरी पहचान, आर्यव्रत में आर्यभट्ट ने किया मेरा सर्वप्रथम प्रयोग, आर्यवत में आर्यभट्ट ने किया मेरा सर्वप्रथम प्रयोग, देश दुनिया में गणित में इस विषय में, देश दुनिया में मेरा गणित के विषय में, प्राकृतिक समसंख्या अंक के रूप में होता है मेरा उपयोग, जिस अंक के सामने लग जाता हूँ मैं, जिस अंक के सामने लग जाता हूँ मैं उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, मुझे यदि किसी संख्या का गुणा भाग कर दे तो उसका परिणाम शून्य हो जाता है। शून्य का अर्थ कुछ नहीं को दर्शाता है, शून्य का अर्थ कुछ नहीं को दर्शाता है, परीक्षा के परिणाम में यही शून्य सभी को डराता है, जो करता है कड़ी मेहनत शिक्षा ग्रहण करने में, जो करता है कड़ी मेहनत शिक्षा ग्रहण करने में, शून्य उसके आसपास भी नहीं उसके आता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला यान, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला यान अंक शून्य के बिना नहीं जाता है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला यान अंक शून्य के बिना नहीं जाता है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का बल भी शून्य रह जाता है। अंग्रेजी की भाषा में शून्य कहलाता है जीरो, अंग्रेजी की भाषा में शून्य कहलाता है जीरो, जीरो ही है सभी संख्या में हीरो, मित्र हो तो शून्य की तरह, मित्र हो तो शून्य की तरह, जिसके साथ होने से स्वयं का मान भी 10 गुना बढ़ जाता है, मित्र हो तो शून्य की तरह, जिसके साथ होने से स्वयं का भी मान 10 गुना बढ़ जाता है, अंक अकेले एक में एक ही होता है, अंक एक अकेले में एक ही होता है, उसके साथ शून्य लग जाता है तो वह 10 बन जाता है। शून्य हूँ मैं, शून्य हूँ मैं, गोल आकृति है मेरी निशान। धन्यवाद।
0: कविता पाठ में अभी आप सुन रहे थे मनोज पानीग्रही की कविताएं। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: और अब पेश है मधुरी माँ। तुम्हारी हर बात पर ये दिल कुर्बान हो जाता है, तुम्हारी हर बात पर ये दिल कुर्बान हो जाता है, न जाने क्यों तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है।

हर धड़कन में एक राज होता है, मोहब्बत में हर लम्हा खास होता है। मिट जाती है दूरियां पल भर में, मिट जाती हैं दूरियां पल भर में, जब कोई दिल के इतने पास होता है।

तुम क्या जानो मेरे दिल का हाल क्या है, तुम क्या जानो मेरे दिल का हाल क्या है, बस एक तुम ही तुम हो, बाकी सब तो सवाल है।

तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत किनारा हो, तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत किनारा हो, जहाँ खड़ी होकर मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पुकार।

आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
4: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
7: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
9: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
8: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
10: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
8: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
10: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
8: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
4: The government has set consumer price index based inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and a lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of West Asia conflict posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jeevan Bhavsar, Akashwani News, Mumbai.
8: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkanth Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C. for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameswaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA alliance in Andhra Pradesh has decided to allot 3 of the 4 vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and 1 seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA alliance partners held at its camp office in Amravati the previous night. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with the heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the U.S. does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. The Russian president also said that Russia proposed to India to work jointly on manufacturing the fifth generation Su-57 fighter jet. Putin added that his country is ready to provide India with critical technologies for major defense platforms and weapons. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Program to build awareness to save life on Earth. A report.
6: The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Minister of State, Kirti Vardhan Singh, will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park at Maidangadi in the national capital under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. Several union ministers, chief ministers, ministers, MPs, MLAs will participate in World Environment Day events at the state level. The day raises awareness, mobilizes action and promotes environmental sustainability. Through campaigns, events and initiatives, the day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency and addressing environmental challenges for a sustainable future. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has extended greetings to the citizens on World Environment Day. In a social media post, Dr. Jaishankar encouraged everyone to work towards a greener, cleaner and more sustainable future. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav also urged the countrymen to renew their pledge to remain inspired by nature for the climate and future. Union Minister Dr. Jitendra Singh will inaugurate two-day Lavender Festival at Bhadarwa in Jammu and Kashmir tomorrow under the theme Lavender Goes Global. The fourth Lavender Festival is being held at Government Degree College, Bhadarwa in Doda District on June 6 and 7. The festival will witness enthusiastic participation of scientists, startups, aroma industries, entrepreneurs, policymakers, agribusiness stakeholders, students, progressive farmers, and representatives of fragrance and wellness companies from across the country. A two-day national workshop on seafood exports will begin in Visakhapatnam today to discuss ways to increase India's seafood exports and strengthen the sector across the country. The workshop will focus on improving seafood exports through better infrastructure, value addition, certification, traceability and policy support. Discussions will also be held on increasing the participation of startups and small businesses in the export sector. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. According to the Met Department, Arunachal Pradesh is expected to witness thunderstorms and lightning today. Moving on to sports, India will take on arch-rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamegahara Hockey Stadium in Japan today. In the Women's Under-18 Asia Cup, India progressed to the semi-finals after remaining unbeaten in the group stage and will face China today. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
11: Thank you, Naresh. On its front page under the headline Push for India-Venezuela Ties, Hindustan Times carries a picture of Prime Minister Narendra Modi and Venezuela's acting president Delcy Rodriguez. The paper says the two leaders held talks on forging a long-term energy partnership and collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy. Reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. In its editorial titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6 day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
8: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30

0: और सुनीता गोडबोले, जिन्हें गोडबोले दंपत्ति के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ के आदिवासी इलाकों में ये 40 वर्षों तक निस्वार्थ चिकित्सा सेवा दे रहे हैं और इन्हें वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी इलाका है वो काफी दुर्गम है। इन्होंने मिलकर अब तक 1,00,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया है। श्रोताओं, इसी सेवा के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता गोडबोले से। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: जी। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं वैसे पहले पुणे में ही रहती थी, मतलब मेरा जन्म और शिक्षा पूरा सभी मेरा पुणे में हुआ। और जब मैं शिक्षा ले रही थी तभी मेरे महाविद्यालयीन जीवन ने, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो अखिल भारतीय संगठन है, छात्र संगठन, उससे जुड़ी थी। और उनके जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता और अधिकारीगण, प्रोफेसर भी उसमें रहते थे, कुछ पूर्णकालिक जो कार्यकर्ता रहते थे, उनके द्वारा जो हमको जानकारी दिया जाता था या उनके साथ जो संवाद होता था हमारा, उसके कारण हमारे मन पर ये प्रभाव पड़ा कि भाई हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऐसे समूहों के लिए करना चाहिए, ऐसे समुदायों के लिए करना चाहिए जिनको उसका, मतलब जो भी सामाजिक इसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी मौका होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, वो जिनको कम है और अभी भी वो थोड़े से पीछे हैं बाकी समाज से, ऐसे समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। मेरी मतलब पढ़ाई पूरी होने के बाद, मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क हूँ, तो मास्टरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, तो क्यों ना मैं आदिवासी समाज में, जनजाति समुदाय में काम करूँ, इसलिए मैं इस काम में आई।
0: जी, तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ माओवादी प्रभावित इलाकों में, तो वो विकास की राह से काफी पीछे हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए कितनी मुश्किल था उन इलाकों में?
1: बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम जब 1990 में हम यहाँ बारसूर जो है दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा गाँव, उस समय इसकी जनसंख्या केवल 3,000 थी। आज वो नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उस समय केवल 3,000 जनसंख्या थी। इतने छोटे से गांव में जो हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उनके जो अधिकारी, उन्होंने हमको भेजा यहाँ पर और बताया कि भाई आप यहाँ पर अस्पताल चलाने का काम डॉक्टर गोडबोले जी करेंगे और सुनीता जो है वो महिला उनके लिए काम करेगी। तो इस प्रकार से हमारा काम शुरू हुआ। और तो उस समय तो यहाँ तो कुछ सुविधा ही नहीं थी, मतलब पानी और बिजली का इतना बात नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत ही अनास्था थी। और कोई भी एक केवल 5वीं तक का एक स्कूल था, और जो बाद में फिर एक 8वीं तक, कुछ सालों बाद 8वीं तक भी हो गया। और अस्पताल तो डॉक्टर जरूर था, लेकिन वो जो थे लोगों की यहाँ पर, मतलब कहना ऐसा था कि अरे नहीं, आश्रम के डॉक्टर भैया आ गए, बहुत अच्छा हो गया, हमको अभी दवाई अच्छा से मिलेगी। तो इसलिए आश्रम के जो वहाँ, मतलब अस्पताल था जो हमारा जो था, उसका महत्व नहीं, मतलब उसकी आवश्यकता ज्यादा महसूस होते गई।
0: जी, तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं हमारे अबूझमाड़ प्रदेश की और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग की, तो वहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की दरकार हमेशा से रही है, और वहाँ बारिश के दिनों में हम देखें तो कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है, मलेरिया, डेंगू, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो इस समय जब इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो आप लोग उन इलाकों में कैसे पहुंच पाते हैं?
1: नहीं, देखिए, हमने दो प्रकार का काम किया। शुरू में तो हमने अस्पताल चलाया जहाँ पर मरीज हमारे पास आते थे, और ज्यादातर जैसे जैसे मतलब लोगों में ये जानकारी हो गई कि आश्रम का अस्पताल फिर से शुरू हो गया है, तब वैसे वैसे बहुत 35-35 किलोमीटर दूरी से भी मरीज हमारे यहाँ आते थे। अबूझमाड़ का के द्वार पर बारसूर है, वहां से इंद्रावती पार करने के बाद तुरंत अबूझमाड़ शुरू हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अबूझमाड़ के इलाके से बहुत सारे मरीज जो रोगी जो है हमारे पास आते थे। और इसमें ज्यादातर मरीज ये कुपोषण के और खास करके मतलब आपने जैसा कहा वो मलेरिया के और मतलब एक कमर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसे मतलब बार बार हम एक ही बीमारी को बार बार होना, जैसे मलेरिया जो बीमारी है वो बार बार होना, उस समय हमें ये मतलब टीबी के मरीज भी बहुत मिलते थे और इसके कारण हमने ऐसे मरीजों को जगदलपुर ले जाना जो मरीज को हम समय पर यहाँ पर ठीक नहीं कर सकते। जैसे बच्चों को मलेरिया आता है तो उसको गुनिया के पास पहले वो लोग ले जाते हैं, मांड्रिक के पास ले जाते हैं, तो ऐसे मरीज को स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ कोई अस्पताल जैसी मतलब बेड की वगैरह सुविधा नहीं थी, तो बाद में जब 4-5 साल के बाद एम्बुलेंस मिल गई तब हम उनको ट्रांसफर करना शुरू किया कि तुरंत दौड़ाना उनको जगदलपुर। हमारी एम्बुलेंस और ड्राइवर हमेशा तैयार रहता था, पैसे की कभी कोई कभी पूछताछ हम नहीं करते थे, जैसे ही मरीज आया दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि वो ही बेचारे 20-30 किलोमीटर चल के आते थे और ऐसे में वो मरीज को मतलब जल्दी से जल्दी बिना ज्यादा समय गवाए पहुंचाना ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होता था और वो हम पूरा कर पाते थे और जब बच्चा अच्छा होता हो जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। तो मुख्य रूप से मतलब बारिश में तो ये कटाफ ही होता था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से कितना भी बोलो वहाँ के मरीज यहाँ आना और हम वहाँ जाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारा भी एक अस्पताल का रूटीन बन गया और ये हो गया और फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब ये चालू हो गया अपना अस्पताल, सरकारी अस्पताल धीरे धीरे चालू हो गए, तब हमने अंदरूनी मरीजों के तक ले जाने के लिए मेडिकल कैंप शुरू किए, मतलब कम से कम 20 किलोमीटर अंदर से गांव में मेडिकल कैंप लगाना, क्योंकि ऐसे लोगों को बारसूर आने की सुविधा ही नहीं थी, क्योंकि तब तक भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग ज्यादातर काम करना चालू किए और उन तक पहुंचाना, मतलब जो मरीज अंदर अंदर पारा के नहीं पहुंच पाते हैं ऐसे मरीजों को पहुंचने के लिए हमने मेडिकल कैंप जगह जगह शुरू किए।
0: जी सुनीता जी, अभी आपने बताया कि जब ऐसी स्थिति आती है आपात कोई स्थिति तो घर वाले बैगा बुनिया के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि चूंकि ग्रामीण अंचल है और वहाँ पे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जब नहीं मिल पाती हैं तो वो अक्सर करके इस तरह के झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक होता है स्वास्थ्य के लिए और किस तरह लोग इसके चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं?
1: बहुत सारा होता था उस समय तो और ज्यादा, क्योंकि मैं अब जब हमारा चर्चा हुआ वैसे कि सुविधा कुछ थी नहीं आने जाने का, तो उनके सामने और कोई चारा भी नहीं था और शुरू से ही वो मान्यता भी थी कि भाई मांत्रिक के पास जाएंगे तो। दूसरी एक बात छोटी सी जो छोटी है लेकिन बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब भी कभी उनको बारसूर तो ठीक है लेकिन बारसूर या जगदलपुर या रायपुर भी जाना है या दंतेवाड़ा भी जाना है ना सरकारी अस्पताल में, तो उनके लिए वो एक अलग माहौल है, उनके लिए वो भाषा अलग, वो सामने वाले दिखने वाले सब लोग अलग, जो शहरी है जिनको हम पायका बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो ऐसे लोगों के साथ उनको बात करने में डर लगता है, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई वहां जाने की जगह अपन मांड्रिक के पास ही जाएंगे, तो हमको ये भी काम करना पड़ा शुरू में कि ये जो भाई आप बच्चे का जान गंवा रहे हो और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जान गंवानी पड़ी सांप काटने में, इसमें भी वो पहले मांड्रिक के पास ही जाते हैं और मलेरिया जैसी बीमारी यहाँ खतरनाक फाल्सीपेरम मलेरिया है, मतलब किलिंग पेटल मलेरिया है, तो ऐसे मलेरिया में तो उनको तुरंत दवाई की आवश्यकता है, मांड्रिक के पास जाके वो करना ठीक नहीं है, ये धीरे धीरे हमने उनके मन में बिठा दिया कि बच्चे की जान अगर समय पर आपको बचाना है तो आपको समय पर दवाई, आप उसका मलेरिया है नहीं है टेस्टिंग करिए, उसके बाद आप दवाई लेके उसके बाद आप अगर जाना है तो मांड्रिक के पास जा सकते हैं। तो ये उनके मन में हमने विश्वास दिलाया कि भाई आपको दवाई बहुत आवश्यक है तो आपको उसके लिए आना चाहिए, टीबी के लिए भी मांड्रिक के पास जाके पूरा खोखला हो जाएगा पेशेंट अंदर, उसके बाद वो हमारे पास आता था, मतलब बहुत ही कठिन था उस समय।
0: जी जी जी, वाकई में इस परिदृश्य में काम कर पाना काफी कठिन होता है। जी, आपने उन सब परिस्थितियों में काम किया है, तो सुनीता जी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे और बातें करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई ये गीत।
1: हाँ, मेरे पसंद का चयनित तो ये है कि जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबां, फिर माया का गीत है।
0: जी, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पद्मश्री सुनीता गोडबोले जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनीता गोडबोले से, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये अभुजमाड़ और बस्तर के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कार्य करती हैं। सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम आपसे जानना चाहेंगे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होने के बारे में कि जब आपको पता चला कि आपको नामित किया गया है और आपको प्रदान किया जाएगा, आपको कैसा लगा?
1: पद्मश्री पुरस्कार को तो हमें 25 जनवरी को पता चला, 25 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय से फोन आया था। बहुत अच्छा लगा और हम इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और हमारा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, इन सबके आभारी हूँ। और दक्षिण बस्तर जो क्षेत्र है, ये पूरा खाली उसका नाम लेते ही सुकमा, दंतेवाड़ा जो भी नाम लेते ही नक्सलवाद इतना ही लोगों के मन में उभर कर आता था। अब हम सोचते हैं कि ये सब होने के कारण लोगों में बस्तर में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वनोपज, जैविक खेती, इसके बारे में जो भी प्रश्न है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। कृषि को लेकर भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज वहाँ के लोग भी मतलब कृषि आधारित जो इनकी जीविका है उसको अगर अच्छे से करना है तो जैविक खेती जो है वो और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब हमारे मन में मतलब उसी समय ये सभी बातें भी आई कि भाई ये केवल हमारा बड़ा मतलब हमको महत्व मिले ये बात इसमें नहीं होना चाहिए, तो बस्तर के जो प्रश्न है वो सामने आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ये बात ही पहले सबसे पहले मन में आई।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनीता जी, डॉक्टर रामचंद गोडबोले और आपको दोनों को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। हाँ। तो जिस क्षेत्र में आपको प्रदान किया गया है, बस्तर जैसे सुदूर अंचल में फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को देना, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी घटना हुई हो कि जिस व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचना जरूरी था लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई?
1: एकदम एकदम, हमारे पहचान के मतलब कार्यकर्ता ही है हमारे
0: जी।
1: और तो उनकी बेटी को वो ला रहे थे हमारे पास, उसकी बेटी को झटका आ रहा था और वो अबूझमाड़ मतलब नदी के उस पार, इंद्रावती के उस पार, और दो मतलब इंद्रावती उस उधर भी इंद्रावती दो तीन बार पार करके जाना पड़ता है
0: जी जी।
1: ऐसा वो ऐसे वो मंगनार करके गांव है वहाँ का वो व्यक्ति पगनू दादा उसको हम बुलाते हैं। समय वो उनकी बेटी केवल 5 साल की थी
0: जी जी।
1: तो वो उसको लेके वो आ रहे थे और आते आते मतलब उसको पहले तो जैसा अभी बात हुआ अपना वैसे मांत्रिक के पास ही गए थे वो
0: जी।
1: उसके बाद फिर कुछ ठीक नहीं हुआ करके फिर इधर लाएंगे भाई बारसूर आश्रम में ले जाएंगे अस्पताल में करके ला रहे थे। लाते लाते ही बीच में बारिश के दिन तूफान बह रही थी इंद्रावती और उसके में दो नाव डालना और उसको लाना ये बहुत जोखिम भरा काम था
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने अपने बच्ची के चलते वो सब किया और इस बार आ गए बारसूर तरफ आ गए, लेकिन वहां से भी तो 5 किलोमीटर इधर आना था, लेकिन ये सब करते करते वो बच्ची का जान गए जैसा हो गया ऐसा मतलब वो एक्चुअली वो गई ही थी लेकिन उनको लगा कि इसकी जान है शायद तो, लेकिन वो पूरी ही खत्म हो गई थी। फिर वो उसको पार करके फिर वो घर चले गए, वहां से फिर मांत्रिक के पास गए, फिर मांत्रिक ने उनको बताया कि नहीं इसका इलाज नहीं हो सकता। ये घटना जब उसने हमको जब अगले शुक्रवार बाजार लगता है यहाँ वो बाजार के दिन आया वो और रोते रोते पूरा बात बता रहा था, तब हमको इतना दुख हुआ और इतना ये लगा कि उसके बाद का जो पानी खत्म होने के बाद की जो धूप है वो धूप के दिनों में हम गाँव में ये बताना जाना शुरू किया कि अरे भैया आप लोग इस प्रकार से ऐसा घर में मत रखो, आप कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उसको लाओ

0: रही है, लेकिन सरकार ने जब देना चालू किया तो कुछ लोगों के ध्यान में आया, कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर भी अभी भी अंदरूनी इसमें उसका रख रखाव ठीक से रखना जानते नहीं है, फिर वो दो चार महीना उपयोग करते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक झकझोरने वाली ही घटना थी कि इतनी छोटे बच्ची का उन्होंने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि वो घर में बैठे रहे, लेकिन थोड़ा देर से प्रयास होने के कारण और बारिश के कारण उनको वो और देर हुई और उसके कारण वो अपने बच्ची के जान से हाथ धोना पड़ा
1: जी,
0: और उसके लिए वो आज भी पछताते हैं।
1: जी जी जी, इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। और रामचंद्र गोडबोले जी और आपने मिलकर जो कार्य किया है ये काफी सराहनीय है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: गरजत तो बरसत सावना आयोरे, सुमन कल्याणपुर जी का है, बरसात की रात का गाना।
1: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं सुनीता जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनीता गोडबोले से, जिन्हें हाल ही में 2026 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से हैं और बारसूर में रहती हैं। वहीं इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कई कार्य किए हैं, दुर्गम इलाकों में इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में आप वहां रहकर अभी जो चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा से संबंधित कौन कौन से सेवा कार्य आपने और निर्धारित किए हैं?
1: हाँ, हम लोग मेडिकल कैंप हमारे अंदर अंदर गांव में, जहां पर कुछ पहुंच नहीं है अभी किसी की और उन लोग आ नहीं सकते मरीज लोग इस प्रकार से, तो वहां पर हम करते हैं। केवल मेडिकल कैंप नहीं लेना है, उसका फॉलोअप भी लेना है कि कौन से मरीज को कमजोरी के लिए दवा

0: करना है तो डॉक्टर साहब 3 महीने की दवा लिख के देते हैं। हम 3 महीने की दवा तो एक साथ नहीं दे पाते क्योंकि उनकी उतनी समझ है नहीं है कितना खाएंगे ये सब, तो उनको 15 दिन की पहले दवा देते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं। फिर उसके साथ साथ मतलब फॉलोअप का ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो रेफरल मरीज है, मतलब जो मरीज जिसको सुना ही नहीं दे रहा है, क्या किसी को कोई महिला है उसको कोई पीसीओडी या गायनेक कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को हम जगदलपुर ले जाते हैं। आवश्यकता पड़े तो कभी जब पास में है तो छोटा बीमारी है तो दंतेवाड़ा भी ले जाते हैं। तो ये रेफरल का सर्विस हो गया ये मेडिकल कैंप के बारे में। और दूसरा है एक जो मुख्य हमारा अभी पिन पॉइंट प्रोग्राम है वो है मास, मतलब माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिविएशन स्कीम, यानी आपको कुपोषण और रक्ताल्पता खून की कमी, ये दो के बारे में, क्योंकि सभी उनकी जो बीमारी की जो जड़ है वो आज इतने मतलब कम से कम 20-22 साल के बाद हमको ध्यान में आया, यानी हमने अध्ययन करके ये निश्चित किया कि भाई ये खून की कमी ही उनके जड़ में है। तो ये खून की कमी अगर कम करना है तो उसके लिए हमको सुपोषित मतलब पोषक आहार देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 3 साल से 13 साल के बच्चे का जिसका हीमोग्लोबिन कम है 8 से नीचे है, ऐसे बच्चों को हम चुनते हैं सिलेक्ट करते हैं और उनको हम 6 महीना का पोषक आहार देते हैं, ताकि उसके साथ साथ हम मल्टीविटामिन आयरन, उनको मलेरिया ना हो इसलिए मलेरिया की दवाई तो सबसे पहले पेडियाट्रिशियन को दिखाना, उनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो सब क्या उसका उपयोग करना, उसके बाद फिर ये मल्टीविटामिन और ये सब चालू करना, पोषक आहार चालू करना, और उसके साथ साथ फिर उनको उनका वजन लेना और हर महीना उनका खून जांच करना। इसी से हमको पता चला। फिर इसके साथ साथ हमने दाल और तेल भी बढ़ाया ताकि वो दोपहर का भोजन में दाल खाए ताकि प्रोटीन उनको जाए, क्योंकि प्रोटीन की कमी है भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, इसके कारण शरीर में मजबूती नहीं है और वो जो जब वो 40 के हो जाते हैं तो वो अलग अलग बीमारियों की बीमारियां नहीं मतलब दर्द का शरीर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसी शिकायतें करते हैं। तो उसका कारण मूल कहा कैल्शियम और प्रोटीन की कमी। तो ये सभी बातें हम उनको देते हैं और उसका पूरा लाभ होता है। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट है कि जिसका हीमोग्लोबिन 7 था 6 था नॉन रिकॉर्डेबल था, ऐसे हीमोग्लोबिन 12 तक गया है। तो ये एक प्रोग्राम हो गए। अच्छा, इससे भी और एक बेसिक कार्यक्रम ऐसा है कि 6वीं से आकर 11वीं तक के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बिठा के उनको अपने शरीर को जानो, यानी शरीर ही आपका महत्वपूर्ण है, शरीर ही सभी इसका साधन है, उसको आप अगर कुछ काम करना भी चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या आईएएस बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो तो पहले आपका शरीर ही अच्छा चाहिए। तो इसलिए आपके शरीर को जानो और उसको स्वस्थ रखो, अपने घर में जो कुपोषण है, रक्ताल्पता है, खून की कमी है उसको पहचानो। वो कैसे पहचानना आदि बातें हम बताते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर गुटखा गुड़ाखू और ये नशाखोरी भी बहुत है और इसकी लत बच्चों में ना लगे, बच्चे उस वहां से दूर रहे, ये सब समझाने के लिए हम ये कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों में। ये हमारे 3 मुख्य कार्यक्रम अभी चल रहे हैं।
1: जी जी जी जी सुनीता जी, बहुत अच्छे कार्यक्रम है और इनसे ज़रूर वहाँ की आम जनता लाभ ले रही है और आगे भी लाभ लेती रहेगी और आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक भी हुए हैं और जो अभी प्रयास आप कर रहे हैं आगे भी सार्थक होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज आपने हमें समय दिया और अपनी बातें हमें बताई और आप हमारे साथ कार्यक्रम में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रायपुर आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे विचार हमारे मन की बात बताने के लिए मतलब समय दिया, धन्यवाद।
1: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: इनसे में अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सुनीता गोड़बोले से बातचीत, प्रस्तुत किया रमा शंकर ने।
1: मीडियम में 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

एक्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
2: जी।
3: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास
3: ऐलान।
4: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
11: मुझे भी नकली मिला।
5: मुझे भी
11: नकली हो सकता है
5: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
11: कैसे हो सकता है?
5: किराया था
11: राजा, नकली हीरा दे सकता है?
5: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
11: राजा ने
5: भी ने बोला कि नकली है।
11: महाराज
10: महाराज महाराज की जय। महाराज की जय।
3: महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
5: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
5: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
3: महाराज की
9: जय।
3: महाराज की
9: जय।
3: महाराज की
9: जय।
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
12: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
13: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
14: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
4: तीनों कॉलेज ने
5: चिंता नहीं करा।
4: फीस तो दाख।
6: हे हे, काय हाल है? काय होली? आए?
5: फीस जो फिकर।
6: राहुल जो बैंक खाता तो आसीचे, बाट सरसरा। बैंक ले काम पढ़ लो इतरो, पीला पढ़ाई कर जा सरसरा मेरे दे। और हुन बोले 4 लाख तक दिन झट झट चो। आए? हुन कहाँ से? मिठाई
7: RBI वाले से
8: नंगत करामूर लेन देन बेरा रहा चतुर।

मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है श्रोताओं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1966 में प्रदर्शित फिल्म ममता के गीत। फिल्म ममता जो कि 1966 में प्रदर्शित हुई, ये एक प्रसिद्ध हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका कि निर्देशन असित सेन ने किया था। ये फिल्म मध्यम वर्गीय संघर्षों और त्याग पर आधारित फिल्म है। कार्यक्रम से जुड़ी हम और भी बातें करेंगे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

फिल्म ममता के निर्देशक असित सेन, निर्माता किशन चंदर, फिल्म की कहानी लिखी निहार रंजन गुप्ता ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को भी स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1966 में प्रदर्शित फिल्म ममता के गीत। फिल्म ममता में मुख्य भूमिकाएं निभाई सुचित्रा सेन, ये दोहरी भूमिका में थी, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, विपिन गुप्ता, डेविड अब्राहम, तरुण बोस, प्रतिमा देवी, छाया देवी, लक्ष्मी देवी और चमनपुरी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को स्वर दिया है हेमंत कुमार ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के युगल स्वर में फिल्म ममता का गीत। फिल्म ममता के गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया रोशन ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म ममता में सुचित्रा सेन ने एक गरीब लड़की देवयानी की भूमिका निभाई, जो परिस्थितियों के कारण अपनी नवजात बच्ची को छोड़ देती है और बाद में एक अमीर बैरिस्टर के रूप में उसी बच्ची का सामना उससे होता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में फिल्म ममता का गीत। फिल्म ममता के गीतों को अपनी आवाज दी लता मंगेशकर, आशा भोसले, हेमंत कुमार और मोहम्मद रफी ने। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे सन 1966 में प्रदर्शित फिल्म ममता के गीत, जिसके निर्देशक असित सेन, निर्माता किशन चंदर, कहानी लिखी निहार रंजन गुप्ता ने। यह कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर

पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आज सांकरा पाटन में एक दिवसीय खेत बचाओ अभियान कार्यशाला और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्यानिकी मंत्री रामविचार नेताम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत किसानों को मृदा संरक्षण, प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक आधुनिक कृषि तकनीकों तथा फसलों में कीट और रोग प्रबंधन के उपायों से भी किसानों को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में कृषि उपयोगी सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर प्रदेश की तीन शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642,27,77,950 रूपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन, इसमें सुनिए मेरी पसंद। श्रोताओं, अपने प्यार को खत लिखना भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है। अपने साथी को अपने शब्दों में अपने प्यार का इजहार करना ये बहुत ही प्यारा एहसास है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जी हाँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म जिगर से। स्वर दिया है अभिजीत और साधना सरगम ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए रानी मलिक का लिखा गीत। फिल्म है आशिकी। इस गीत को स्वर दिया है कुमार शानू ने। श्रोताओं, जिंदगी में किसी के चुपके या धीरे से आने की आहट बेहद खूबसूरत और प्यारी होती है। कुछ इसी एहसास को बयां करता हुआ फिल्म आशिकी का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में फिल्म आशिकी का गीत। गीत लिखा था रानी मलिक ने और संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गुलशन कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मेरी पसंद। अब लीजिए सुनिए अभिजीत, क्षमा करेंगे, अब लीजिए सुनिए साधना सरगम और कुमार शानू के युगल स्वर में गौहर कानपुरी का लिखा गीत। संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस गीत को हमने लिया है फिल्म आ गले लग जा से। कुछ इस तरह से आए हो मेरी जिंदगी में तुम, कुछ इस तरह से आए हो मेरी जिंदगी में तुम, जैसे सुनी राहों में मिल गई हो मंजिल मुझे कोई। धीरे से धड़कने लगी खामोशियां मेरी, धीरे से धड़कने लगी खामोशियां मेरी, और आंखों में बस गई तुम्हारी ही तस्वीर कोई।

कुमार शानू के स्वर में लीजिए सुनिए फिल्म सड़क का गीत। समीर के शब्दों को सुरों में ढाला है नदीम शवण ने।

आप सुन रहे हैं कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में फिल्म सड़क का गीत। पता ही न चला कब मेरी तन्हाई में तुम शामिल हो गए, पता ही न चला कब तुम मेरी तन्हाई में शामिल हो गए, धीरे धीरे मेरे हर एक ख्याल के काबिल हो गए। अब तो हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र रहता है, अब तो हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र रहता है, बिन कहे तुम मेरे दिल की हर बात समझ गए।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म राज से स्वर दिया है अलका याग्निक ने, गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का।

हवाओं की सरगोशी सा आना है तेरा, जैसे कोई मीठा सा गीत गुनगुनाना तेरा। धीरे धीरे बसी है तू मेरी रूह में ऐसे, धीरे धीरे बसी है तू मेरी रूह में ऐसे, जैसे बारिश की बूंदों का जमी को छू जाना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलशन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे मेरी पसंद। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने। किसान भाई बहन मन का जी।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड़दुम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सिरधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे सिरधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: चेक
3: जाना पड़ेगा।
2: अरे गेम छोड़ के?
3: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है।
2: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को।
3: कैसे?
2: आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएम पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी कलाकार हैं भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस दत्त। अभिनेत्री नरगिस दत्त की बेहतरीन अदाकारी और सदाबहार गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में उन पर फिल्माए कुछ गीतों और बातों की जानकारी हम आपको देंगे और सुनवाएंगे उनकी अभिनीत फिल्मों के गाने। नरगिस दत्त का जन्म 1 जून 1929 को हुआ था। उनका असली नाम था फातिमा राशिद।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी कलाकार हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त। अभिनेत्री नरगिस दत्त की मां जद्दनबाई एक प्रसिद्ध शास्त्रीय ठुमरी गायिका और फिल्म निर्माता थी। उनके पिता अब्दुल राशिद एक रईस पंजाबी हिंदू परिवार से थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम अपना लिया था, वो भी जद्दनबाई के प्यार में पड़कर उनसे विवाह करने के लिए। अभिनेत्री नरगिस दत्त की फिल्मी सफर की शुरुआत 1935 में सिर्फ 6 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने फिल्म तलाशे हक में अभिनय किया था। एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में नरगिस दत्त की पहली फिल्म थी तकदीर, जो 1943 में बनी थी, लेकिन उन पर फिल्माया गया आहा फिल्म का गीत आपको भी बहुत पसंद आएगा, सुनिए।

श्रोताओं, अभिनेत्री नरगिस दत्त ने राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बरसात, अंदाज, आवारा, श्री 420 और रात और दिन। राज कपूर के साथ फिल्मी पर्दे पर उनकी जोड़ी बहुत ही शानदार थी और पर्दे से अलग उनकी दोस्ती और केमिस्ट्री भी शानदार थी, निराली थी। आइए सुनते हैं रात और दिन फिल्म का ये गाना।

किसी भी तरह का किरदार हो, नरगिस दत्त उसे बखूबी निभाती। अभिनेत्री नरगिस दत्त और मदर इंडिया फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म उनके कैरियर के लिए सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म के राधा के किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। मदर इंडिया फिल्म उनके लिए हर दृष्टि से खास और यादगार रही, क्योंकि मदर इंडिया के सेट पर शूटिंग के दौरान आग लगने और सुनील दत्त के द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना नरगिस दत्त की जान बचाई गई थी। इसके बाद दोनों के बीच कभी काफी आत्मीय संबंध स्थापित हो गया और इसी आत्मीय संबंध के बीच उन्हें प्यार हो गया। फिर दोनों ने इस प्यार को बड़ी खूबसूरत रूप दिया और शादी रचाई। हालांकि उस समय के बड़े बड़े धर्म संगठनों ने इस शादी से उन्हें रोकना चाहा था, लेकिन यहाँ सुनील दत्त की दिलेरी काम आई और सुनील दत्त ने आखिर बाजी जीत ली।

समय की नजाकत को समझते हुए उन्होंने विवाह रचाया और विवाह के पश्चात सुनील दत्त और नरगिस दत्त की 3 संतानें हुईं, अभिनेता संजय दत्त, बेटी नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। अन्य उपलब्धियों की बात की जाए तो 1958 में उन्हें कला के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री

तरीके से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली अभिनेत्री थी। 1980 में उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। इस तरह वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी रही, समाज के अन्य कार्य करती रही। कैंसर अस्पताल में जाकर वो रोगियों की सेवा भी करती रही। मानवता के प्रति उनके हृदय में असीम प्रेम था। वे समाज को कुछ देना चाहती थी और यदि एक स्त्री के रूप में उनका व्यक्तित्व देखा जाए तो ये वो एक अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी दोस्त, अच्छी सहकलाकार और अच्छी माँ भी थीं।

चार दशक तक फिल्मी रुपहले पर्दे पर छाई रही नरगिस दत्त। सिनेमा जगत में जब भी सादगी और अदायगी की बात की जाएगी तब नरगिस दत्त का नाम बड़ी ही प्यार से लिया जाएगा। अभिनेत्री नरगिस दत्त जब अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थी तब उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। लंबे इलाज के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज होने के ठीक तीन दिन पहले यानी कि 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया। उनकी याद में सुनील दत्त साहब ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की है और भारत सरकार ने 1993 में 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया है। नरगिस दत्त हमेशा सभी के दिलों में राज करती रहेंगी। हम उनकी फिल्में देखते हैं तो हम मुग्ध हो जाते हैं, तो हम उन्हें याद करते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। वो हमारी यादों में यूं ही बने रहे ये हम चाहते हैं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी कलाकार थी अभिनेत्री नरगिस दत्त। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30 बजे हैं। रुसरुसा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए चंद्रकांत राजा लोक गाथा। इस लोक गाथा की गायिका हैं शांति और साथी। आज इस लोक गाथा का अंतिम भाग हम आपके लिए लेकर आए हैं।

लोक गाथा चंद्रकांत राजा भाग पांचवा और अंतिम भाग। गायिका थी शांति और साथी। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, लोक गाथा का नया भाग आने वाले रविवार को प्रसारित किया जाएगा। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, लोक साहित्य पत्रिका मोजो माटी आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। 12:30 से हम आपके लिए लेकर आएंगे ग्रामीण महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर कृषि सामाई की बीड़ा खड़ा जुगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर कला और कलाकार कार्यक्रम सुना जा सकता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम रायपुर से रिले कर रहे हैं।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रकृति सबसे बड़ी सहयोगी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक वृक्ष, पुनर्स्थापित किया गया इकोसिस्टम और सतत निर्णय राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाता है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वच्छ और अधिक लचीला भारत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेन डे का आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम

0: आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 8 जून को ही डीएलएड के साथ ही सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा आज सुबह 11 बजे से बैरन बाजार स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी। इस कार्यक्रम के संपादक हैं भरत कुमार गंगादित्य।

0: मछुमाटी लोक साहित्य पत्रिका सुन तो जम्माए दादा दीदी सियान सजन मन के मैं भरत कुमार गंगादित्य करें से खुबे खुबे जुहार। दादा दीदी मन आमी ये कार्यक्रम ने तुम चो लगे लोक कथा कहानी कविता गीत गोविंद ठसा ये जमाए कार्यक्रम मन के धरुने उनसे तो असनी आजी चो ये अंक के धरुन भाती में ले से और आज जो ये कार्यक्रम के सबले पहल मूल करूं से आमी हल्बी कविता पाठ ले आज जो हल्बी कविता पाठ के धरुन इला से भाई संतोष कुमार जोशी
1: मोचो हल्बी कविता जो नाम है बस्तर या तिहार। बस्तर जो माटी ने जन्म कर लू आमी, बस्तर भूई के जुआर करूं आमी, यही भूई ने खेलू कूदलू, पिलाले बाड़लू जुआन होलू हामी। बस्तर चो माटी ने जन्म कर लू हामी, बस्तर भूई के जुआर करूं हामी, यही भूई भूई ने खेलू कूदलू, पिलाले बाड़लू।

0: जुआन हलू हामी। बस्तर चो राजा समयाले बनाऊ से सपाय आमी नाना तिहार, तिहार एलो पूरे तिहार करूं से, राजा चो तिहार के सुरता करूं से। बस्तर चो राजा समयाले बनाऊ से सपाय आमी नाना तिहार, तिहार एलो पूरे तिहार करूं से, राजा चो तिहार के सुरता करूं से। बस्तरिया तिहार काय होए से, बरसकार ने तिहार मनाऊ से, तिहार होए से बरन बरन नाना किसम, एके मनाऊ से हमी बस्तरिया लोग मन। बस्तरिया तिहार काय होए से, बरसकार ने तिहार मनाऊ से, तिहार होए से बरन बरन नाना किसम, एके बनाऊ से हमी बस्तरिया लोग मन। सावन महीना ने बादरी ढाके से, पानी घसरे से राई झाई, रोपलो बुनलो धान के दखा, करिया होन लहराउन जाए से। सावन महीना ने बादरी ढाके से, पानी घसरे से राई झाई, रोपलो बुनलो धान के दखा, करिया होन लहराउन जाए से। धान के दखुन हरिक लागे से, लहरा पानी नुको होए से। सावन महीना चो तियार इली, सुरता करू हामी तुमी। धान के दखुन हरिक लागे से, लहरा पानी नुको होए से। सावन महीना चो तियार इली, सुरता करू हामी तुमी। वर्षा महीना ने तिहार मनाऊ से, बलसोत एके अमुस तिहार, इया दादा दीदी पीला झीला मन, मिसुन मनावा नुको तिहार। वर्षा महीना ने तिहार मनाऊ से, बलसोत एके अमुस तिहार, इया दादा दीदी पीला झीला मन, मिसुन मनावा नुको तिहार। अमुस तिहार अमरली जाले, हरी खोसोत जुआन डोकरी लेका पीला, घरे घरे रांधुक मुरियासोत, कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ा। अमुस तिहार अमरली जाले, हरी खोसोत जुआन डोकरी लेका पीला, घरे घरे रांधुक मुरियासत, कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ा। सावन महीना ने गोंचा तियार आए से, गोंचा भाटा ने मंडई लागे से, मंडई दखुक या दादा दीदी, गोंचा तियार के नुको बनाहा तुमी। सावन महीना ने गोंचा तियार आए से, गोंचा भाटा ने मंडई लागे से, मंडई दखुक या दादा दीदी, गोंचा तियार के नुको बनाहा तुमी। गोंचा तिहार ने रथ के झिकसत, रथ ने बटला भगवान जगन्नाथ, रथ के किंद्रासत गोंचा भाटा ने, एवेचो उतरला भगवान सिराहासार ने। गोंचा तिहार ने रथ के झिकेसत, रथ के बटला भगवान जगन्नाथ, रथ के किंद्रासत गोंचा भाटा ने, एवेचो उतरला भगवान सिराहासार ने। सिराहासार ने भगवान उतरला, रंग रंग चो कपड़ा पिंधला, कितरो सुंदर मुकुट दखा दय से, भगवान चो मंदिर के प्रसाद मिरे से। सिराहासार ने भगवान उतरला, रंग रंग चो कपड़ा पिंधला, कितरो सुंदर मुकुट दखा दय से, भगवान चो मंदिर ने प्रसाद मिरे से। सिराहासार ने भगवान बटला से, नौ दिन ले पूजा होए से, खीर भात चो भोग लागे से, लोग मंचो भीड़ के दखुन चेत पर आए से। सिराहासार ने भगवान बटला से, नौ दिन ले पूजा होए से, खीर भात चो भोग लागे से, लोग मंचो भीड़ के दखुन चेत पर आए से। एबेचो भगवान रथे चेगला, रथ के किंद्रासत लोगमन, सिंह बाट ने रथ थेबली, दखुक जाऊं हामी सब जन। एबेचो भगवान रथे चेगला, रथ के किंद्रासत लोग मन, सिंह बाट ने रथ थेबली, दखुक जाऊं हामी सब जन। गोंचा भाटा ने तुपकी मिरे से, ठाए ठाए सपाए बाटे गरजे से, तुपकी मारून गोंचा मनाऊ, गोंचा तिहार के नुको मनाऊ। गोंचा भाटा ने तुपकी मिरे से, ठाए ठाए सपाए बाटे गरजे से, तुपकी मारून गोंचा मनाऊ, गोंचा तिहार के नुको मनाऊ। कुंवर महीना ने दसरा तिहार इली, बरसा थेबली सित इली, नवरात ने दुर्गा माए चो, करुआत लोग मन उपास पियास। कुंवार महीना ने दशहरा तिहार इली, बरसा थेबली शीतकार इली, नवरात ने दुर्गा मायचो, करुआत लोग मन उपास पियास। आगे चो जुग ने रथ ने बटत, राजा रानी और पाइक तीसर, कितरो सुंदर लागे दशहरा तिहार, दक्तो लोग मन लिमकी निमारत। आगे चो जुग ने रथ ने बटत, राजा रानी और पाइक तीसर, कितरो सुंदर लागे दशहरा तिहार, दक्तो लोग मन लिमकी निमारत। नौ दिन चो नवरात होय से माय दुर्गा चो उपास करेसत, माय दंतेश्वरी दुर्गा काली चो नाव ने धरासत तेल दिया और तीसर। नौ दिन चो नवरात होय से माय दुर्गा चो उपास करेसत, माय दंतेश्वरी दुर्गा काली चो नाव ने धरासत तेल दिया और तीसर। नवरात सरले दशहरा तिहार ऐसे, दशहरा भाटा ने मंडई लागे से, बरन बरन चो खाजा मिरे से, आया दंतेश्वरी के जुहार करो से। नवरात सरले दशहरा तिहार ऐसे, दशहरा भाटा ने मडई लागे से, बरन बरन चो खाजा मिरे से, आया दंतेश्वरी के जुहार करो से। दशहरा रथ के दखुक जाऊं, पिंधाला सत रंग रंग चो कपड़ा, आया दंतेश्वरी चो छतर किचेगाला, दशहरा रथ के झुगुक मुरियाला। दशहरा रथ के दखुक जाऊं, पिंधाला सत रंग रंग चो कपड़ा, आया दंतेश्वरी चो छतर के चेगाला, दशहरा रथ के झिकुक मुरियाला। भीतरे रहनी काय होए से, एके जानू हामी तुमी, रथ के झिकुक किंद्राउं आंसत, आया दंतेश्वरी मंदिर पूरे थे बासत। भीतरे रहनी काय होए से, एके जानू हामी तुमी, रथ के झिकुक किंद्राउं आंसत, आया दंतेश्वरी मंदिर पूरे थे बासत। ए बच्चे होए से बाहरे रहनी, एके जानू हामी तुमी, कुमडा कोट ने रथ सजाला, बान फटका मोहरी बाजा संगे रथ के झिकते आनला। ए बच्चे होए से बाहरे रहनी, एके जानू हामी तुमी, कुमडा कोट ने रथ सजाला, बान फटका मोहरी बाजा संगे रथ के झिकते आनला। सरन सरन माय दंतेश्वरी के जुहार करो से हामी तुमी, ए तो बरस चो दशहरा तिहार के नुको मनाऊ हामी तुमी। सरन सरन माय दंतेश्वरी के जुहार करो से हामी तुमी, ए तो बरस चो दशहरा तिहार के नुको बनाऊ हामी तुमी। सावन महीना ने भादों ऐसे इली नवाखानी तिहार, लेका लेकी मन हरिक होय सत, नवाखानी चो तिहार के मनासत। सावन महीना गेले भादों ऐसे इली नवाखानी तिहार, लेका लेकी मन हरिक होय सत, नवा खानी चो तिहार के बनासत। हरिक लागे से तिहार अमरले, नवा खानी चो चाउर रांधले, नवा तिहार ने नुआ कपड़ा अनु, ओल तो बाटने धान के ओराऊ। हरिक लागे से तिहार अमरले, नवा धान चो चाउर रांधले, नवा तिहार ने नुआ कपड़ा अनु, ओल तो बाटने धान के ओराऊ। रोजे बरस हामी नवा बनाऊ से, नवा चाउर चो भात खाऊं से, कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ी संगे सगा के खुआउन विदा करूं से। रोजे बरस हामी नवा बनाऊं से, नवा चाउर चो भात खाऊं से, कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ी संगे सगा के खुआउन विदा करूं से। पुष महीना गेले माघ ऐसे इली मडई हाट चो बेरा, इया दखुक आऊं मडई हाट के, दखुक जाऊं मडई भाटा। पुष महीना गेले माघ ऐसे इली मंडई हाट चुबेरा, या दखुक जाऊं मंडई हाट के, दखुक जाऊं मंडई भाटा। साइकिल ने दखा फटफटी ने दखा, हिंटो लोग के दखा मोटर ने दखा, जासुत लोग मन दिने राती बेरा, ठेगला मस्का होन हौन जाऊं से मंडई हाट ने सपाय बेरा। साइकिल ने दखा फटफटी ने दखा, हिंटो लोग के दखा मोटर ने दखा, जासुत लोग मन दिने राती बेरा, ठेगला मस्का होन जाऊं से मंडई हाट ने सपाय बेरा। मंडई भाटा ने अमरसोत लोग मन, ठेगला मस्का खुंदा मांडा, मोटर गाड़ी चो धुरला उठे से एके बलसोत मंडई भाटा। मंडई भाटा ने अमरसोत लोग मन, ठेकला मस्का खुंदा मांडा मोटर गाड़ी चो धुरला उठे से एके बसोत मंडी भाटा लई चना समसा जलेबी और गुड़िया खाजा चूड़ी फुंदड़ी और पाउडर संगे खोसा काटा बायले पीला काजे घेनु आमी तुमी एके बोलू से हमें मंडी भाटा लई चना समसा जलेबी और गुड़िया खाजा चूड़ी फुंदड़ी और पाउडर संगे खोसा काटा बायले पीला काजे घेनु आमी तुमी एक ही बनू से हमें मंडी भाटा।
1: एबे आमी सुनते रहूं हल्बी कविता पाठ और एक कविता आम के सुनाते रहला भाई संतोष कुमार जोशी अले ये तुमके तो नगत लागली होती अदाएं आमी जाऊं लोक कथा बाटे और लोक कथा तो आमी जैसा नाम चो आया ले बाबा ले नहाले आई आए दादी आए आमचो आजू आए दीदी आए कोनी बोले आम के सुनाते रहुआ त और आगे सुनाते रहला धीरे धीरे हाजते बोले जाए से लोक कथा असनीची एगोटक लोक कथा आए शंकर पार्वती चो और ये चो नाम आए लोक कथा चो करम चो फर ये लोक कथा के आमचो लगे अमरासोत भाई राजेंद्र राव राउत अली ये लोक कथा के सुनो।
2: सज्जुक चो गोठा से सरकपुर ने शंकर अरु पार्वती आप लोग घर ने बसुन गोठाते रहला। शंकर बाबा बोलते रहा पार्वती मंचपुर ने जितरो मनुख अरु जीव जंतु मन जन्म धरसत हुन मन आपलो करमचो हिसाब ने सुख दुख पावसत बल्लो ने जोन मनुख नीको कर्म करे से हुन मनुख के सुख ने जीवना खटे से अरु जोन मनुख पाप कर्म करे से हुन मनुख चो जीवना कसट ने खटे से। शंकर बाबा चो गोठ के सुनुन पार्वती मने मन विचार करला कि एक दिन मंजपुर ने जाऊन दख्तोराय लोग मन कसन जीवना के जीवसत। गोटोक दिन पार्वती अरु शंकर बाबा नंदिया बैला ऊपरे बसुन मंजपुर दखुक इला। पार्वती मंजपुर चो सुंदर नदी डोंगरी रूख राई के दखुन हरी खोली अरु शंकर बाबा के बले से गणेश चो बाबा मके हुन बाट निहा जोन लगे सफाय मनुक चिड़ई चिरगुन सुख ने रसोत। शंकर बाबा बोलो आप लो इच्छा जाओ रे नांदिया बैला हुन बाट जाओ जोन लगे सफाय लोग मन सुख ने रसोत। नांदिया हुन बाट ने रिंगुन दिलो थोड़े दूर रेंगुन पार्वती काय दखे से लोगमन सुंदर सुंदर घर ने रसोत सपाए खूट ने सुख शांति आसे सपाए मनखे के सुख ने दखुन पार्वती बले से गणेश चो बाबा दखा लोगमन कितरो हरी को दिन ने रसोत। शंकर बाबा बोलो ये सपाए लोगमन सत्कर्म करतो लोगमन आसोत। पार्वती फेर बोलो एबे मैं दुखी मनखे मंचो पारा ने जाऊं आए तेबे नांदिया बैला शंकर बाबा चो इशारा के पौन दुखी मनखे मंचो पारा ने अमरला इथा चो लोग मन के दखुन पार्वती दुखी होन गेली अरु शंकर बाबा के बल्ली गणेश चो बाबा ये मन इतरो कसट ने कसन ने जीवसत ये मनखे मन के काय गलती करला असन बोलून पार्वती गावुक मुरियाली। पार्वती के गाकते दखुन शंकर बाबा बल्लो आपन काय काजे गाकसत ये मन मन जसन कर्म करला ओसन फल हुनके मिरली। पार्वती बोललो गणेश चो बाबा कसने करुन ये सफाय दुखी मन के मंचो दुख के दूर करुन दिया सफाय चो जीवना ने सुख शांति बनाउन दिया। शंकर बाबा बोलो पार्वती मंजपुर ने नियमा से जोन मनुख जसन कर्म करे दे हुनखे ओसन फरमीरे दे अरु इतरो बड़े संसार सुख दुख पाप पुंचो हिसाब करुन चले से। पार्वती बोली मैं कहीं के नहीं जाने आपन दुखी मन के मंचो दुख के दूर करुन दिया। शंकर बाबा पार्वती चो गोठ के सुनला अरु आशीर्वाद दिला, सफाए मन मनुख चो दुख कसट दूर हुन जाऊ। असने बोलून शंकर पार्वती सरकपुर आप लोग घरे गेला। ये बाट सफाए लंगड़ा अंधरा काना बहरा खोड़या माटिया सफाए मन नंगत होला अरु हरीक ने रहुक मुरियाला। असन करून गोटक बरख पुरली। एक दिन शंकर बाबा आप लोग घर चो दुआरी ने बसुन बाढ़लो कांदी के झिकते रला। शंकर बाबा के काम करतो के दखुन पार्वती बलली, गणेश चो बाबा आपन काय काजे घास की झिकासी, एबे मंजपुर ने जाऊन लोग मन के जोहाउन आने से आपन असन काम की नी करा। असने बलून पार्वती आया मंजपुर गेली। मंजपुर चो गरीब पारा ने जाऊन मनखे मन के बल्ली, बाबू मन सुना, बेटा मन सुना, सरकपुर ने आमचो घरे बाड़ी ने खूबे कांदी होली से, मचो संगे जावा कांदी निकरा तो काजे मैं तुमके खूबे धंधा इंदे। तेबे आशीर्वाद मिरलो लोग मन बल्ला, तुई कौन आस, कौन राज चो रानी आस, आमी काय काजे तुचो संग ने आइंदे, आमचो घरे सफाई बानी चो गोठ आसे, जाजा आमी तुचो घर चो काम के नी करेंदे, तू यसन कर, मचो काम के करुन देस, मैं तू के धन दाएंदे, खूबे धन दाएंदे। पार्वती आया के खूबे दुख लागली। हुन मने मन गागते आप लोग घरे सरकपुर गेली। पार्वती के ओगाए दखुन शंकर बाबा पूछ लो, कसन पार्वती काय होली? तेबे पार्वती बोलली, नहीं गणेश बाबा, मचो जिद ने खूब बड़े गलती होली से, माँ के माफी दिया। असन बोलून मंजपुर चो सपाए बात के गोट के शंकर बाबा लगे गागुन गागुन सांगल। शंकर बाबा पार्वती के सांगला, ईसु संसार के चला तो काजे, सुख दुख अमीर गरीब सब चो हो तो जरूरी आसे, सफाई मन के एक समान रलो ने संसार नीचरे दे। इतरो ने मचो कहानी पुरली, घर ने दार भात चुरली, सपाए सियान सजन के जोहार, नानी पिला मन के खूबे खूबे मया।
1: ये भी सुन लू लोक कथा करम चौफर, और ये लोक कथा के हम चलगे हमारा तेरला भाई राजेंद्र राव राउत। तुमके सुनुन भाती खूबे नंगत लागली होती तो दादा दीदी मन अदाएं फिर आमी जाऊं कविता पाठ बाटे मानतरी यदाएं ये कविता पाठ के कर सो छत्तीसगढ़ी ने कविता पाठ आए, और ये कविता के हम चलगे अमरा सोत अरुण कैमरो।
3: मोर कविता है छत्तीसगढ़ी में, हमन लैका हावन एक गांव के, ये शीर्षक है। पहला पद है हमन लैका हावन। हमन लैका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे, हमर बचपना हावे एक के चाल के। हमन लैका आवन, हमन लैका आवन एक गांव के, हमर बचपना, हमर बचपना हावे एक चाल के। खुल गे स्कूल जाथन सब, खुल गे स्कूल जाथन सब, गुरुजी के बात मानथन सब, गुरुजी के बात मानथन सब। लिखथन पढ़थन सब मिलजुल के, लिखथन पढ़थन सब मिलजुल के, हमन लैका हावन एक गांव के, हमन लैका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे एक चाल के। मीना राहुल नंदन चंदन, मीना राहुल नंदन चंदन, आओ जम्मो संगे खेलन, आओ जम्मो संगे खेलन। एक के संगमा करन पढ़ाई, एक के संगमा करन पढ़ाई, औ सावन संग मा झूलन, औ सावन संग मा झूलन, खेलन कूदन मैदान मैदान, खेलन कूदन मैदान मैदान, हमन लइका आवन, हमन लइका आवन कमाल के, हमन लइका आवन एक गांव के, हमर बचपन हावे एक चाल के, हमला देख खुश होते, हमला देख खुश होते दाई दादा हमर, हमला देख खुश होते दाई दादा हमर, दादा दादी खुश हो जाते देख फूल सा चेहरा हमर, दादा दादी खुश हो जाते देख फूल सा चेहरा हमर, गदगद बदन हमर हो जाते, गदगद बदन हमर हो जाते, तोतरी बोली सुन लाल के, तोतरी बोली सुन लाल के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे एक चाल के, हमर बचपना हावे एक चाल के, ऊंच नीच के भेद नी जाने, ऊंच नीच के भेद नी जाने, औ नहीं जाने भेद के माया, औ नहीं जाने भेद की माया, अपने मन गंगा चंगा, अपने मन गंगा चंगा, माटी में हावे काया, माटी में हावे काया, गाय चराथन बंसी बजाथन, गाय चराथन बंसी बजाथन, संगे कन्हैया लाल के, संगे कन्हैया लाल के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे एक चाल के, एक चाल के। मोर दूसरा कविता है पहुना बादर। ये कविता बरसात के मौसम के समय के बनाए गए हैं। जुड़ा गईस घाम हा मन हर साइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर साइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, करिया औ भुरुआ मा एती ओती बगराइस, करिया औ भुरुआ मा एती ओती बगराइस, पानी के बदरी लानीस, पानी के बदरी लानीस, अमृत जसन छलकाइस, अमृत जसन छलकाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, होइस माटी के तनहर शीतल, होइस माटी के तनहर शीतल, बरसा होइस झमाझम भूतल, बरसा होइस झमाझम भूतल, सबो डहर छाइस हरियाली, सबो डहर छाइस हरियाली, झूमत हावे पेड़ और डाली, झूमत हावे पेड़ और डाली, मोर पपीहा दादरा गाथे, मोर पपीहा दादरा गाथे, गरज गरज के बादरी छाइस, गरज गरज के बादरी छाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हा हरसाइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, चमक चमक के बादर गरजे, झमझम झमझम पानी बरसे, चमक चमक के बादर गरजे, झमझम झमझम पानी बरसे, नदिया नरवा और तरिया मा पानी, नदिया नरवा और तरिया मा पानी, पहुना बादर के देखो मनमानी, पहुना बादर के देखो मनमानी, किसान डोंगियार अपन सज बनाइस, किसान डोंगियार अपन सज बनाइस, जुड़वा जुड़ा गईस घाम हा मन हा हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हा हरसाइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, बरसा ले धरती हरियाइस, बरसा ले धरती हरियाइस, खेत मा बढ़िया फसल लहराइस, खेत मा बढ़िया फसल लहराइस, बरसा हम सबला भाथे, बरसा हम सबला भाथे, प्यास घलो सबके बुझाथे, ऐसन हमर मन ला ललचाइस, ऐसन हमर मन ला ललचाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, मेच का गावत है टर टर गाना, मेच का गावत है टर टर गाना, पहुना बादर तें भाग मत जाना, पहुना बादर तें भाग मत जाना, डेना पसारिस नाचिस मोर, डेना पसारिस नाचिस मोर, कीड़ा झिंगुर गागा करिन शोर, कीड़ा झिंगुर गागा करिन शोर, ऐसन पहुना बादर हर आइस, ऐसन पहुना बादर हर आइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हर्षाइस जुड़ा गईस घाम हा मन हर हर्षाइस आकाश मा पहुना बादर हर आइस आकाश मा पहुना बादर हर आइस। ये तीसरा कविता है नरवा। नरवा माने नाला। नान कुन नरवा के जल, नान कुन नरवा के जल कथिक बने और कथिक निर्मल, कथिक बने और कथिक निर्मल। डोंगरी ले बर्फ हर निकलथे, डोंगरी ले बर्फ हर निकलथे सफेद दूध जैसन बर्फ के जल, सफेद दूध जैसन बर्फ के जल। हावय खुदमा कतिक बल, हावय खुदमा कतिक बल नानकुन नरवा के जल, नानकुन नरवा के जल। सुग्घर और अब्बड़ है धार, सुग्घर और अब्बड़ है धार करथे कतका पहाड़ी ला पार, करथे कतका पहाड़ी ला पार। बहत रही थे ओहर, बहत रही थे ओहर लगातार, बहत रही थे ओहर लगातार गिरथे उठथे ओहर बार बार, गिरथे उठथे ओहर बार बार। करथे एह जंगल मा मंगल, करथे एह जंगल मा मंगल नानकुन नरवा के जल, नानकुन नरवा के जल कतिक बने और कतिक निर्मल, कतिक बने और कतिक निर्मल। कतिक कोमल कतिक सुंदर, कतिक कोमल कतिक सुंदर जेकर माता जैसन हावे दिल, जेकर माता जैसन हावे दिल। जतका सुंदर उतके प्यारी, जतका सुंदर उतके प्यारी बहत रही थे सदा खल खल खल खल, बहत रही थे सदा खल खल खल खल। कतको नाव यमुना गंगा जल, एकर कतको नाव गंगा यमुना जल। नानकुन नरवा के जल, नानकुन नरवा के जल कतिक बने और कतिक निर्मल, कतिक बने और कतिक निर्मल।
1: दादा दीदी मन अभी ये भी सुन लू छत्तीसगढ़ी कविता पाठ, और ये कविता पाठ के आम चला गया हमारा तेरला भाई अरुण केमरो। दादा दीदी मन असनी मोजो माटी लोक साहित्य पत्रिका ने ये तो समय ने आमी फेर लोक कथा कहानी ठसा नहाले और बले कहीं ज्ञान ध्यान चौकोट धरुण भाती अमरवा आले आजी काजे मौके दिया विदा। मोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका सुन तो जमाए दादा दीदी सियान सजन मन के खूबे खूबे जुहार।

आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी। इस कार्यक्रम के संपादक थे भरत कुमार गंगादित्य। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सप्पाय बहिन दीदी मन के मैं रत्नी करे से जुहार और नानी नानी पिला मन के बले मोच बाटले खुबे खुबे मया। हाँ तो बहिन मन पिला मन के तो रोज मया करते ची रहू हम मानतर आजकल पिला मन चो छुट्टी बले होली से और घरे रह सोत और पिला मन के आगे असन उठले खेल नी जावत मानतर काय काज नी जावत बहिन मन पिला ओगाय रहो बलुआत और मोबाइल के धरन दीवात उन्हीं ने तो अदाय खेल बले नी जाओ आगे चो पिला मन उठले खेलते रहोत मोबाइल आम के पिला मन के देतर चिन्हुआ कई पर पहार चो बीमार सीमार बले होइसे पिला मन के उन्हीं का जे उन मन के

0: मोबाइल जो आदत नहीं बनाता रहे, पीला मन जो दिमाग जो विकास नहीं बोले कमी हुआ है। मैंने कोनी कोनी बहन मन पीला मन के मोबाइल के धरान दीवात और आप लोग उता करते रहुआ। पीला मन के जुगे मोबाइल दखलो ने पाचे उनमें चिड़चिड़ा हुआ, मोबाइल का जे गागुआत और डरावात। बहन मन ये पीला मन ची नहीं बड़े लोग बोले अमद्यानी दखतो राय। मोबाइल ने ज्ञान चो चीज, ज्ञान चो कहीं असन चीज मन के दखतो राय कि आम जो कहीं दखले बोले काम नहीं हो। आज आजिकाली चो पीला मन मोबाइल न होलो तो रोहत नहीं। कोनी कोनी पीला मन तो भात खातो बेरा बोले मोबाइल के चालू करुन दिले भात खाए सो। आय कसन बहन मन गांच बहन मन बल तो उसनी करुआ नहल असन पीला मन के आदत नहीं बनात रहा। और बड़े पीला मन बोले खिनिक आड़े जाऊन बात मोबाइल ने गेम और काय काय वीडियो ये मन के देखते रहुआ। और तुम्ही हुन मन के हाक दिले बोले नी सुन लो असन ओ गाय रुआ। मोबाइल ने इतरो ध्यान लगान दखते रुआ कि कहीं बूता तैयार ले बोले नी सुनो। और पीला मन मोबाइल मोबाइल के असन धरान दिले मोबाइल नी दिले ने हुन मन गागुआत और गागुन बाती डरुआ। आजकल दिदलो पीला बोले नानी पीला बोले मोबाइल दखा लेने निहारुन दे रही सो। बहन मन पीला मन के मोबाइल दखावा मानतर पीला मन काजे बोल तो मोबाइल भूरला तो काजे हुन मन के ABCD बीती वीडियो असन बीती मन दखात राय। कहीं गिनती बीती चालू करुन बाती उन मन के तेबे उन मन बाढ़ले बले हुन मन सीख दे बले। और बड़े पीला मन जो बल रहे से ग्रामर होली गणित होली असन तीज मन के दख तो राय। ए फोका बीती वीडियो मन के नी दख तो राय। मोबाइल तो खुबे काम दे से मानतर मोबाइल चो फोका बीती वीडियो मन के नी दख तो राय। मोबाइल रले तो आम के कहीं कहाँ बोले आम के कितले लापी दखलो असन लागे से और गोठियाक बोले होई से। और आजकल तो मोबाइल ने ची सपाय तीज होई से मानतर आम के मोबाइल के आम के सही काम ने आन तो रहा है। ये तो रली बहिन मन गोट अदा फेर बोले नगद गोटा से आले एके बोले सुनू।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुबेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दुरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे GST लगे मायो। इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवेंट इंजे GST छूट दुरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% GST मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांज बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो बहन मन ए

तो बहन मन कितलो अच्छा गीत के गाउन रोत एमनाथ मैंगनाथ पटनायक और हुन मंचो संगवारी मन बहन मन गीत सुन ले तो सुनुक ची भाई से मानतर फिर बोले गोटोक गीत आस्ता आले ए गीत के बोले सुनू ए गीत के गावला से लखेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बोले सुनू।

बहिन मन, ए गीत कुरिया भाइया तलकेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी मन। तो बहिन मन अदा फेर बोले समय आस्ता आले फेर गोटक गीता से आले के बोले सुनू।

हाँ तो बहिन मन, ए गीत के तो सुन लू। अरे ए गीत गाऊ बहिन मनात बुद्री और हुन मंचो संगवारी मन। तो बहिन मन, गीत को बिन सब तो होली अदाय मचो जातो समयावले होली। घर दुआर कार्यक्रम सुनतो सब पाए बहिन दीदी मन के मैरत निकरे से जुहार।

0: आप सुन रहे थे ग्रामीण महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर द्वार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: लवली निगम
2: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: किसान दादा दीदी मन असंतो सफाए फसल के कमनी करे सास उसने चे गोटक फसल होय से गोंदरी आरु गोंदरी के सफाए जाने सास दखा गोंदरी कांदा बीती फसल होय से एचो कमानी करतो काजे सबले पहिल खेती चो तैयार करुक पड़े से और माटी रहे से उनके भुरु भूरा बनातोर होय से और पानी खेती थाने नी मांडो हुनी काजे पानी चो निकासी काजे पहिल एके वल ध्यान देव पड़े से गोंदरी फसल कमानी काजे दुई मुटिया भूई बारू असन जुगी अच्छा रहे से मानत दखा करिया दुई मुटिया नाले लाल वीती माटी ने बले गोंदरी चो कमानी करुक लाय सकास अच्छा फसल धरतो काजे पीएच मान 5.8-6.5 होतोर होय से और उतार चढ़ाव जोन थाना से डोंगरी असन तो असन थाने का गोंदरी चो फसल धरुक लाय नी होय ये थाने नी होय बोलू जोंदरी गोंदरी कांदा चो बाढ़ती काजे जुगे दीना चो समय अच्छा रहे से बल शीतकार बेरा एचो मान होय से 13 धरुन 34°C तक रोक लाय सके उसने चे दखा गोंदरी चो बीज चो मात्रा के बले जान तो राय 8-10 kg बीज के 2.5 एकड़ चो हिसाब ने ये नर्सरी ने बोलू 8-10 इंच ऊपरे ओरी असन माटी करुण बाती ये थान चेगान देख लाय असन करुण बात तैयार करुक लाय सकास असन वाटले कर लेने का है कि लाटा बूटा नाले कीड़ा किटिम बले जो कि जो टुक लाए नी सकोस गोंदरी के ए बिचो समय ने 10-20 ग्राम नानी नानी बीती गोंदरी तैयार करुन भाती लगा कलाए सकास गोंदरी फसल जुगे करुन शीत बेरा और घाम बेरा लगा कलाए सकास मान तर ए बिचो समय ने लगा लेने जुगे अच्छा रहे से दखा दादा दीदी मन उन्नत किस्म चो नाव एके बोले जानुक पड़े से बोले ने जुगे उपज आम के मीरे दे तो ये उन्नत किस्म मन चो नाव के मैं सांगे से अर्का निकेतन N241 एग्री फाउंड लाइट रेड पूसा रेड पंजाब रेड राउंड इतलो ये उन्नत किस्म मन चो बीच बोलू होय से गोंदरी चो असने दखा खद भात के बोले देतो समय ने के बोले लेख करू पड़े से कसन खद देत रहे के जान तो रहे कंपोस्ट FYM 25 टन 2.5 एकड़ चो हिसाब ने देव कलाय सका नत्रजन 217 किलोग्राम स्फुर 315 किलोग्राम पोटास 109 किलोग्राम 2.5 एकड़ चो हिसाब ने लगा कलाय सकास मानतर रोप तो पहल माटी ने बलू मिलान देतो रहे से ये जुगी अच्छा रहे से उसने च दखा गोंदरी फसल थाने एक ले धरन दुई हार बोलू निंजाई करुक लाय सकास लाटा बूटा के गुच्छा कलाय सकास और पानी बोले समय समय ने छिड़काव होय दे कौन कौन समय ने सूखे दे उसन समय ने ध्यान देव पड़े से और कियारी मन के पानी बोलने उन थाने ठेबुक दे तोर नवाए पानी नीरो नालुन बूटा कून जाए दे असने दखा 75-90 दिन होली तो ये थाने मैलेइक हाइड्राजाइड 1500-25600 PPN बोलुआ ते के छिड़काव करुक लाय सकास नहाले 0.1-0.2% 1 लीटर पानी ने घोलन भाती बूटा मन ने बोल छिड़काव करुक लाय सकास असन बोलू 15 दिन पहले बूटा थाने बोलू देवक लाय सकास असन उसन वाट कर लेन का गोंदरी जुगे बोलू फसल धरुक लाय सकास।
0: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 kHz FM बैंड 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: श्रोता सुमन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए हरिप्रिया का नमस्कार और पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला खत हम तक लिख भेजा है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। महाराष्ट्र से आप हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, शीतल चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। भोकर से आप हैं हरुभाव बिड़वे, श्रावण अनीता बिड़वे। उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। उत्तर प्रदेश से ही आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और उनका पूरा परिवार। लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रजनू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, नीलम पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, रामा पुरी और आर्यस पुरी। पंजाब से आप हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल सिंह लाटी, लखविंदर सिंधु, महावीर सिंधु, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। धमतरी सौंगा से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन। परसा टोला छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया। अंबागढ़ चौकी से आप हैं रिजवान खान, आशिया खान, सभिया खान, अनस और रेहान। भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया। खरगोन से आप हैं डॉक्टर तिलक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन वर्मा, मास्टर समन राज, बेबी आरोही, अंजलि, श्वेता वर्मा और उनका पूरा परिवार। दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने सुना चाहा है बूंद जो बन गए मोती फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज में। भरत व्यास के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है सतीश भाटिया ने।

श्रोता सुमन कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। नीरज की लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद्र राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। पन्ना से आप हैं कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। डोंडी लोहारा बालोद से इस गीत को सुनना चाहते हैं देवशंकर तामोरिया, अजय आरती, तुषार तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया। ग्राम बन बघेरा राजनांदगांव से योगेश शारवा, आशा शारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि शारवा। धरसीवा से छोटीलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा अल्पना यादव। रायपुर से छन्नूलाल, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आशिया खान, हृदया खान, अस्मा, सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। धाड़ी नादूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनडीही से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा। रायपुर से नीलू मेघ। बेलरगांव से हवा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। दरचूरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। दरचूरा से आप हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। बिलासपुर से आप हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। चाटी डीही से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। बेरडी से आप हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है प्यासा सावन। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सुभाष सदानंद, आंशुमणि और ओवी। रतलाम से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। बालौद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रैंबिका, लीना, अंशु, आशुतोष अंगारे। महाराष्ट्र से अभिजीत गवहणकर राही, श्रीमती सरविता गवहणकर, प्रिंस एकांश, सिद्धांत गवहणकर, प्रणीता गवहणकर। नागपुर से शैलेश गवहणकर, श्रीमती वैशाली गवहणकर, श्वेता, सुमित गवहणकर, कुमारी ध्वनि और परी गवहणकर। खरगोन से आप हैं भागीरथी नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र नायक, शिवानी, अश्वनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और उनका पूरा परिवार। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील, बिलसरपुरिया। तेलीबांधा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। सारागांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे और मिन्नल नारे। बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। राजस्थान से आप हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आहिल खान और जिशान खान। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह, रितु सिंह। धनबाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि। झांझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि, आरती सिंह। पटना बिहार से भुवनेश्वर सिंह, मोनू, लीलू सिंह। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। खापरखेड़ा जिला रायसेन से तुलसीराम साहू, हेमंत साहू, मुकेश साहू, आरती, ममता, गोमती और रागनी साहू। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गाना।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: श्रोता सुमन कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, मेघ तो जरूर बरसेंगे यदि हम अपनी धरती पर हरियाली लाएंगे, और मेघा आएगी जरूर। अगले फरमाइश की फिल्म है शगुन, और इस गीत को गाया है जगजीत कौर ने। साहिर का लिखा गीत है और संगीत है खय्याम का। सुनने की चाहत रखी है आप सभी श्रोताओं ने। जगदलपुर से आप हैं TSS प्रकाश, गीदम रोड जगदलपुर से ही आप हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, मनीषा राव, श्रवण राव, आनंद राव, नानू राव और रोहिणी राधिका राव। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू और रविन्द्र सेन। बिस्वा से आप हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश, कार्तिक भाई, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी चौधरी। चार मीनार चौक गंडई पंडिरा से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दीदी। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ। कोल्हापुर से आप हैं सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा, श्रवण, श्रमेश, विजय चौहान, तेजस्वी चौहान, अंकिता चौहान, अंकित चौहान, माया चौहान। वाशिम से आप हैं राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भवसार, भाग्यश्री राठौर और आर के कुसुम कर। कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश कुमार साहू, राहुल कुमार साहू। सतोषा करपावन से आप हैं गेनूलाल बघेल, गोमती बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष बघेल और ईशान बघेल। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित यादव, अमीन यादव, गिरीश यादव और युवान ढाबेश यादव। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म से अलियासा मंडोसा और मोहित चौहान की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वाडनेर अकोला से जयदेव दामोदर अरुणा दामोदर, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये, पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी गगन सोनी और जासमीन रेखा, हिंगोली से आप हैं पेंटर रामचंद्र इंगोले सिद्धांत इंगोले रमाबाई सुरेंद्र इंगोले मयूरी सुरभि मंजूषा और गौतम इंगोले, हिंगोली से ही आप हैं दीपाली राजू ठोके पार्वती सखाराम ठोके रोहित सोनू मोनू ठोके, नागेश्वर नगर से आप हैं शेषराव बोबड़े सोनाजी सीताराम शुभम बालाजी बोबड़े सुवर्णा वेणुताई वैष्णवी बोबड़े, नावकीकर मारो तवराव और भूसारे, हिंगोली से आप हैं सुनील जबड़े देवकिशन इंगोले और चांदू बलखंडे। किशनपुर से आप हैं आलम दिलकर शबाना नाज रिजवान राही इमरान रजा आलम शेख शबाना आलम चांदनी नाज, बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु और अंकित देवांगन, मोरवा से भाई कारी राय श्रीमती मीना कारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिंकी रिक्की नीटू मोहम्मद फारूक ललन मिश्रा, ढोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी, मालेगांव से दत्ता घायाल सुनीता बाई घायाल सानिका घायाल गजानन घायाल, नागपुर से आप हैं नाना डोंगर देवी रमाताई डोंगर देवी सीमाताई डोंगर देवी रीमाताई डोंगर देवी दीक्षाताई डोंगर देवी और राहुल डोंगर देवी, मधुबनी से आप हैं राजू कुमार गुप्ता विनीता कुमार रविराज गौरव गुप्ता कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता मास्टर रुद्र गुप्ता एम के गुप्ता और उनके श्रोता साथी संजय कुमार गुप्ता संजीत गुप्ता सर्वजीत गुप्ता सुधांशु गुप्ता, छपरा से सीतामढ़ी से आप हैं प्रभात कुमार अरविंद मट्टू निक्की गुप्ता, पटना से आप हैं ज्योति गुप्ता जाह्नवी पीवी और अविनाश चंद्र गुप्ता। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

श्रोता सुमन कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, मेरी यार की शादी है फिल्म से। आवाजें हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जीत प्रीतम ने। सुनने की चाहत क्लिक कर भेजी है हम तक हमारे इन श्रोता साथियों ने। कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तेजल यादव। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी। राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार। बिहार से तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रियत जहानाज, नुजहत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, समीम अकरम और अमन अकरम। भाटापारे से आप हैं राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज सेन और पोषण सेन। संबलपुर से गौतम उर्वर्षा, डामिन लक्की, बालों से दिनेश यादव, साधना यादव। मंचुआ से आप हैं आयांश रावटे, रिंकू रावटे। कांकेर से आप हैं नरसिंह थापा और बीर सिंह थापा। मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइन शर्मा। पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। उज्जैन से आप विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त। खंडवा से आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर। महाराष्ट्र से आप हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे और चंद्र प्रभा वाड़ोदे। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, बाबू रियांश ठाकुर। ततरंगी से झावेंद्र कुमार वर्मा। सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। वाकड़ी चौक अंबेडकर चौक से आप हैं उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े, स्वरीत पोपलवाड़, संघर्ष और उनके बहुत सारे साथी। भाटापारा से आप हैं दान सिंह है, रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ और नीरज रावत। सहरसा से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए नायक फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है A.R. रहमान ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। आप हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक और आरू साहू। आप हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश ताती, रेशमा कुमारी, प्रीति, निभा कुमारी और देबोन। खरगोन से आप हैं डॉक्टर तिलक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन वर्मा, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता और उनके बहुत सारे साथी। हटौद बाजार लाहौद से आप हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पम्मी भाटिया। सहारनपुर से आप हैं सुरेश नारंग और आशु नारंग। धुर्रा बांधा से आप हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भेवेंद्र साहू। इसी गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहन ऋतिक और बलबीर सिंह। कोंडागांव से आप हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। खापरखेड़ा जिला रायसेन से आप हैं तुलसीराम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती साहू, ममता गोमती और रागिनी साहू। भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से इस गीत को सुनना चाहते हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का और भवानी चक्रधारी। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गाना और हरिप्रिया को दीजिए अब श्रोता सुमन कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: restriction to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. The ministry added that the exemption will apply to any interest or capital gains arising to foreign portfolio investors on or after 1st April in respect of investments in government securities. It said similar income tax exemption is also provided for the Bank for International Settlements for any interest or capital gains from its investments in government securities. The ministry said this will ensure stable, systematic inflow of durable, patient foreign capital and long-term investors such as pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds. The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. Accordingly, the standing deposit facility rate remains at 5% while the marginal standing facility rate and the bank rate continue at 5.5%.
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downward to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. While inflation is expected to remain within the target range, rising fuel prices and higher input costs could exert upward pressure on prices in the coming months.
1: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
0: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% down during afternoon trade today. The Sensex lost 289 points to 74,071. While the Nifty dropped 100 points to 23,317 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading over 0.5% down, while small-cap 100 index fell 0.3% a short while ago. Union Home Minister Amit Shah today outlined a comprehensive border security vision while addressing border security force personnel at the Lankamura border outpost in Tripura. Emphasizing border security, the Home Minister said the government is determined to prevent illegal demographic changes along border areas of Tripura, West Bengal and Bihar. He informed that approval has been granted for the construction of 119 kilometers of new fencing to replace aging sections of the border fence. Mr. Shah also unveiled a smart border strategy aimed at integrating advanced technology with local civil administration to strengthen border management. A pilot project of the integrated model will be launched at 7 to 8 locations next year before wider implementation.
2: Our government is firmly committed to prevent illegal demographic changes in the border regions of Tripura, West Bengal and Bihar. To safeguard the demographic balance and strengthen border security, we have undertaken extensive border fencing measures in these areas.
0: A total of over 70,000 applications have been received through the CBSE post-results grievance redressal process from Class 12 students. This includes 7,314 applications for verification of marks and over 63,000 applications for re-evaluation. CBSE had opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers on Tuesday. Following the declaration of Class 12 results on the 13th of May, a section of students expressed dissatisfaction with marks awarded and questioned the accuracy of evaluation under the on-screen marking system OSM. The Ministry of Education initiated a review of the implementation and procurement aspects of the OSM system. including examination of vendor performance, contractual obligations, and quality control mechanisms. President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards to 65 eminent personalities for the year 2026 at the second civil investiture ceremony on the 23rd of this month. Earlier last month, the President had presented Padma Awards to 66 eminent personalities at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. This year, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party's State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP President recently. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, will be on a 3-day visit to India beginning today. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. During the visit, Mr. Khanal will meet Dr. Jaishankar in New Delhi. In a statement, the Foreign Ministry of Nepal said the two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. The Union Minister also launched a series of environmental initiatives under the nationwide campaign Ek Ped Ma Ke Naam on the occasion. Speaking on the occasion, Mr. Yadav said, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has emerged as a global leader in environmental action.
3: As the world faces environmental challenges, India continues to make significant progress. The country has emerged as a global leader in renewable energy, ranking among the top nations in solar energy capacity, while its forest cover continues to expand. Under the leadership of Honorable Chief Minister Rekha Gupta, the government of Delhi has launched the Dhool Mukt Delhi initiative. Additionally, 19 Namo parks have been developed in Delhi. I encourage everyone to contribute to a greener and healthier future by planting a tree.
0: Speaking on the occasion, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said increasing green cover is among the most important measures for improving Delhi's air quality. She announced that the Delhi government has set a target of planting 15 lakh trees across the city during the current year. During the event, 3 environmental publications prepared by the Delhi government were also released, which are Working Plan for Delhi, Asola Bhatti Sanctuary Management Plan and Delhi Bird Atlas. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi extended his best wishes to everyone on World Environment Day, saying initiatives like Ek Ped Ma Ke Naam have made significant contributions towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that the day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan and Prasar Bharati Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi today planted saplings under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign at the premises of Akashwani in New Delhi. Talking to Akashwani News, Dr. Murugan appealed to citizens to take a pledge to protect the environment. He emphasized the need to save water, plant trees and protect and conserve them.
4: Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called the nation to Maka Naam Ek Ped Lagane ke liye. Importance of the environment, we have to save the water and we have to plant that.
0: U.S. President Donald Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhammaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed. Government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी अपर्णा खुन आकाशवाणी समाचार सूरत
5: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
7: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
5: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री SJYSHANKAR के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
8: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़

0: बसपा श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर भोकरी है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण

0: उनका मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
4: दात्र, दात्र, दादा, दा। दात्र, दात्र, दादा, दा।

0: हाँ, कला और कलाकार सुन तो सब पाए भाई बहन मन के मैं रत्नी करें से जुहार। भाई बहन मन कला भाई बहन मन के भेंटघाट वाल तो कलाकार भाई बहन मन के तो करते ची रहूँगा। असनी आजी चो कलाकार आत मोहम्मद शेख चित्रकला गुजरात चो सुरेंद्र नगर ने एमन 1937 ने जन्म ला। भारत चो सबले प्रसिद्ध चित्रकला कवि बले आत और कला चो क्षेत्र ने एमन एमन ने भारत सरकार बाटले बले पद्मश्री पुरस्कार बले पावला। एमन के पद्म भूषण ने सम्मानित करला। असनी कई बले कलाकार भाई मन सिकुन रले आमचो जीवन काजे अच्छा होय दे और ना बोले होय से। हुन काम बुता सिकतोर और भाई बहन मन आप लो नहले काई बोले काम बुता हो कला हो हुन काम बुता के मन लगान बाती कर ले तो सीखुक तो होय दे ची। और आमचो देश ने असन कलाकार भाई मन आसोत। चित्रकला ने दखा आजकल जैसन चो उसन बनाए सोत। और काई बोले चित्रकला प्रतियोगिता बोले जोन सबले अच्छा बनाए से उनके पहल पुरस्कार बोले मिरे से। आम चो गांव मन चो भाई बहन मन तो कलाकार बोले ने आजकल वो नाट नाट नाच तो कला बोले गांव मन ने दखाए सोत। असनी गीत गाव तो कला बोले होय से। सपाई कला मन के सिकुन रले आम चो भाई मन पढ़ून रले तो नौकरी सपाई भाई बहन को तो नी मिरे। कई बोले कला सिकुन रले ची। और भाई बहन मन आमचो घर मन तो सियान मन आगे ले जोन बले काम बुता के करते आई सो। हुन काम बुता के भुलक तर नुआ हुन बड़ी होली मूर्ति बना तो कला और टुकना टाकरा हांडी दावा डोरी जोन बले घर चो सियान मन करते आई सो। हुन कला के बले भुलक तर नुआ आमचो पीला मन के बले पीला बेरा ले सिखात रहा। पीला मन स्कूल बले जावत मात्र पढ़े लिखे संगे हुन मन कई बले घर चो बुता हो नोल खेती बाड़ी बुता हो हुन मन पीला बेरा ले सिखात रहा। नी नी सिखावा तो हुन पीला मन पाचे हुन काम बुता के नी कर दे। आजकल जो पीला मन आप लोग घर जो बुता कर तो काजे बोले ठग होय सोत। आमी काई बले करुआ तो पिला मन के नानी बेरा ले हुन मन के करुक सिखात राय तेबे पिला मन बले सीख दे। और घर चो बुता नहले खेती बाड़ी बुता ए बुता मन के बोले हो नहले हुन कला सीख लो आप लो आगे चो जुगे चो करते आई सोत। उन बुताक बले सिखात राय। तो भाई बहन मन ए तो रली नगद गोट अदाय फेर बोल नगद गोट आसे आले एके बोले सुनू।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: इत बदले मत्तां अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाई समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
8: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
0: हाँ तो भाई बहन मन ये नगद गोट के तो सुन लू अदाय गोटो गीता से आले ये गीत के सुनू और ये गीत के गावला से गेलमनी देवी और हुन मंचो संगवारी मन आले ये गीत के बोले सुनू।

तो भाई बहन मन ए गीत के गाउन रोत गेलमनी देवी और हुन मंचो संगवारी मन गीत सुन ले तो सुनुक ची होई से मानतर फेर बोले गोटक गीत आस्ता आले ए गीत के सुनुता और गीत कुरिया भाई मंच नाव के पाचे संगवा।

ए गीत के तो सुनलू और ए गीत के गाउन रो लोकनाथ बेसणो और हुन मंचो संगवारी मन। तो भाई बहन मन अदा गोटोक छत्तीसगढ़ी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले सुनिए आज के

0: संध्याकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अभी कुछ ही समय पश्चात शाम 5:05 पर सुनेगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनेगा भतरी नाटगीत, कलाकार होंगे गंगाराम और साथी। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण होगा शाम 7:00। शाम 7:20 पर आप सुन सकते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। रात 8:00 कार्यक्रम घलर में सुनेगा हल्बी गीत, कलाकार होंगे दयामती नाग और साथी। पीलामन काजे गोट का प्रसारण होगा रात 8:30 पर। इसमें सुनेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। कार्यक्रम नंजर आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर। इसमें गुलजार सिंह बघेल से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर सुनेगा खेल पत्रिका। इसमें नैना सिंह धाकड़ से भेंट करेंगे पूर्णिमा सरोज। रात 10:00 आप सुन पाएंगे फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजक होंगी चंद्रषि ठाकुर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। साहित्य भारती आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर सुनेगा डॉक्टर की सलाह और सुबह 9:00 बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर होगी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 6:20 पर प्रसारित किया जाएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा पद्माक्षी अवस्थी का। श्री रामचरित मानस 30 पर सुबह 11:00 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म अभिनेता विवेक मुशरान पर। गुलदस्ता गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 11:30 पर। दोपहर 12:00 प्रसारित किया जाएगा लोकरस फोन इन कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। फरमाइशी फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनेगा दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। प्रस्तुति होगी चंद्रषि ठाकुर की, संचालन होगा डॉक्टर मधु जैन का। अतिथि होंगे पी सुंदर राज, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर संभाग। कल सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेगा देशभक्ति गीत और युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर आप सुनेगा गोंडी गीत। प्रस्तुति होगी दशुराम और साथी की। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण होगा शाम 7:00। शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम जोनी उजर आप सुनेगा रात 8:00। इस कार्यक्रम में सुनेगा हल्बी नाट गीत, कलाकार होंगे लोकनाथ वैष्णव और साथी। रात 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजे गोट में सुनेगा रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में। प्रस्तुति होगी नम्रता ठाकुर की। रात 9:15 पर कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना हल्बी में श्री संतु मौर्य से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। आदिवासी लोकवाद धुन पर आधारित कार्यक्रम पाड़ में सुनेगा फुल कवर पाड़, पीला कनूर कदो पाड़। वादक कलाकार होंगे सेजूराम और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है गोंडी बोली में समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: रेडियो क्विंजवाल और मी सोबेकुन सेवा जोहार इदेक दिया था कार्यक्रम तसंग नना माखनलाल सूरी केंजवाल और नैंड ईद मावा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तल्लापति ते केंद्र ता NDA सरकार ता 12 वर्षा पूरे माया न पर केंद्रित मनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तल्लापति ते केंद्र ता NDA सरकार हत्ता 26 मई दिया 12 वर्षा पूरा कीता। 26 मई 2014 दिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद ता शपथ पैलेर। प्रधानमंत्री बने माया न पर एक 12 वर्षा तल्लापते त्रुमाल मोदी देश हित ते अचाय महत्वपूर्ण निर्णय की तूर। यू ते जम्मू काश्मीर ले अनुच्छेद 370 तून खत्म किया ना वस्तु और सेवा कर GST मुस्लिम आस्क ना मर्मिंग अधिकार संरक्षण अधिनियम अग्निपथ योजना अयोध्या ते राम मंदिर पंडाना नागरिकता संशोधन कानून पुनः शिक्षा नीति तसंगे और निर्णय शामिल मत्ता। अगाय त्रुमाल मोदी न कार्यकाल ते पक्की जन कल्याणकारी योजना गला लागू कीले आता।

0: एनडीए सरकार ता 12 वर्षा पूरे माया ना उपलक्ष्य ते भारतीय जनता पार्टी तिकेड़ा छत्तीसगढ़ ता संगे देश मेटे हालुंग ले 21 जून तक 12 साल विश्वास विकास और जनकल्याण ता थीम परो अभियान चले मायाल। ईद अभियान ता उद्देश्य मोदी सरकार ता 12 वर्षा ता हजोर उपलब्धि जनकल्याणकारी योजना और बरसाना बूतो ता जानकारी माने कुन हियना मनता। अभियान ता बेरा पार्टी कार्यकर्ता लोर जनता ता लोन पिची औसी वड़क्सी सरकार ता योजना ना जानकारी हिया नूर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्र ते एनडीए सरकार ता 12 वर्षा पूरे आयाना बेरा ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई ही तूर। मुख्यमंत्री इतोर की त्रिमाल मोदी ना दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित तलपति ते भारत देश इदे सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास ता पुना जुकते होड़ीता। सोशल मीडिया हैंडल एक्स परो पोस्ट की शोक त्रिमाल साय इतोर की हत्ता 12 वर्षा ते प्रधानमंत्री त्रिमाल मोदी सेवा सुशासन और अंत्योदय ता भावना तुन केंद्र ते ईर्षी मंजा। ईद पक्की की तुर की बड़सना बूतोता लाभ समाज तोर सबले विसरो माने कुन अवी और के तोर की गरीब किसान आस्क लयोर वंचित और कोई तुर समाज ता जीवनते सकारात्मक बदली तरह न काजे पहले प्रधानमंत्री न क्रियाता प्रभाव नेंड देश ते डिसालता। मुख्यमंत्री इतोर की छत्तीसगढ़ ता संदर्भ ते त्रिमाल मोदी न तलपति विशेष रूप ते प्रेरणादायी मंत था। अच्छा वर्षाले नक्सल हिंसा ते डंडले बस्तेर और कुटुम जागते नेंड बड़सना विश्वास और जनकल्याणता पुनाधार डिसालता। सड़क स्वास्थ्य शिक्षा मोबाइल कनेक्टिविटी बैंकिंग सुविधा और सरकारी योजना ता अवाना इदेक लंका कोस कोईतूर नाख तक आता हंगाड़े मानेक न जीवनते नेला बदलाव डिसालता। त्रिमाल साय इत्तोर की प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना हर लोहकते नल जनमन योजना और डिजिटल इंडिया लहकता योजना ते गरीब किसान आस्क लयोर और कोईतूर समाजता जीवनते आत्मविश्वास ता संचार कीता। और के इत्तोर की योजना ता नफा सबले परेक आयलेर माने कुन हियाना प्रधानमंत्री ना इद सोच शासन तुन निकाय संवेदनशील और जवाबदेही कीता। मुख्यमंत्री इतोर की त्रिमाल मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ता इद मंतेर तुन केवल नारा इरले हेवर बल्कि अदेन आपुना व्यवहार और नीति ते रेह तूर। मुख्यमंत्री इतोर की प्रधानमंत्री त्रिमाल मोदी न तलपति ते देश तुन चुचाए आर्थिक रूप ते मजबूत कीता आयो बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारीता भावना तुन उन पुना लाव हीता। मुख्यमंत्री इतोर की छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहले हरिते जनकल्याण सुशासन और अंत्योदय तक क्रिया तुन मुन्ने विढ़न काजे प्रतिबद्ध मनता। राज्य सरकार ईद सुनिश्चित कीनता की केंद्र सरकार ता सपो योजना प्रदेश तोर सबले परेक आयलेर विसरो माने तक अवी औ विकास इतेक बढ़सना ता नफा समाज तोर हर वर्ग तुन पुट्टी। त्रिमाल साय इतोर की प्रधानमंत्री त्रिमाल मोदी न तलपति ते भारत विकसित राष्ट्र बने माया न संकल्प तुन पुना ऊंचाई तक अविहाल।
1: अभी आप सुन रहे थे गोंडी बोली में समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी

0: हेलो गुड इवनिंग संगवारी मन, आशा करूँ से आप मन सपाए नंगत आसात होती और आप लोग काम बुता मन ने बोले व्यस्त आसात होती। मैं आप मन जो आजी जो कंपेयर दोस्त रोशनी नाग
1: और मैं है ममता साहनी। आमी दोनों करूँ से आप मन सपाए के
0: जुहार।
1: आज आमी धरुनीलू से गोटुक जरूरी और आज जो समय ले जुड़ल विषय डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता।
0: संगवारी मन, आज जो समय डिजिटल युग जो समय है, मोबाइल इंटरनेट सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया आम जो जिंदगी जो गोटक हिस्सा बन ली से
1: मंत्र रोशनी के भी सोच ली सीत की जोन तकनीक आम के दुनिया ले जोड़ ली से कहा है हुनी आम के आप लोग ले तो दूर नहीं करे।
0: ये गुड़ तो तुम नगद बल्लिस ममता, आजकल लोग संगे बोसवात जरूर मंत्र गोठियावात कम और मोबाइल ने ध्यान ज्यादा रुआ है मन चो।
1: हाँ कुछ कुछ तो घरे असर नजारा आम होन गेली से ने आया मोबाइल ने बाबा बोले मोबाइल ने और पीला मन वीडियो ने
0: और सबले बड़े मजेदार गोट अगर वाईफाई बंद हो जाए दिनी तो निशांग घरे असन माहौल बन जाए जसन की कहीं घटना घटित होली से।
1: हाँ रोशनी आगे चलो बियान उठन का करते रहो तो
0: आगे चलो
1: हाँ
0: बियान बढ़दा उठन नहीं ताजा हवा धरते रहो अखबार पढ़ते रहो और परिवार संगे बसुन गोठाते बोल रहा।
1: और ए बेच लोग
0: निशांग आखी लगड़ते मोबाइल धरवात नोटिफिकेशन देखो मुरियावात काचो मैसेज लिस होती कितना लाइक मिली होती और कौन ऑनलाइन आसे कि ऑफलाइन आसे।
1: सत्य सत्य गोट गुड बनवा रोशनी
0: हल्का गोटा
1: कितने लोग जो दिन मोबाइल ले शुरू होन मोबाइल ले ही सरेस ने
0: यही तो वजह है कि आज ही डिजिटल डिटॉक्स जो जरूरत महसूस कर सकूं।
1: संगवारी मन डिजिटल डिटॉक्स जो मतलब आए कुछ समय का जे मोबाइल सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरण ले दूरी बनाते ताकि मन दिमाग और शरीर आराम महसूस कर सको।
0: सत्य बलिस ममता, जसन कभी कभी मशीन के बले बंद करवाम आराम दिवाम उसनी आमचो दिमाग के बले आराम से जरूरत रुआ।
1: आजकल लोग घंटों तक स्क्रीन देखते रुआत ये जो असर कितलो नींद और मानसिक स्वास्थ्य ने पड़वा ने।
0: हाँ कितरो युवा मन आधा राती तक मोबाइल चला तो आदत बना ले से नतीजा का है झूमा पुरानी हो बियाने थकान रहुआ है और पढ़ाई या कहीं काम ने मन भले नहीं लागे
1: और सोशल मीडिया ने लगातार दूसरों जिंदगी के देखुन कई लोग खुद के खुद मतलब कम समझुक मुरियावत ने।
0: सत्य बलिस, हर चमक तो चीज असली खुशी नहीं दीवार।
1: सत्य बलिस रोशनी मके गोटुक छोटे जैसन घटना सुरता है ऐसे
0: आले
1: गोटुक परिवार गोटुक ढाबा ने भात खाऊ जावात मानतर होता सब पाए आप लो मोबाइल ने व्यस्त रहोत कोनी को चीज गोट नहीं ना बात नहीं।
0: ये सिर्फ गोटक परिवार जो कहानी नवाय ममता बल्कि आज कितरो घर जो हकीकत बनन गेली से।
1: सत्य बलिस रोशनी पहले चो लोग तो दिल ले जुड़ते रहोत अदाए चो लोग तो नेटवर्क ले जुड़ सोतने
0: काय बात बलिस ममता, मानतर गोटक सवाल ये है ममता।
1: हाँ
0: तकनीक खराब है कसन
1: नहीं रोशनी बिल्कुल नहीं तकनीक आम ची जिंदगी के आसान बना ली से पढ़ाई बैंकिंग इलाज जानकारी सब कुछ आसान हो ली से।
0: समस्या तकनीक नहीं हुन चो जरूरत ले ज्यादा इस्तेमाल है ने।
1: सत्य बलिस रोशनी अगर मोबाइल आम ची जरूरत बन ले ठीक आए मानतर आदत बन ले सावधान हो तो जरूरी आए।
0: तो संगवारी मन आदत आमी गोठियावा कि डिजिटल डिटॉक्स कसन करते रहे।
1: सबले पहला तरीका है बियान उठते ही तुरंत मोबाइल नी देखतो रहे।
0: दूसरा भात खाते समय मोबाइल के दूर संगातो रहे।
1: तीसरा दिन ने कम से कम एक घंटा मोबाइल धरतो आदत नी बनाते रहे।
0: और चौथा तरीका सोतले आधा घंटा पहले मोबाइल के बंद करन संगातो रहे।
1: और एचो अलावा किताब पढ़तो टहलतो खेलतो और परिवार संगे समय बितातो जरूरी है।
0: कई लोग रविवार दिन डिजिटल फ्री डे बोले संगवार।
1: सत्य ये तो नंगत आदत है रोशनी।
0: पीला मन और युवा मन ने मोबाइल चो लत तेजी ले बढ़ते जाए से।
1: हाँ होने का जो माता पिता और शिक्षक जो जिम्मेदारी बोले बड़े से
0: अगर बड़े खुद हर समय मोबाइल ने रदे तो पीला मन बोले होनी सीख देने।
1: हाँ सत्य बोली रोशनी पीला मन के सिर पर मोबाइल दे तो जरूरी नहीं आए समय बोले दे तो जरूरी आए।
0: संगवारी मन जिंदगी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है
1: असली खुशी परिवार चो मुस्कान ने दोस्ती यारी चो बात ने और प्रकृति चो शांति ने लुक ली से।
0: कभी मोबाइल के अलगे संगहा खुलन भाती हासा आप लोग के गोठिया
1: उतलो ने देखा मन के गोटोक अलग सुकून मिरुआ है।
0: तो संगवारी मन आज हमें छोटे असन संकल्प धरवा कि तकनीक जो इस्तेमाल करवा मानतर समझदारी और संतुलन संगे।
1: डिजिटल दुनिया ने रवा मानतर खुद के होता खोन नी दे।
0: तो संगवारी मन गोड़ बात तो होते ची रह दे अदाए बड़ू आगे जो कार्यक्रम बाटे।
1: तो आज हमें आप मन का जे धरुनीलू से शीर्षक गीत ज्ञान ध्यान चु गोट और कहानी पाठ
0: ममता।
1: हाँ
0: शीर्षक गीत बल्लो ने आज हमी हम चो संगवारी मन का जे गोटक इतरो अच्छा शीर्षक धरलू से जो चो नाम है प्यार।
1: हाँ
0: तो यही शीर्षक ले हमी अदा गोटक गोट गीत सुनाऊं दे हम चो संगवारी मन के ने।
1: हाँ
0: तो संगवारी मन पहल गीत सुना सा आप मन फिल्म मैंने प्यार क्यों किया ले जोन थाने आप लोग मधुर स्वर दिला से उदित नारायण अलका याग्निक गीतकारात समीर और संगीतकारात हिमेश रेशमिया अले इया सुनू ये गीत के।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: रोशनी, जहलाल पहिल सुनते रहूँ गीत का है सुंदर रली ने।
4: हाँ, और ते जानिस ममता
3: क्या है
4: ये फिल्म? आप लोग कॉमेडी, बेहतरीन स्टार कास्ट और कॉमिक टाइमिंग का जे बिकट जाना जावा है, और ये फिल्म जो गीत मन खूब भी लोकप्रिय है।
3: अदा मैं सुना, ठीक है
4: आले सुना।
3: फिल्म जानवर ले स्वर दिला से अलका याग्नि, सोनू निगम, जसपिंदर नारूला, सुखविंदर सिंह, संगीतकार आनंद मिलिन। तो यह सुनो ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ममता,
3: हाँ रोशनी,
2: मैं आलो भर लो गीत मंच सिलसिला तो चल चेती रुआ है ना।
3: हाँ
2: अले हम संगवारी मन का जो कहानी पाठ बुलान लो समरों दो।
3: हाँ ठीक है, तो संगवारी मन सुनवा कहानी पाठ जो चु शीर्षक है दो बैलों की कथा पूजा मेहरा जो शब्द ने।
4: कहानियाँ दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे बेवकूफ कहना चाहते हैं तो गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहविष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सिंह मारती है, बिहाई हुई गायें तो अन्यास सिंह मारती है ही है। सिंहा बिहाई सिंहनी का रूप धारण करती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी क्रोध में आता है, किंतु कभी कभी उसे भी क्रोध आता है। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं देखा। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती, दिखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दिन दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दाव करने वाला मनुष्य वंचित है। दो एक दूसरे को सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धुला धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती, फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली सूखा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह डाल लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था वे कहाँ बेचे जा रहे हैं। सामने मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले ने बैलों को घर तक गोई लेने जाने लगा। दोनों को पसीना आ गया। पीछे से हाँकता दोनों दाएं से बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंह नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करके कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम ना किया होता तो चलता और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारे चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हम दोनों ने कभी चोरों की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह हमने सिर झुका कर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर की भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगने लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सब सो गए, तब दोनों ने जोर मारकर पगड़ा तोड़ डाला और घर की तरफ चल पड़े। बहुत मजबूर थे, अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा लटक रहा था। घुटने तक पांव की चढ़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दोनों का दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अद्भुत पूर्ण ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभी ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन कर देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, कितने दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवादन करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर खड़ा देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अब बैलों पर अपेक्षा ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, तुम्हारी तो बैलों को खिलाना, यह अपेक्षा ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, तुम्हारी तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिल्लाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? पत्नी चिढ़ गई, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जुतवाते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ जो मजदूर की बड़ी दी की गई। बैलों को खली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी नजरों से द्वार की ओर देखा, ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाल आ ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं से ही कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों गाड़ी में जोता, दो चार बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वह सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैल को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी छूता ना था। उसकी टिकटिकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत हुआ, सम्मान व्यथा थी और अब उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक नाद उठाई। दूसरे दिन साला ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने पांव ना उठाए की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का काबू से बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने कुछ भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठी लेकर आ रहा था। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में एड़ कर रह गया आया और पहुंचा और दोनों को पकड़ कर चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती पलट कर पड़ता। उसके तेवर देखा गया और उसके सहायक समझ गए।
3: रोशनी, ये तो रली कहानी पाठ जो कि पूजा मेहरा सांगती रला।
2: हाँ ममता,
3: हाँ
2: अदा मैं तुझका जे और गोटो गीत संगाले से
3: अल सुनांद।
2: तो अगला गीत है फिल्म ऐतराज ले, जोन थाने आप लोग मधुर स्वर दिला से उदित नारायण, अलका याग्निक, गीतकार समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया। अलिया सुनिए गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो रोशनी,
3: हाँ?
2: गीत गोविंद तो होते चिड़िया है दिन ने।
3: हाँ।
2: अदाय बड़ू बे ज्ञान ध्यान चु गोट बाटे। आज आमी जानवा ज्ञान ध्यान चु गोट ने समुद्र चु बारे ने।
3: हाँ।
2: समुद्र
3: पृथ्वी चु लगभग 71% सतह पानी ले ढकी होले से, और ये जो सबले बड़े हिस्सा समुद्र ने जाऊन मेरुआ है। इसी कारण पृथ्वी के नीला ग्रह बोले बलवात।
2: समुद्र चो गहराई ने सूर्य चो रोशनी नियम रुआ है। का जे हुता खूब में अंधार रुआ है। कुछ समुद्र जीव आप लोग शरीर ले खुद रोशनी पैदा करुआत।
3: समुद्र पृथ्वी चो मौसम के संतुलित संगतों ने खूब बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। हुन गर्मी के सुकून वातावरण के नियंत्रित करतो ने मदद करुआ।
2: वैज्ञानिक ए भी बोले मानुआत कि समुद्र चो भीतरे ए भी बोले खूबे रहस्य लुकली से, जो चो पूरा जानकारी आज ही बोले इंसान के पता नहीं मेरे।
3: मके बल उसने लागू है ममता जाने।
2: हाँ।
3: और समुद्र चो भीतरे हजार प्रकार चो जीव मिरुआत, छोटे छोटे रंग बिरंगी मछली ले धरुन विशाल वेल तक। और ब्लू वेल के पृथ्वी चो सबले बड़े जीव मानवात, जो उनकी समुद्र ने रहुआ है।
2: सबले बड़े जीव है। तो संगवारी मन, ये तो रली ज्ञान ध्यान चु गोट, अदा फेर मुर करू बे गीत गोविंद बाटे।
3: हाँ ममता, आज चो मौसम के देखो नहीं खाली गीत मन ची सुनक भाई से ने।
2: हाँ, पक्की लागे फेर आज चो गीत मन।
3: हाँ, तो धरुन बोलते ही लिसी तित नगत नगत गीत मन के ने।
2: हाँ, आल सुनाओ का।
3: हाँ, अदा फेर ले सुनवा गोटो गीत फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ले, जोन थाने आप लो स्वर दिला से अलका याग्निक उदित नारायण, और गीतकार समीर, संगीतकार अनु मलिक। अले इया सुनो ये गीत के।

0: रोशनी,
1: हाँ
0: काय सुंदर गीत मन सुनाम देसी।
1: दक्षित मौसम दकन दकन असन गीत मन अपने अपनी की दसे।
0: हाँ रे, तुम धने धान धने बुन लास कसन
1: काय संग होय ममता बुन लो रे हफ्ता होले न तपा बेरा जो बुन लो रे थाने लाई फुटते रे राजी मारे पानी दक्षित
0: उसनी तो आम थान बोली उसनी होली से।
1: और संग और काय काय बुता बात लिस तुम थाने
0: बूता तो रतु का जासी ची रोशनी पानी इलन तो अगर धान धानी बुन लो रासे पानी पाना इलन तो अकरा ये तिकाय कसन होती जाले।
1: हाँ और जोंद्रा जोंद्री भी कुरास कसन
0: जोंद्रा आसी ची रोशनी सुखा लो रासे फिर सुखा उस फिर ओंडिया उस आजकल खिंडी खिंडी झिटिर झिटिर दक्षित
1: आए ची
0: ढीठ डाड़ भुड़ बाड़।
1: ममता
0: हाँ
1: आम तो संगवारी मान आजी ए महफिल ने एक आम के सुन ला होती ने कितरो अच्छा लागे साम के बोले ने।
0: हाँ
1: और ए ममता आम जो भाग दौड़ भरा जीवन ने नहीं खिंडी कसन पल संगीत जो होले ने कितरो अच्छा लागो है ने।
0: हाँ रोशनी,
1: हाँ मके तो असन लागो है ममता के गीत मन के खाली सुनते जरा असन
0: सुनुन फेर खिंडी का खुद के बल फुताए नीलो लागती
1: हाँ
0: तुम्हारे।
1: काय हुन हुन काय तो मैं ये लोग के महसूस करु खुआ कि ए हुन जन जहन का नाम सुनवा ये मौसम ने उसन महसूस करते जावा हम और देखते रहो हम कि काय काय करु से बोलते ने।
0: हाँ
1: तो ममता
0: हाँ
1: आम चो जाते समय अबल होली से ने
0: हाँ
1: आले अलविदा धरु बे संगवारी मन के बोले।
0: अल धरु
1: संगवारी मन मैं आप मन चो कंपेयर दोस्त रोशनी नाग
0: और मैं ममता साहनी।
1: आम दोनों के दिया विदा जुहार।
0: जुहार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:05 हुए हैं।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए, ये मौका मा देश भर में करे जावा थे आने आने कार्यक्रम के आयोजन। मुख्यमंत्री है आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं 12वीं के 22 जन पढ़ैया लैका मन ला सम्मानित करीन। और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। अब समाचार विस्तार ले। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए, ये मौका में देश भर में आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतकोन केंद्रीय मंत्री मन विश्व पर्यावरण दिवस के शुभकामना दीन है। ये मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसन पहल हा, हर बछर लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाए में महत्वपूर्ण योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी हकीन कि आज के दिन हा पर्यावरण संरक्षण और सरलक विकास ला बढ़ावा दे के प्रतिबद्धता ला व्यक्त करे के प्रतीक आय। इति प्रदेश में घलो आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। राज्यपाल रमेन डे कहा रायपुर के लोकभवन और नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करीन। ये मौका में ओमन लोगन ले ज्यादा पेड़ पौधा लगाए और पर्यावरण ला सुरक्षित रखे के अपील करीन है। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहर ले रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम ऊपर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईन। ये मौका में उमन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के शुभारंभ करीन और प्रदेशवासी मन ले घलो एक ठन पेड़ माँ के नाम लगाए बर अपील करीन। यही बेरा वन मंत्री केदार कश्यप हकीन कि छत्तीसगढ़ अपन समृद्ध वन संपदा जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन के सेती देश के समृद्ध राज्य आए। राज्य सरकार हा पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास ला सर्वोच्च प्राथमिकता देवत सरलग कार्य करत है। श्री कश्यप बतैन कि राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पाछू 2 बछर में करोड़ों पेड़ लगाए गए है। ये अभियान है एक ठन बड़े जन आंदोलन के रूप ले चुके है। उन्हें रायपुर में स्कूली लैका मन वन्य प्राणी के वेशभूषा में धारण करके रैली निकालीन और पर्यावरण संरक्षण के संदेश दीन। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहर ले रायपुर में ही एक ठन कार्यक्रम आयोजित होइस, जेमा पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षक मन के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगीस। एकर अलावा विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में आज प्रदेश के आने आने ग्राम पंचायत में घलो विशेष ग्राम सभा के आयोजन करेगीस। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा प्रदेश के शराब फैक्ट्री ले निकलैया जहरीला पानी ले नदिया मन के प्रदूषित होयु पर नाराजगी जताई से। मुख्य न्यायाधीश के डिवीजन बेंच हा ये मामला के सुनवाई करत 2 जन अधिवक्ता मन ला कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे है। उन्हें कोर्ट कमिश्नर मन प्रदेश के 3 ठन शराब डिस्टलरी यूनिट के संयुक्त निरीक्षण करी और अवैया 30 दिन के भीतर अपन रिपोर्ट सौंपी। ये मामला के अगला सुनवाई 6 जुलाई के होही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर देश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के रहे है। ये दौरान देश हर क्षेत्र में कतकोन उपलब्धि हासिल करिस। श्री साव आज रायपुर में पत्रकार मन लेगोट बात करत बतैन कि केंद्र सरकार के उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजना मन लेके आज ले 21 जून तक महाजन संपर्क अभियान चलाए जाही। भाजपा कार्यकर्ता मन घर घर जाके जनसंपर्क और हितग्राही मन ले संवाद करही। एकर अलावा प्रदर्शनी और जन जागरण कार्यक्रम घलो आयोजित करे जाही।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़थन बाचे समाचार को ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रम विभाग डहर ले आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल हुई।

कार्यक्रम रायपुर में होइस। ये मौका में मुख्यमंत्री ह छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट सूची में टॉप टेन में जगह बनैया पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 22 जन छात्र छात्रा मन ला मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रूपया के प्रोत्साहन राशि दे के सम्मानित करीन। यमा कक्षा दसवीं के 9 और बारहवीं के 13 जन विद्यार्थी शामिल हैं। ये विद्यार्थी रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, शक्ति, बलौदाबाजार, रायगढ़ और कांकेर के संग आने आने जिला के हैं। मुख्यमंत्री हा सम्मानित विद्यार्थी मल्ला बधाई देवत कहिन कि उखर सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं भलुक श्रमिक परिवार के संघर्ष, परिश्रम और संकल्प की प्रेरक कहानी है। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ये दारी विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 6 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले एफएम और प्राइमरी चैनल में बिहेनिया 9 बजे करे जाही। एला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एक के संग्रह रिले करही। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह में शामिल हुईन। जी हाँ, आने आने संकाय के 9,000 ले ज्यादा विद्यार्थी मल्ला उपाधि प्रदान करेगी। इमले 7,500 ले ज्यादा स्नातक, 1,500 ले ज्यादा स्नातकोत्तर और 5 सुपर स्पेशलिटी उपाधि देगी। वे आने आने संकाय में सबले ज्यादा अंक पवैया विद्यार्थी मल्ला स्वर्ण पदक प्रदान करेगी। कार्यक्रम ला संबोधित करत राज्यपाल हकीन कि डिजिटल एडिक्शन आज के सबले बड़का समस्या में एक है। यह सिर्फ मन के नहीं भलुक पारिवारिक और सामाजिक जीवन ला घलो प्रभावित करते। नवा पीढ़ी ला एकर ले बाहर निकले के जरूरत है। वे मुख्यमंत्री है कहिन कि आज के दिन हा सिर्फ उपाधि पाए के दिन नहीं है, भलुक समाज और मानवता के प्रति नवा दायित्व के निर्वहन बर संकल्प ले के मौका आए। विद्यार्थी मन के सफलता उखर व्यक्तिगत उपलब्धि के संगे संग छत्तीसगढ़ के प्रगति और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा लघलो दर्शाते। इति कार्यक्रम ला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हघलो संबोधित करीन। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप अपन निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम ले प्रदेश में हाथी संरक्षण, मनखे और हाथी के संघर्ष ला कम करे के मंशा ले आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ करीन। ये मौका में श्री कश्यप बतायन कि हाल बेरा हाथी मन के विचरण सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग संभाग के कतकुन इलाका में बगरे है। ऐसन में हाथी संरक्षण के संगे संग प्रभावित इलाका में रहिया लोगन के सुरक्षा करना घलो जरूरी है। मंत्री है बतायन कि बछर 2022 में करीबन 240 हाथी रिहिन, जिकर संख्या बाढ़ के बछर 2026 में करीबन 450 हो गए है। यह वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़का उपलब्धि आए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है प्रदेश में एक के दिन आयोजित होया 2 ठन परीक्षा के तिथि में बदलाव ले इनकार कर दे है। एक ठन याचिका के सुनवाई करत न्यायालय है कहिस कि डीएलएड के परीक्षा साल में 2 घाव आयोजित करे जाते, एकर सेती परीक्षार्थी मन के तीर अवैया परीक्षा में शामिल होए के विकल्प सुरक्षित है। ऐसन में जम्मू परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग की जानकारी ले दक्षिण पश्चिम मानसून 12 जून तक छत्तीसगढ़ अमरे के संभावना है। बता दें कि अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में 1-2 जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। उन्हें कुछ एक जगह गरज चमक के संग गाज गिरे के घलो चेतावनी दे गए है। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए, ये मौका में देश भर में करे जावा थे आने आने कार्यक्रम के आयोजन। मुख्यमंत्री है आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं 12वीं के 22 जन पढ़िया लैका मल्ला सम्मानित करीन। और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना और यह 24 घंटा के दौरान प्रदेश में 1-2 जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्ये 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। पुनक्रयण दरः 5.5% यावत् स्थास्यति। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयां यात्रायां भारतयात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणाम् अष्टादश वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान् प्रधानमन्त्री मोदी। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिक आधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां कृतवान् तथा जनसभाम् अपि सम्बोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमन्त्री दमन नगरं गमिष्यति गतवान् यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः आजीविकानां निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयश्च भविष्यन्ति। वैदेशिक निवेशकेभ्यः करमुक्तिः, भारते च निवेशवृत्तेः प्रोत्साहनम्। केन्द्रसर्वकारेण वैदेशिक संस्थागत निवेशकेभ्यः महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशात् प्राप्तेः पूंजीलाभे तथा कुसीदरूपेण आये सम्पूर्णकरमुक्तिः प्रदत्ता। एषा व्यवस्था अस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथमदिनात् प्रभाविनी भविष्यति। एतदर्थं प्रशासनेन 26-2000 वर्षस्य आयकर संशोधनस्य अध्यादेशः अपि प्रकाशितः। सर्वकारस्य मते अनेन निर्णयेन वैदेशिक निवेशकेभ्यः भारते अधिकनिवेशस्य प्रोत्साहनं भविष्यति। तेन सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशः वर्धिष्यति। अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे तथा विकास परियोजनानां वित्तसंग्रहे च इदं सहायं भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। बैंकस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवदत् यत् पुनः क्रयण दरः 5.25% यावत् एव स्थास्यति। बैंक इत्यस्य कृते रिजर्व बैंक इत्यतः ऋणग्रहण दरे कश्चन परिकिश्चित अपि परिवर्तनं न कृतं। तथापि रिजर्व बैंकेन चालित वित्तवर्षस्य आर्थिक वृद्धि अनुमानं 6.9% न्यूनीकृत्य 6.6% कृतम्। अपरञ्च मुद्रास्फीत्याः अनुमानं वर्धापयित्वा 5.1% निर्धारितम्। परिवर्तमानानाम् आर्थिक परिस्थितीनां दृष्ट्या एषः निर्णयः समुचितः इति बैंकेन उक्तम्। नेपाल देशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीय स्वीय स्याम भारतीय यात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। सः भारतस्य विदेश मन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य निमन्त्रणेन भारतम् आगच्छत्। यात्राकाले नवदिल्ली इत्यत्र उभयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपक्षीया वार्ता भविष्यति। नेपालस्य विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारेण व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कविस्तारः, ऊर्जाक्षेत्रे सहयोगः तथा जनसम्बन्धस्य सुदृढीकरणं च इत्येतादिषु क्षेत्रेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। एषा यात्रा भारत नेपालयोः मैत्रीपूर्ण सम्बन्धान् तथा परस्पर सहयोगं च अधिकं सुदृढं करिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सर्वम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य त्रिपुरा राज्यस्य लंकामुरा सीम्नि सीमसुरक्षाबलस्य सैन्यबलं सम्बोधयन् व्यापिकां सीमसुरक्षां प्रति दृष्टिकोणं प्रस्तुतवान्। सीमसुरक्षायाः महत्वं प्रतिपादयन् गृहमन्त्री उक्तवान् यत् प्रशासनं त्रिपुरा, पश्चिमबंगाल, बिहार च इत्येतेषु सीमवर्तिषु क्षेत्रेषु अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तनानां निरोधाय दृढसंकल्पितम् अस्ति। श्रीशाहः सीमप्रबन्धनस्य सुदृढीकरणाय स्थानीय नागरिक प्रशासनेन सह उन्नत प्रौद्योगिक्याः एकीकरणं कर्तुं स्मार्ट् बॉर्डर रणनीतिम् इति उद्घाटितवान्।
1: जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है।
0: अद्य विश्व पर्यावरण दिवस समग्रे विश्वे आमान्यते। पृथिव्यां जीवनस्य संरक्षणाय पर्यावरण जागरूकतायाश्च संवर्धनार्थं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमस्य अंतर्गतं अयं दिवसः प्रतिवर्षं आयोज्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहश्च देशवासिभ्यः शुभासंसाः प्रदत्तवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् मातुः नाम्ना एकः वृक्षः इति अभियानं वनक्षेत्रवृत्तौ महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवत्। तेन उक्तं यत् अयं दिवसः पर्यावरण संरक्षणं सतत विकासं च प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः अद्य नवदिल्ली नगरस्य ऑल इंडिया रेडियो परिसरे एक पेड़ मां के नाम अभियानस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवान्। आकाशवाण्या सह संभाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्रि दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे, महाराष्ट्रस्य, आन्ध्रप्रदेशस्य, कर्णाटकस्य च केषुचित् भागेषु, तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति। पुरुषाणां आ अष्टादश वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:30 हुए हैं।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242। सुनो ना।
3: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
4: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अभी कुछ ही समय पश्चात शाम 6:35 पर सुनेगा भतरी नाट गीत, कलाकार होंगे गंगाराम और साथी। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर आप सुन सकते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। रात 8:00 कार्यक्रम घलर में सुनेगा हल्बी गीत, कलाकार होंगे दैमती नाग और साथी। पीलामन काजे गोट का प्रसारण होगा रात 8:30 पर, इसमें सुनेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। कार्यक्रम नंजर आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर, इसमें गुलजार सिंह बघेल से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर सुनेगा खेल पत्रिका, इसमें नैना सिंह थाकड़ से भेंट करेंगी पूर्णिमा सरोज। रात 10:00 आप सुन पाएंगे फोन इन कार्यक्रम लोक रस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए गंगाराम और साथियों के गाए हल्बी गीत।

अभी आप सुन रहे थे गंगाराम और साथियों के गाए हल्बी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अकलमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रति वर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। इधर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने रायपुर स्थित लोकभवन और नवा रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष अभियान के तहत 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है।
12: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं।
0: इस बीच वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। ये अभियान एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। वहीं रायपुर में स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणियों की वेशभूषा धारण कर रैली निकाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेड़ मत काटो का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री कश्यप ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में लगभग 240 हाथी थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर वर्ष 2026 में करीब 450 हो गई है। ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 6 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रम विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 22 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इनमें कक्षा 10वीं के 9 और 12वीं के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे केवल श्रमिक बनकर न रह जाएं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिक और अन्य उच्च पदों पर पहुंचकर प्रदेश और देश की सेवा करें। मुख्य सचिव विकासशील ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर उन्हें केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा 19 शहरों में होगी। इसके लिए 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेश डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में विभिन्न संकायों के 9,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं विभिन्न संकायों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल एडिक्शन आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को डिजिटल एडिक्शन और पॉपकॉर्न मेंटल स्टेटस से बाहर निकालने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि समाज और मानवता के प्रति नए दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रगति और विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है।
12: आयुष विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। आज जिन हमारे बेटा बेटियों को उपाधि और मेडल प्रदान किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छ

0: भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी और विभिन्न जन जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर प्रदेश की 3 शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इनकार कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। रायगढ़ जिले की लैलुंगा पुलिस ने कटकलिया मार्ग पर 2 वाहनों से लगभग 300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 चारपहिया वाहन और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम श्रम विभाग में भी लागू हो गई है। विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही लोक प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बार नवापारा परियोजना मंडल के बार परिक्षेत्र में दर्ज वन्य जीव अपराध के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना चल की राम राम
1: अमर लिस्ना राम राम ना राम राम ऐसी संजय संजय मस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनते सप्पाए गांव कारी दादा दीदी भाई बहन सियान सजन मन के मैं चाल की
0: और मैं ढोया
1: आम्ही तू न करूं से
0: राम राम
1: तक ना ढोया आम्ही तो समय आईले ने आमचे दादा दीदी मन का जे ज्ञान ध्यान चु गोट गीत गोविंद धरू ने उसे ची ने मंत्र तक की आमचे गांव बाटे जुगे करून दकु आमने हफ्ता ने गोटोक दिन बल्ले चाहे हुन सोमवार दिन हो नाले मंगलवार दिन हो बल्ले नाले फिर बुधवार लखीमवार जोन दिन बोले हो गोटोक होए से हाट
0: हाट
1: नहीं आज फलना गांव हाट जाऊं ना आज फलना गांव हाट जाऊं बोलू उसने हम तो जीवन आज जोन बोले साग पानी आए नाले फिर जोन बोले हम जो कमालो जिनिस मना से चाहे हुन साग पान हो नाले कहीं बना लो भी जिनिस हो बोल तो गोटी हो से कि हुता ने उन बाती बिकू से ने
0: हाँ
1: तक कोनी बिकू का अनुरुआ है कोनी घोनी घेनो के हुआ है ने साग पान हो नाले फिर जसन बले आमी बोलू हम जसन कई लोग मन बले आप लोग बाट जोन बले भाजी आए नाले कहीं बना लो बीती जीनी हाँ। आए नाले फिर जसन मछली धरुन सुखसी संगा उरे सोत हाँ। बोल तो गोटे है कि कई लोग मन फटी लता बोले उता बिक सोत बोले ने हाटे बाजारे जान सी चूता बारा बोरन चो जीनी से रहे ने कोनी बिकू काने से कोनी घेनू के अंतर तक की जसन आप जुगे करून बाती आम चो जोन गांव बाट जो है से ने कुछ ही घरे साग भाजी आज जाले उन आप लोग घर चो साग भाजी के टूटा हुआ है और उन तभी कुक लाई नहीं हुआ और कोनी जो उनके साग भाजी जरूरत आसे उन घेनु की हुआ असनी ची कोनी जैसा नापन मन कहीं बनाए सो जीनिस मन जोन बोले आए हांडी कुंडरी हो नाले फिर लोहा चो हो नाले फिर आप जो परला गपा टाटी ने ये जीनिस हो उन घेनुक जाए से और बना लो भी तभी सोत बल देने आमचो जोन गांव बाड चो जोन अर्थ है मतलब घेंतोर बिकतोर ने जहन मके का मतलब कहीं जी निसास तो मैं बिकुक ने तू के कहीं चीपा आस तो तू घेनुक जा में बल तो गोटी आई कि आमचो जोन लेन देन बल्ले जोन के आमचो खोजा खारी भाई मन बोल सत अर्थ व्यवस्था ने कि आम के काय काय हूं तब बिकुक ने उसे कितलो मांग आसे कितलो घेन सोत ने उन हिसाब ने दकुन बाती आमचो गांव चो जोन लेन देन चो हिसाब आए आमचो भारती चो हिसाब आए आमचो जीवना का जे जोन खोजा खरी भाई मन अर्थव्यवस्था बोल सो हूं ये माई मूर जीनीस हो ने जैसा कई लोग मन जैसे बड़े सामान आए नाल कल मोटर आए मोटर फटफटी आए उनके घन तो का शहर गाँव में तो शहर बोले गोटो को आमचो हाट बाजार चो ठान हो ऐसे मात्र आमचो गांव कारी लोग मन का जे नानी असन खिनी कसन जीनी साय तो उन गांव चो हाट बाजार आमचो गांव कारी मन का जे लेन देन करतो हो ऐसे ने और ये मन थान तक के जो गांव चो हाट बाजार बोल लेने असनी नहीं हुआ थे ता बरन बरन चो जीनी रहे से आज कल फिर दा आए जोन बोले आमचो जीवना ने काम है ऐसे चाहे उन खातो जीनीस हो चाहे फिन तो जीनीस हो नाल नानी नानी कल मशीन बोले आजकल हाटे बाजार है
0: नानी सुनी तो
1: मेरे से हाँ। तो ये जो सफाई जीनीस मन एक आमी घेनू से बिकू से बल्ले ने तक आम चुलक पैसा आसे हम घेनू से तू चुलक पैसा चीपा आसे तू बिक से
0: नहीं
1: एक ही आम के खोजा खारी भाई मन अर्थव्यवस्था बोलू नहीं तक कोनी कोनी बार आम हाटे जाऊ आम खिनिक साग भाजी पर कम नहीं कर ले खिनिक असन कूड़ा आसे ना बोलू उसने ना अपा एक महंगा आसे ना बोलू काय होय से कि आम के जीत ज्यादा उपजन हो लेने खिनिक खुद की मोल बल नहीं मिरे से और जोन बाट कम मिरे से हुन भी तीचो महंग रहे से तो जोन महंग रहे से बल लेने जोन बल आमचो लेन देन घेन तो बिक तो जिनिस मनवाए से उन खाले उपरे होते रहे से तो असनी करून बाती आमचो गांव वाट चो जोन लेन देन चो जोन अर्थव्यवस्था हो ऐसे हुन चलते रहे से ने
0: हाँ।
1: तक ये तो रेली आमचो गांव वाट चो हाट बाजार ने आमचो लेन देन कर तो घेन तो बिक तो गोट मन ने
0: हाँ।
1: संगे संगे और बोले गोट आसे अले गोट के बोले सुना दे
0: अले सुन।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सित्तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुनिटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलत माट इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% GST मोला देने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एबर एक समान 18% कर होली से ए काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच ई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
1: हाँ तो ढोया दख ना एक गोट मनबल तो होली ने हाँ। मतलब दख की एबे संजबेरा समय आए और पीला मनबले कोनी कोनी लग बोस लास भी
0: हाँ, हाँ।
1: नहीं था पीला ची मन नहीं सियान मन के बोले आप लोग बुता बोए ना ने
0: हाँ।
1: घर चो सफाई लोग मन के बोलू बे ने
0: हाँ।
1: तो घर चो बुता बोले कर सोच बे कोनी कोनी किनी खाद लाज बोले और कोनी कोनी नहीं बोल खाद लाज हाँ। तो गोटो कसनी ची आम चलगे आज धरु नीले से गोटो कहनी
0: हाँ।
1: और कहनी चुनाव है चतुर्गुआरी और एक कहनी के सांग सोच श्रीमती नंदिता वैष्णव तो वाले सप्पाए रेडियो सुन तो दादा दीदी भाई बहन पीला मन के बोले कहनी के सुनाओ।
0: हाँ सुनो
6: मोच कहनी च नाव आए चतुर बुआरी खूबे दिन चो गोट आए गोटक गाँव ने सौकार सौकारिन रहते रहत मने हुन मन चो गोटक बेटा रहे गोट की बेटा आए बलून खूबे लाड़ मया ने संगाउ रहत हुन मन चो लाड़ मया चो कारण बेटा बीता बले लाड़ बया आसन हो रहे हुन चो संगत बले अच्छा नहीं रहे उठून बिहान संगवारी मन संग ए बाट हुन बाट बुलतो ए ने रहे कहीं घर चो काम बूता करे न कहीं करे न आया बुआ चो गोट के माने बाप चो पैसा के संगवारी मन संग खातो पीतो ने खर्चा करते रहे इच हुन चो बुता रहे असन संगत कारण के भाई स्कूल बल नी गेलो पढ़ाई लिखाई बल नी कर लो माए बाप खूबे समझावत मानतर हुन और अधिक होते जाए हुसने हुसने दिन बीतते गेली गोटक दिन माए बाप सुतुर होला कि नहीं ए हम चो बेटा नहीं नी सुधरे ए चो बिहाव करुन दिले तेबे सुधरे से असन लागे दे लागे से ए चो हमी बिहा करुन देउ असन बलून बुआरी खोजुकलाय मुरियाला गोटक गाँव ने काय मंजा सुंदर लेकी के मन करला आरु सांगला बेटा हमी तुचो काजे बुहारी दखलू से ए महीना गेलो पाछे तुचो बिहाव करुन देउ दे इतरो के तो सुनुन तो हुन चो मुंड फूली माय बाप के बले नहीं नी बलुक सकलो और मने मन विचार कर लो आरु आप लो संगवारी मन लगे गेलो आरु सांग लो कि नहीं मोचो आया बाबा नहीं मोचो बिहाव करू आत मने मैं कसन करें दे जाले मोचो जाल मुंड फूल ली से आले तुम ही सांगा मैं कसन करें दे संगवारी मन बोल सोत दग भाई बिहाव कर सोत जाले करुक देस नहीं नी बोल मानतर दग तुई हम के निशान से बिया होली जाल अरु नहीं तुई हुनुआ बुआरी आई दी नहीं हुंचो संगे तुई गोठिया से चिनाई हुंचो बाटे दख से चिनाई असन कर लिस जल नहीं जल हुन कितरो दिन रहे दे तू के नहीं छांड उकलाए हुन के जाओ चलाए पड़े दे समझ लिस असन बलते बल तो कि नहीं हुन के अच्छा लागली और बिया हो तो काजे मान लो आया बाबा के बोले हरिक लागली दखते दखते दिन पूर्तो के सौकार सौकारिन काय मंजा हरिक उदिम ने नुआ बुआरी के घरे आनला बियाबर करून नुआ बुआरी मुंड के ढाकी होन बसुन रहे तेबे लेका इलो और बले से द मचो आया बाबा तुके आपलो मन ने बिहा करून आनला सोत मचो मन नी रहे मैं तुचो संगे के भाई नी गोठिया हुआ ना तुके मैं दखू बलनु आए मचो पूरे तुई के भाई पूरे नी पड़ से समझ लीस असन बलून हुन खोली ले निकरून जाते गेलो हुन दिन ले बपड़ी बिचारी के भाई हुन चो पूरे नी पड़े माए बाप मन दखोत मांतर काई करता माए हुन चो सत्रा सत्री चो सेवा करून रांदा बाड़ा करून बुता भैना करून रहे बिचारी के भाई हुन चो पूरे नी पड़े आपनो मनुक बिताचो बुआरी बले से तुम्ही फिकिर नी करा गोटोक दिन असन आई दे सब अच्छा हो दे आपलो मन के नी दुखावा हुन एक दिन मकई ची दख दे दखते रहा से तुम्ही असनी असनी समया होती गेली गोटोक दिन गांव चो कोतवाल हाका पाड़ते भूलते रहे सुना सुना सुना आमचो राजचो राजा चो बेटी राजकुमारी गोटोक बरत धरली से जे कोनी हुनके हसाउन दे दे हुन चो संगे हुन बिहा करे दे सुना सुना सुना गांव चो लोग बोलते चिचियाते रहे सपाय हुन चो गोट के सुनला राज चो लोग मन और जाऊक मुरियाला कौन राजा घरो कोनो राजकुमार कौन तो सौकार चो बेटा कौन तो काय असन करते करते खुबे हुन चो लोग जाऊक मुरियाला मांतर कोनी हुन के हसाउक नहीं सकत ए लेखा चो संगवारी मन बोले सुनला अरे बोलसत ए संगात अरे हामी बोले जाऊन दखू नहीं ना कौन जाने कोचो भाग ने का आया से जाले अल जाऊन तो दखू बोलून वाट करला अरु गेला अब का कह नी सांगत आया बाबा बोल नी सांगे हुन लेका कि कहाँ जाए से बोलून कई एक दिन होली बेटा के नी दखून माए बाप बोले फिकिर करला और गागा बोगा होक मुरियाला तेबे हुन चो बुहारी बीती बोले से आया बाबा तुम्हें नी गागा मके अच्छा नी लागे तुमके गाग तो दखून हुन मन के वो गाय करा ली अरु बल ली आया बाबा तुम्हें फिकिर नहीं करा मैं तुम चो बेटी आए तुम चो बेटा के कहाँ ले बले खोजून आने दे बलून पाए पड़े से अरु घर ले निकरे से काय सुंदर लेखा मन चो भेस बना ली और नहीं मुंडे पागा पिंदून घोड़ा ने बस ली अरु हुन गेली हुन राज ने हुन राजकुमारी चो राज ने हुन पन सुनू रहे हाका पड़तो के और खोजते खोजते हुन राजकुमारी चुका तो ने गेली और हुन जाने से बले कि एमन मन होता है गेला सत बलून हुन चो दिमाग लगाली हुन तो खूब चतुर रहे हुन चो बुहारी आप लोग बुद्धि लगाऊ नहीं हुन बली एमन बल होता है गेला सोत और काई बले अड़ना फोली से होता है जाए दे बलून गेली और होता सिपाही मन के बले से मैं इथा राजकुमारी संग भेंट कर रुकलाई ले से मके निहा हुन मन चो लगे सिपाही मन नीला राजकुमारी चो पूरे ठिया हुन आगे हाथ जोड़ून राम राम कर ली अरु अच्छा ध्यान देऊन दख ली खाले ले ऊपर ले राजकुमारी गहना गुठाने लदी हो रहे मांतर हुन चो कपार चुचाए रहे एके दखुन आप लो जब भीतर ने गोटक टिकली निकराउन राजकुमारी चो कपार ने लगाउन दिली उतर ने तो राजकुमारी खल खलाउन हासुन दिली अरु उठून जयमाला के पिंदा तो काजे होली तेबे हुन बल्ली थेबा थेबा राजकुमारी थेबा तुम चो संगे गोट गोट गोठिया आनता तेबे फिर ए होय दे दखवा असन बलते राजकुमारी आप लो संगे हुन के खोली भीतरे आन ली तेबे हुन आप लो मुंड बांदा के निकराउन दिली काय के दखे से राजकुमारी काय सुंदर करिया कन्हा लगले हुन चो चुंदी लहराते रहे और मुंह कान बले इतरो सुंदर के दखुन अचरित होली तेबे हुन आप लो कहनी के सांगली असन असन आय राजकुमारी मचो मनुक बले इथा इलो से असन मके लागे से मके खिंडिक तुम चो कहाँ संगाला से सबके दखाउन दिया हुन फिर जोन मन हसाउक नहीं सकत हुन मन के फिर हुन जेल भीतरे डारून दे राजकुमारी और कौड़ी मन के पिंधाउन दे कान ने तेबे राजकुमारी बले से हौ मैं मचो हुन कैदी मन लगे तुमके दखाउन दें दे असन बोलून बले से आले जाऊ बोलून राजकुमारी बले खुबे हरी खोली हुन चो चतुर पना के दखुन और बल्ली जेब बले हुन होय दे मैं तू चोले खूब भरी कासे इतरो लोग इला कोनी मके हार पिंदाला झुमका पिंदाला पैर पट्टी पिंदाला करधन पिंदाला दुनिया भर चो गहना पिंदाला मांतर काचो दिमाग नी पुरली गोटक नारी चो चुचाए कपार ने

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। पेश है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: भाई
1: नहीं
0: हुए थे।
1: हुए
0: नहीं
1: थे।
0: तो ये तो रली आम जो किसान भाई और लेहरा पानी संघ चुगोट मांतर
1: हाँ
0: दक की आज ही बल्ले ने हुए से 5 जून ने,
1: 5 जून। हाँ एक
0: और
1: बस
0: 5 जून के बनाए सो तामचो विश्व पर्यावरण दिवस बनाए सो।
1: हाँ
0: ये चुका जी काय हुए से कि ये जो न विश्व पर्यावरण दिवस जो नए नहीं, ये दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव पर्यावरण पर वोटो काम गोट निकाला, और
1: हाँ
0: हुन दिन ले यही 5 जून के ची विश्व पर्यावरण दिवस के रूप ने उनके तैयार कर ला।
1: हाँ
0: ये जो 5 जून के हम विश्व पर्यावरण मनाऊ से नहीं, ये जो कई कसन काम रहे से बोले ने हम चो ये तो समय आके जुगेल जुगे करुन बज जक। आजकल गांव गांव ने स्कूल मन बोला
1: स्कूल।
0: आसने,
1: हाँ
0: हाँ स्कूल मन ने इको क्लब बना ला से,
1: हाँ
0: जूता आप लोग जोन बोले रुख राई के बचाऊ कचरा नहीं करूं, और जो नाम सबले माई मोर जीनीस हो से ना गोटो को आमी बोलूं से प्लास्टिक
1: प्लास्टिक।
0: प्लास्टिक पेगड़ झोरी मन ने झोरी हो ना हाले बोतल हो। आजकल तक की सपाई बाटे जो नाई नहीं पेगड़ झोरी चे नाल पेगड़ जो सीसी बोतल मन ये से
1: ऐसे
0: मंत्र ये के तो हम काम नहीं आनू से ने हटे बाजारे बोल जाऊं से या
1: हाँ
0: कहीं बोले घेनू से उन झिलिन गोरुन दे सो,
1: दे सो
0: और उनके ने हम खत खोद रहा पकान दे
1: पकाने
0: से
1: उनसे। हाँ
0: ने चाहे कोनिज बाट चो लोग हो शहर गांव चो हो नाले फिर गांव बाट
1: गाँव।
0: चो हो,
1: हाँ
0: बोले ने पढ़े लिखे लोग बोले आमी आमन मन गलती कर सो कि
1: हाँ
0: ये जो ना पेगड़ झोरी बीती ने अब ठग
1: हाँ
0: का घर ले तो आज तक आगे जुगे तो जिनिस नहीं मिलते
1: नहीं
0: रहे ने,
1: मिलते रहे। हाँ
0: तो घर ले झोरा नाले बोरा धरून जाते रहो हाटे बाजारे बोल। मानतर ये भी चुचाए हाथ जाऊं से कहीं साग घेन लेने होता है ले उन पेगड़ झोरी की है नू से
1: दरुन से। हाँ
0: हाँ, और उनके आनू से उनता निकराऊं से काम करूं से, यार उंझेरी खत खोदरा नाल कहाँ है बल पकान दे
1: पकाने
0: से।
1: उनसे। हाँ
0: मानतर दक ये जो पेगड़ झोरी है ये माटी संग मिसुन कून हो है,
1: निकुए। हाँ
0: कितली बोरो करे दे
1: निकुए
0: उनकी जीवना
1: मानते।
0: भर उन
1: हाँ
0: सरुन मोड़ जा से मानतर हूं निकुए से।
1: निकुए से। हाँ
0: तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस दिन यानी कई कसन गोट मन के आमचो खोजा खारी भाई मन सोचला कि ये जो आमचो लेहरा पानी जोन की आमी प्रकृति बोलूं से
1: हाँ
0: ये चो आर आमचो जीवना संगे मिसान संगव और
1: संगम। हाँ
0: बचान संगव संगे संगे जो नाय नहीं आमचो जसन आमचो रुक रही होली, और संगे संगे आमचो जोन लेहरा पानी
1: लेहरा
0: होली
1: पानी। हाँ
0: और चिड़ी चुड़ूम जीव जंतु
1: हाँ
0: ये सब के गोटोक सूतर ने आनून बाती बांधून बाती आम लेहरा पानी के बचाऊं। असली
1: बचाओ।
0: ची जोन आम चो जोन पर्यावरण लहरा पानी के बोलूं से आम चो जीवना चो जोन माइमूर गोट हो से
1: गोटो से।
0: तक
1: हाँ
0: कि भी आम की खिनी लहरा नहीं मिल लेने। आजकल तो जेठ दिन है सपाई
1: हाँ
0: जहां सोतने,
1: हाँ
0: अरे कौन दिन ही लहरा नहीं आम चो जोन लहरा पानी ने
1: नहीं
0: रुख खुटबल निहल ले लहरा नहीं ले
1: नहीं
0: कसन लाग
1: दाम
0: एकदम
1: भी
0: डहा
1: कर
0: डहा
1: लागे।
0: लागू
1: हाँ
0: जाए इसने डहा निकाल
1: हाँ
0: लागे से।
1: हाँ
0: तो ये मन काजी बल नहीं आम के लहरा पानी जरूरी खूबे काम चो जिनीस आए
1: हाँ
0: आम चो जोन रुक रही आए आए उनके आमी बचान संगाऊ ते भी आम चले लहरा पानी बल बाचे दे, और जोन लोग मन अच्छा अच्छा काय रसे लदने रुक मन के गोंदुन बाती कहीं ना कहीं बनान दे सो, तो
1: हाँ
0: उनके बोले आमी बचाऊ कि अच्छा रुक आए छाए आए आए गारता बोसुन बाती चढ़ी चुड़ुमरा दे मनुख जीवना ना मनुख ना कहीं जीव जंतु बोले तो छाए धरे देने ये
1: हाँ
0: सब के बोले बचाऊ, और हम के आगर ले आगर रुख खुट पेड़ मन लगाऊ आमी, और आम चो लेहरा पानी के बोले नंगत बनान बत संगम दक।
1: संगम। हाँ
0: आजकल काय होए से कि धान मीण सोत जोंदरा डांडा लड़ला जो
1: हाँ
0: पति मन बाचू रहे इसलिए उनके चापुन दे उसे
1: हाँ
0: उन चाप ले काय होए इसकी लेहरा धुआं लेहरा
1: हाँ
0: धुआं बोल निकरे से
1: दुआ निकले।
0: उन धुआं
1: हाँ
0: जावन बाती लेहरा मी सुन जाए से।
1: हाँ
0: तो ये ले काय होए से कि आम चो लेहरा पानी बोले लेहरा बोल नुकसान होए से।
1: नुकसान हो से।
0: तो ये सपाए गोट मन के आम के पूरे उन बाती काम कर तो रहा है दक की आम चो जो लेहरा पानी आए रुख खूटा है, और रुख खूट लेहरा पानी संगे संगे ये जो नाम ये भी गोठियालू पेगड़
1: हाँ
0: झोरी आए
1: पेगर जोड़ी
0: कसन
1: है।
0: बोले
1: हाँ
0: नहीं लेहरा पानी रुख खूट के तो हम कसनी बोले बूटा मोड़ान बाती
1: हाँ
0: जियाक सकूं।
1: जाग सकूँ।
0: मानतर ये पेगड़ झोरी मन आजकल हम शहरे बल जाऊं से नाल गांव वाड बल दक
1: हाँ
0: जुगे करूं शहरी गांव दकू खोए से
1: हाँ
0: कि ये जो पेगड़ झोड़ी है नली मन ने कितलो कचरा हुए से,
1: कचरा हुए
0: और
1: से
0: कोने दिन पानी मार ली और नली भोर ली बोले सड़क बाटे तो कितलो
1: ओछी हो रहे से ना।
0: ओछाई हो रहे से
1: हाँ
0: कचरा आसत,
1: हाँ
0: तो कितलो नुकसान करे से हम चो लेहरा पानी के। और आजकल तक संगे संगे कहीं बोले आजकल गांव गांव ने बोल मीरे से पीऊ तो जीनीस मन
1: हाँ
0: ने आई होता बोल दक कि उन पेगड़ बोले ने प्लास्टिक डब्बा आसन है
1: डब्बा।
0: पेगड़
1: हाँ
0: झोरी जो डब्बा
1: हाँ
0: ही है
1: डबाइच
0: हुन बोले नीना से
1: नीना से से।
0: नहीं उनके बोले आंसोत काम ने कर जोन बोले होता भूर रहे से उनके पियो और पकान दे सो
1: पकान दे सो था।
0: नहीं हुन बोले नुकसान करे से कसन बोलले कुए नै न सडे गले नै आगे जो कि आमचे गाव बाट चो लोक मन काय करत पत्री दोनन खावत आर उनके ने उन खत खोदरा ने पकान देवत
1: खत बोलवत रे आर उन कुते
0: बोले कुते बोले रे कुली बोलन खत बोले होय मंतर ये भी खाद लो बीती उन कागज चो थारी हो नाले पेगड़ झोरी चो थारी हो उनके तु खत खोदरा ने पकान दे उन पांच बरक दस बरक बीस बरक रले उन नी कुए तो ये सब जिनिस मन के नहीं धीरे धीरे बात है आम चो पढ़तो लेखा मन होला ना पढ़े लिखे लोग मन होला आमी पूरे उन बात ये सब के आमी दखा रखा नहीं कर लू जाले नहीं आम चो ये तो मेरा चो जोन बोले पीढ़ी बोले ने आम चो बेटा बेटा चो बेटा जिद लाया आमी बाड़ून बाती दादा पर दादा बनवा हुन मन के फिर आम कहा ले छुक ना लेहरा पानी देख सकवा ता ने तो आम के यही गोट विचार कर तो रहा है कि ये आम चो विश्व पर्यावरण दिवस ने कि आम आगर ले आगर रुख खुट के लगाऊं रुख रुख राई के लगाऊं और संगे संगे लहरा पानी के बोले बचाऊं और ये जो ना पेगड़ झोरी मन के खिने काम ने आम चो जीवन आने खिने कम करूं ते भी कम बोले होए दिने दक ये तो रेली गोट मन संगे संगे और गोट आसी ये गोट मन के बोले आम दादी दी मन लगे अमराव
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: GST काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से घटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो ढोया दक एक गोट मन तो होली ने
1: होली
0: हाँ मतलब दक गोटोक आम चो दादी दी मन का जे पीला मन का जे गोटोक कहनी ये तब बोले आसे
1: हाँ
0: तो अले कहनी के सुनाओ एक कहनी के सांग सोच श्री जयदेव विश्वकर्मा
1: हाले एक बोल सुनो।
6: गोटोक गांव ने गोटोक गांव बेचू रहे गांव बेचू रहे उन गांव ने मलू मन और मलहिन मन और तीर्थ रहत मलू मलहिन मन खूब बेचू आत कोनी कोनी खेपू ने लावंदे लावंदे मन खूब भरते रहुआत गोटक लावंदे गोटक लावंदो और उन घरे गोटक पोछड़ बेचू रहे पोछड़ और पोछड़न बेचू रहोत हुन लावंदे लावंदे घरे कोई कहीं बेचू रहे लावंदो और लावंदे पोछड़ पोछड़न डोकरा होती हेरला पोछड़ पोछड़न फिर बाद में कटरला कटर तो के गोटक लावंदो और गोटक लावंदे बेचू रहे उन लावंदे लावंदे लावंदो और गोट लावंदे लावंदे लावंदे घर गोटक पीड़ारू और गोटक फड़े आन बेचू रहे हूँ पीड़ारू बाय पीड़ारू है फड़े आन बोले एकदम बाय बाय फड़े आन है लाव पोचोड़ कटरून दे तो के पोचड़न कटर तो के हूँ लावंदो और उन लावंदे आज एक ना जगना जगरा हो बाय फड़े आन बाय पीड़ारू भाई भाई रहत उन पीढ़ेरु आवरण फड़ियान खूबे ओलगते रहला खूब ओलगते रहला तेवे ओलगते ओलगते लाउदेन बुझा तीरली आर लाउद कावड़े से तू पीढ़ेरु आर फड़ियान कावड़े से लाउदेन ई ओलगा बाबू ई ओलगा ओलग तोर नुआ कडर तो लोग कडरुआत हन तो पचड़ होले आम्मी बोले कडर रुक सकू बोलून आवड़न दिल आवड़ तो के तेबे लाउदेन आवड़ली आवड़ तो के पीढ़ेरु मन बाय फड़ियान फिर उतरन ई ओलगला ओलग तुवार ओलग तेर ओलगते ओलग तो बेरा फिर लाउदेन समझा तीरली समझा तीर तो के लाउदो आर लाउदेन बोले हनुमान बल समझ तीरला कोटक गाँव ने फिर गोटक बाई पीढ़ेरु बेचू रहे हुन पीढ़ेरु खेपू ने किले नहीं चेर को नहीं टिकलू नहीं कहीं नहीं तेबे हुन लाउदो खेपू ने कोनी ई बेचू रहला तेबे हुन खेपू ने हुन लाउदो और हुन लाउदेन हनुमान उरखला उरख तो के हुन बाई फड़ियान हुन खेपू ने उरख ली उरख तो के हुन बाई फड़ियान के अवड़ लो कि मैं तुमके किलाए चर को एतुन दे दे तेबे मचो काज बेचूरा अवड़ लो तेबे हुता उन खेपू ने बेचू रहे लाउदो खेपू ने तेबे हुन फड़ियान हुता बेचली और हुता भरू रहे ए बाटे लाउदो और लाउदेन ए बाटे अस्तिर ने कमातेर सत नुनंग सत हुन घरे उगनू काज उगनू नुनंग तलोगात उगनू चिया खेरा उगनू एड़ू उगनू जड़गी उगनू हुन खेपू ने कोनी कोनी खेपू ने कोनी कोनी खेपू ने जड़गी मन बल नुनंग सत नुनंग तलोग नुनंग सत उगनू और खेरा नुनंग तलोग बल नुनंग सत हुन संगे आसन लाउंदे लाउंदे ना कि खेरा उगनू ही होले हुन घरे किलाई ई नुन गत किलाई नुनंग तर नावनी है और कोनी कोनी मलू खेपू ने आसन आमू मन नुनंग सत आमू मन उन पर नजक आमू कोई बाय आमू और काय काय आमू लोग नुनंग तो जासत पांडरो बल पांडरो बले कोनी कोनी हाट पटन उरक ले होता नुनंग सत पांडरो के तबे उन्हें लाउन तो घर बल पांडरो और आमू किले चर को बनते रहे हुन घरे हुन फड़ेन उगनू नुनंग तो भी तीनों है लेकिन हुन फड़ेन के उन पीड़ेरु घरे नुनगुक पड़ ले तबे नुनंग तो काजी तबे नुनंग तो काजी उगनू इर्तुक पड़ली हुन बल खेरा उगनू चर को उगनू एड़ उगनू हुन उगनू मन नुनगुक ले पड़ले तबे लाउन देन हुन अवड़ते रहे मौके सादा चर को नुनगुआ तबे लाउन तो अवड़ लो मचो काज बेचुरु आज जाले हम के उगनू चर को नुनगु पड़ू है उगनू चर को नुनगुन भाती बेचुरा तोरा अवड़ला एक दिन हुन मन कर पाकलू पाकलू ओखनाला पाकलू ओखन तो के उन पाकलू तेंग तीर लो कि उगनू अदरुक लागू है कोई ओटक एड़ू के बजरा तोराए एड़ू के बजरा उन बाती उनके नुनंग तोराए तब उन पाकलू के चाह उन बाती होता फिर उतर नुनंग तीर तोराए नुनंग तीर ले काय के उन भोग तीर हुए और उन बाती अवड़ लो पाकलू तेबे उन खेपू ने उन लाओ दो मन उरखला तेबे होता उरकते रहुए होता नुनंग तो काजे उन पाकलू के ओखनाला पाकलू ओखना तो के नुनंग तरलो लाओ दो तेबे उन पाकलू ओखना तो पाकलू फिर गोटक खेरा गोट खेरा लाग तीर हुए और गोटक एड़ू अंदरू कौड़ू है और गोटक बदक अंदरुक लागू है औड़न भाती पाकलू अवड़ लो और फूली भीती आमू औड़न भाती अवड़ लो तेबे उन खेपुच लोग उरखला आमू काजे खेराय काजे उगनू का खेराय काजे एड़ू काजे उरखला एड़ू के अंजरा उन भाती उन पर बजरोग मुरियाला बजरा तो के लाउंद और लाउंद तो नुनगो को मुरिया सत नुनगो को मुरिया सत कितरो को नुनगत कितरो को नुनगत नुनगोला इतरो ये तो निर्तु नुनंग सत किला आमु के नुनंग सत हूँ नुनंग ते नुनंग ते नुनंग ते आमु के हूँ लाउंद तो मात तीर लो मात तीर तो के उतरे ने हूँ तो पाछ खतर लो लाउंदेन चला का लाउंदेन किला के यार चर को उगनू के नुनगो को ले मुरिया ली लाउंद काय कर तीर लो लाउंद तो नुन खंदर लो खंदर तो के उतरे आमुक नुन गुड़ लय मुरियाल आमू नुनंग तो के उतरीन फिर बेचुर बिहान पाव तीरली फिर पाकलू ओखनाला पाकलू ओखना तो के होता फिर उन पाकलू फिर तेंग तीरली इतरो इतरो आमू लागू है इतरो एड़ू लागू है इतरो एड़ू लागू है उतरे गोटक खेराई लागू है और उन बाती

0: ओढ़लो। तेबे हुनी खेराइके और हुनके अंदर ते गेलो। तेबे हुन बाय फड़ियान बड़ी बड़े होती इरले। तेबे हुन मन घरे पिड़ारू और फड़ियान जन्म होती इरला। तेब हुन खेपुने बाय फड़ियान बाय पिलाड़ू जन्म ही होती इर रहत। हुन मन घरे गिड़ी संगे इरत रहोत और मठियारी कुलेरा कुलेरा के इरतोत गिड़ी संगे इरतोत कुलेरा खैरो लगाती इरत। लगाती इरतो के चुरचुरी लगाती इरतो के चरको होती इरले। चरको होती इरतो के हुन लाओं दो खेपुने और हुन लाओं दो कर ओ रखला। तेबे हुन राज ने गोटोक और गोटोक गोटोक बाय फिड़न गोटोक बाय फड़ियान बेचू रहे। हुन फड़ियान चो कोनी ई बेचू रहो लाऊं दो नहीं लाऊं दे नहीं। तेबे हुन खेपू ने बोले हुसने होती इरला और हुने घर बोले पाखलू ओकनाला। ते पाखलू ओकना तो के पाखलू तेंगुक मुरियाली। पाखलू तेंग तो के तेबे तुम चो घरे हुसने बात तीरुआत बाय फड़ियान बाय पिलाड़ू बात तीरुआत औड़न बाती ओढ़ लो। तेबे होता ले ई बात तीरलास बल्ले पाखलू की मनाती इरलास बल्ले पाखलू ही मनाते से ले तुम जो कर फड़ियान पिड़ारू कडरुआत कडरुआत आवड़ तो के तेबे आवड़ला आवड़ तो के लाव द्वार लाव देन पाचे मानती इरला पाखलू के तेबे हुन मनगर पिड़ारू और उसने चुनी चुनी खेराय खेराय उगनू उगनू खेसाय चेर को हो मुरियाले। तेबे हुन घर इतरो लाव दो हरी खोती इरलो कि हुता ले अच्छा नजक बेचे और राम चो घरे चुनी बले बाय नहीं नजक नजक बेचे।
1: हाँ तो जो है देखना ये काय रसिया पच्चोड़ कहनीश नाव रे
2: हाँ।
1: और एक सांग तेरो जय देव विश्वकर्मा
2: हाँ।
1: कहनी रलेनी आम के बोल खनी के कहनी नाल गीत रलेनी सुन लेने आम के बोल खनी खरीक लागे इसने
2: हाँ।
1: और कई कसन कहनी नाल गीत नाल कविता ने ज्ञान ध्यान चो गोड़ बोले रहे से
2: हाँ।
1: कि आम ताले काय अच्छा सिकुक मीरे से उनके सिक्तुर बोले
2: हाँ।
1: संगे संगे और बोले गोटा से अले गोट के बोले सुनाओ
2: सुनो

0: हाँ तो रोया भाई दा के गीत के गाऊ रोत शिवराम नाग अर हुन मंचो संगवारी मन अर तक गीत गोविंद सुन लेने बल नहीं देह पायन बोल मीर लो असन लागू
1: लागे हाँ
0: आजकल तो आमचो गांव कर जावे दी मन बेड़ा बूता ने खूब भूरल लास भी
1: हाँ
0: ने
1: हाँ
0: और कोनी कोनी तक के जोंदरा कमानी कर रोत नहीं जेड बेरा के हुन भी ने बल मिंटन बल भूरल लास
1: भूरल लास तो थी हाँ
0: और कोनी कोनी तो आप लोग पलहा रोपा ये सब तैयारी करते भूरलल्ला से
1: हाँ
0: और दिन भर थकुन बाती सांझ की घर ही बात नहीं
1: हाँ
0: तो असन बेरा असनी गीत आए बोले नहीं थाक लो देह ने बोल मिरलो असन लागे से
1: हाँ
0: तो दक असनी ची गोटो गीत आऊ रहा से और ये गीत के गाउन रोत मधुराम और हुन मंचो संगवारी मन तो ये गीत के बोले आले सुना देव
1: आले सुनो जय।

0: हाँ तो रोया भाई
1: हाँ।
0: देखना ये गीत के गाउन रोत मधुरा मारून मंचो संगवारी मन ने
1: हाँ।
0: गीत को भी सुन लेने हम चो जो मन के बोले खेने हरिक लागे से
1: हाँ।
0: और मन हरिक रह लेने तो सफाई काम बुता बोले अच्छा हो
1: हाँ।
0: अब कहीं चिंता फिकर ये सब करते रह ले नहीं एकदम लागे ने शरीर
1: हाँ।
0: देह पाए बोले थकलो असन
1: थकलो
0: और
1: से लागे
0: उसने
1: से
0: मन के भाव तो असन गीत गोविंद कहीं गोट कहीं कहानी कहीं कविता सुन लेने मन बोले कि हाँ अच्छा लागे ने जैसन गाँव बटे आम रहूँ से ने अरे तू फिकर चिंता नहीं कर बाबू मैं तो आसे इतनी बोलूं दिले कितलो अच्छा लागे
1: अच्छा
0: से
1: लागे से
0: नहीं उसने हम चो ये गीत गोविंद कहानी कविता मन बोले रहे से नहीं
1: हाँ
0: मतलब तक हमें कहीं बोले काम बूता करूँ हम समयानिज करूँ हमने
1: समय आने ची
0: समयानी
1: हाँ
0: कर लेने हम चो काम बूता बोले निको रहे से और काम बोले अच्छा रहे
1: अच्छा
0: से
1: वैसे
0: उस
1: हाँ
0: नीचे आमी बोले समय होले नहीं उसे समय होले जाऊं से
1: जाऊँ
0: नहीं
1: से हाँ
0: बाकी समय आम चो समय होले ना मैं आम चो काम करूं बाती आम गोट बात गोठियान बाती जाऊं से फिर
1: जाऊँ
0: दूसर
1: से
0: काम होए से
1: हाँ
0: तो बस नीचे जब आम चो जातो समय बोले होए से तो वाले मुड़रागढ़ रख सकलू और
1: चाले
0: विदा मांगू तो जातो पूरे आम चो गाँव कार्यक्रम सुन तो सप्पाए गाँव करी दादा दीदी भाई बहन सियान सज्जन मन के मैं चाल की
1: और मैं डोया
0: आमी दोनों करूँ से
1: जुहार।
0: जुहार।

अभी ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे है। पेश है कार्यक्रम घलर। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दैमती नाग और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

ನವರಾತ್ರಿ ಜೋ ಭರತ ಕರಲು ನಾವು ಕನ್ಯಾ.

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घलर। इस कार्यक्रम में आपने सुना हल्बी गीत। कलाकार थे दैमती नाग और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जगदलपुर को। रात के 8:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पिलामन काजे गोट। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में। प्रस्तुति है भरत कुमार गंगादित्य की।

0: মতো পাটকে দেখা ওটা কায় ওটা হো ভারত মায় সবির পিলামন ওটা কায় ওটা হো ভারত মায় সবির পিলামন
1: पिलामनचो गोट कार्यक्रम सुनतो सपाय नानी बड़े पिलामन के मचो बाटले कुबे मया आउर लाड दका पिलामन आमी रोजे दीना महापुरुष मंचो जीवना के सांगू से उसनी आजी बले मैं तुमचो काजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चो जीवनी के सुनाए से हाले सुना कलाम साहब चो पहल जीवना एचो जन्म 15 अक्टूबर 1931 के धनुषकोड़ी गांव रामेश्वर तमिलनाडु ने गोटोक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसारी परिवार ने जन्म ओली। एचो पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आए और एचो बाबा चो नाम जैनुलाब्दीन आए। एचो बाबा ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही पैसा बिता रलो। एचो बाबा मछली दर तो मछुआरा मन के डोंगा चो किराया दरते रहोत। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार ने रहते रहोत और परिवार ने कुबे लोग रहते रहोत। ए मन ताने सपाई लोग मिसुन रहते रहोत। एची संगे ए मन पांच भाई बहन बले रहते रहोत और घर ने तीन परिवार और बले रहते रहोत। अब्दुल कलाम के आपलो जीवना ने एचो बाबा कुबे नंगा सोचते रहोत। बले ही पढ़े लिखे नीरला मानतर उन मंचो मेहनत दिमाग और दिलो संस्कार अब्दुल कलाम के कुबे नंगत काम ही ली। 5 साल चो उम्र बेरा रामेश्वर पंचायत चो प्राथमिक स्कूल ने उनमनचो दाखिला करला और एची संगे उनमनचो शिक्षक यादुराई सोलोमन उनके बलून रला कि जीवन ने सफलता और अनुकूल परिणाम आंतो काजे आपलो इच्छा आत्मविश्वास अपेक्षा ये तीन शक्ति के भली बाती समझून काम करतो राय। 5वीं कक्षा ने पढ़तो समया ने उनचो गुरुजी उनके चढ़ई चो उड़तो बीती तरीका चो बारे ने जानकारी दिलो लेकिन पढ़तो पीला मन के समझ नहीं इली और उन मन के समुद्र रेटे नीलो और जहाँ उड़तो बीती चढ़ई मन के दकालो और समझालो यही चढ़ई के दकुन कलाम साहब ने तय कर लो कि मके बले भविष्य ने है जाज विज्ञान ने ही जातो रहा। कलाम साहब के गणित चो गुरुजी बियाने ट्यूशन पढ़ाते रहोत। उन्हीं काजे उन 4 बजे उठून गणित चो ट्यूशन पढ़ुक जाते रहोत। अब्दुल कलाम ने आपलो पहल शिक्षा अध्ययन करतो काजे पेपर बले बाटतो काम करते रहोत। कलाम साहब ने 1950 के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अंतरिक्ष विज्ञान ने स्नातक चो उपाधि दरला। स्नातक ओलो पाठकुती उनमन और क्राफ्ट परियोजना चो काम बले करते रला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विकास संस्था ने दाखिला दरला। 1962 ने ए मन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इला और जहाँ उनमन सफलतापूर्वक कुबे उपग्रह मन के प्रक्षेपण परियोजना के आपलो भूमिका निभाला और जुलाई 1982 ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष ने प्रक्षेपित करला। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के आमी मिसाइल मैन और जनता राष्ट्रपति चो नाव ले बले जानते रहोत। भारतीय गणतंत्र चो 11वां नंबर चो चुनलो राष्ट्रपति रला और एमन भारत चो पूर्व राष्ट्रपति जान लो पहचान लो वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर नाव ले विख्यात रला और सिकलो जीवना ने चाहे कसनी भले परिस्थिति क्यों ना एओ, जब तक आप लो सपना के पूरा कर तो काजे पूरा जिम्मेदारी धरते रहो और पूरा करोन ई चांडते रहो। अब्दुल कलाम चो विचार आजी भले आमचो युवा पीढ़ी मन काजे नंगत बाढ़ती काजे प्रेरित ऐसे और ए मन मुख्य रूप ले गोटोक वैज्ञानिक और विज्ञान चो व्यवस्थापक वले रला और 40 वर्ष तक रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO संगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बले संभालला। एची संगे भारत चो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल चो

विकास के बाढ़ती करतो काजे बले शामिल रला और एची संगे बैलास्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की जो उन्नति बाढ़ती काम काजे बले आगे रला। सन 1974 ने भारत पहल मूल परमाणु परीक्षण करलो पाठकुती। दूसर आर 1998 ने भारत पोखरण परमाणु परीक्षण करतो काजे गोटोक निर्णायक संगठनात्मक तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाला। कलाम साहब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोनों चो समर्थक संगे सन 2002 ने भारत चो राष्ट्रपति बनला। 5 साल चो सेवा करलो पाटकुती उन्मन शिक्षा लेखन संगे सार्वजनिक सेवा के आपलो नागरिक जीवन ने हानला और एची संगे भारत रत्न चो सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगे कई प्रतिष्ठित सम्मान बले दरला। कलाम साहब 1972 ने ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ले जुड़ला। अब्दुल कलाम ने परियोजना महानिदेशक चो रूप ने भारत काजे पहली स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपात्र बनातो चोसरे हासिल करला। 1980 ने उन्मन रोहिणी उपग्रह के पृथ्वी चो कक्षा लगे स्थापित करला। एची संगे भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब चो सदस्य बनली। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य वेदी नियंत्रित प्रक्षेपात्र चो डिजाइन करला। कलाम जुलाई 1992 ले दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री चो विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध विकास विभाग चो सचिव रला। उनमन रणनीतिक प्रक्षेपात्र प्रणाली चो उपयोग आग्नेय शास्त्र चो रूप ने काम करला और पोखरण ने दूसर आर परमाणु परीक्षण परमाणु ऊर्जा संगे मिलुन बाती करला। कलाम ने भारत चो विकास स्तर 2020 तक विज्ञान चो क्षेत्र ने अत्याधुनिक करतो काजे नंगत कुबे सोच प्रदान करला। ये भारत सरकार चो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बले रला। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी ने बेहद अनुशासन प्रिय रला और ए मन शाकाहारी रहोत। एची संगे ए मन आपलो जीवना ने विंग्स आप पायर भारत चो युवा पीढ़ी मन के मार्गदर्शक करतो काजे लिखला। ए मन चो दूसर पुस्तक गाइडिंग सोशल डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफलाइन आत्मिक विचार के गौरवान्वित करला। मई 2012 ने कलाम ने भारत चो युवा मन काजे गोटो कार्यक्रम संगाला। भ्रष्टाचार के अरातो काजे गोटो केंद्रीय विषय के दरुन मैं आंदोलन काजे काय देख सके चो शुभारंभ करला और ए मन तमिल कविता लिखला। एची संगे वेनी नाव चो दक्षिण भारत स्ट्रिंग वाद्य यंत्र के बजातो चो आनंद वले दरला। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते रहोत और हिंदू संस्कृति ने भरोसा करते रहोत। कलाम साहब 27 जुलाई 2015 चो शाम के भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग ने रतोर योग्य ग्रहक ने गोटोक व्याख्यान देते रहोत। तेबे उनके उदलीदाय दिल चो दौरा ओली और उन मन बेहोश ओन गसरला। ये समिया लगभग 6:30 ओन रहे। ये मन चो आलात गंभीर रहे। आलात के दकुन बेतानी अस्पताल ने ICU ने नीला और 2 घंटा पाटकुती उनचो मृत्यु बले ओली। कलाम आपलो व्यक्तिगत जीवना ने पूरा अनुशासन चो पालन करतो आदमी रला। कलाम साहब कुरान और भगवत गीता दोनों चो अध्ययन करते रहोत। राजनीतिक स्तर ने कलाम चो चाहत रली कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने भारत चो भूमिका विस्तार हो और भारत ज्यादा ले ज्यादा नंगत भारती चो उन्नति करो। ये मन चो सोच रहे और भारत के महाशक्ति बना

तो दिशा ने कदम बढ़ाते दखुक चाहते रहोत। पिलामन और युवा पीढ़ी काजे कलाम साहब अत्यंतिक लोकप्रिय रला और एची संगे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संगे प्रौद्योगिक संस्था चो कुलपति बले रला। कलाम के 79वां जन्मदिन के संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस चो रूप ने मनाला। एची संगे और बले लगभग 40 विश्वविद्यालय ने मानद डायरेक्टर चो उपाधि बले दिला। भारत सरकार 1981 ने पद्म भूषण और 1990 ने पद्म विभूषण संगे सम्मानित बले दिला। एची संगे इसरो और DRDO ने काम करतो समय ने वैज्ञानिक उपलब्धि काजे भारत सरकार ने वैज्ञानिक सलाहकार चो रूप ने काम बले दिला। 1997 ने कलाम साहब के भारत चो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न बले दिला और उन मन के वैज्ञानिक अनुसंधान संगे भारत ने तकनीकी चो विकास काजे अभूतपूर्व योगदान दिला। आजी मैं इतली गोट के सांगे से आले मके विदा दिया वे।

अभी कार्यक्रम पिलामन काजे गोट का प्रसारण किया गया, जिसमें आपने सुना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी जानकारी हलवी बोली में। प्रस्तुति थी चरण सिंह बघेल की। मीडियम वेव एफ और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस समय रात के 8:45 होने को है। हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।

0: आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी

गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
5: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन

0: रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. He said the current global energy

0: मर्दान दान सड़ी विथिन
1: खड़
0: के बोल बोल बोल बात नहीं तार हम पेंटिंग करूँगा तार बोले डिमांड है
1: अच्छा सुनो साहो तो बोले ने खड़ के कई मूर्ति बनाने बाद पेंटिंग करवा कैसे
0: नहीं कर कैसे करवा हमें जो बाचो है नहीं ये अच्छा भी आती बोले बाच खेला हुआ है हम के
1: अच्छा अच्छा लंबा लंबा
0: लंबा लंबा लंबा लंबा बोले नहीं तरतना
1: तरतना
0: बोल बुक नहीं तर जटक मोटा भी तेरा सी नहीं तरतान ला तर ऊपर भी जो जिली टाइप निकल सी आटा जसन अच्छा रहा तो कच्चा चमकू है
1: अच्छा
0: तो आता के हमी अच्छा छाटी करी ताकि हम पेंटिंग करूं तार मतलब एक तरह चित्र दे बार आकार दे बार
1: अच्छा
0: मूर्ति न हुआ असनी ये कांस वाला हमारे पेपर वाला पेपर तान ले फिर हम के ताकि एक टन कॉटन बीती कपड़ा
1: अच्छा
0: और काला कलर आए तने हमें ताकि ये माती बनाए बार है
1: अच्छा
0: और ताने टाक बनाए कर फ्रेम वगैरह कर ले बहुत अच्छा दुख है
1: अच्छा
0: और ये अधिकतर हमें लोक आर्ट लोक कला ने अधिक करवा लोक कला के हमें बस्तर लोक कला का जो
1: अच्छा
0: आता रूप रहा है ये मतलब ये पैरा आर्ट भी थी
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा ये के बोले पैरा आर्ट चो नाम ने जानता
0: हाँ पैरा आर्ट नाम ने जान हुआ थे बोले बहुत ज्यादा फेमस वाला आज पैरा आर्ट बोल करी सरगुजा क्षेत्र में बोले सबसे ज्यादा प्रचलित है बटावरी
1: अच्छा
0: सरगुजा रायपुर
1: हाँ
0: और ये भी अब तो हमारी बस्तर ने स्टार्ट कर लुआ कर ला तो और अम्बल कर लुआ भी
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो और जैसन की बोलते कि कांगेर घाटी उद्यान ने बोलते छो काम चले से बोलते ये तक काय काम चले से ना
0: आते ही वाले पेंटिंग भी थी है ये भी पर्यटन लोग ये भी होला नहीं कुटुंब सरोगरा ने तो हमें यहाँ बटे एक आसन कहीं कहीं मतलब आर्ट वर्क कर ले लोक मन के आकर्षित करवा का जे
1: अच्छा
0: आई हिसाब ने करवा जे और ये भी कहीं कहीं छोटे मोटे ऑफिस ऑफिस तान बोले कांगर वेलियर
1: अच्छा
0: और आते मतलब ये हमारी पहाड़ी मैना जसन होला और वन्य जीव जब तक बोला जाता हमारी कांगर वेलियर दका देवत नहीं आतर बारे ने और जसन ने भी अमी कांगर घाटी जावा तो जाओ तो जाते हैं बटे रोड किनारे बंदर मन दखा दे हम तक खाना वाना देवा तो अतर लग कर आया बंदर मन अमर ऊपर आहरित होला तो ताकि एक टन अमर जिम्मेदारी बनवाए कि आई मन के खाना वाना ना दे रहा तो अपना वन्य प्राणी जो नात नहीं जंगल ऊपर अपना अपना खासो खाना पीना खुद कर सके तो आता रहे सबके जागरूक करवा का जी बोर्ड वगैरह ने अच्छा खासा पेंटिंग बनाई करी ताकि मना मतलब बंदर मूर्ति रला मतलब पेंटिंग रह सी आई अपने आप मना कर सके मैं अपने अपने मतलब अपना आत्मनिर्भर हो सके बोले करे हम के ना दिया खाना पीना अब का आम दिवा नहीं तो आई मन ज्यादा अग्रेसिव है बात मतलब ये अमर ऊपर डिपेंड हुई बात खाए बगा जी
1: हाँ।
0: अब तुम सकले सकले बोल गिलास बोल दे सवेरे सवेरे रोड ट्रक लग रुआत की नहीं
1: हाँ।
0: अस नहीं है तो वही मन के नहीं ना दे बगा जी सबके हमारे पर्यटन जब तक बोल बाहर लोग आवाज आए सबके अस नहीं मतलब जब तक बोले पशु पक्षी आ जाते नहीं तो स्टिकर बारे में संरचित कर बगा जी सब बोर्ड वगैरह का जी सब का जो कर बारे हमारा इतिहास है
1: अच्छा बोले पूरा बनान बाती गठन सूचना आसन
0: और सूचना बोल सूचना जो बोल बारे आए सबके करवा रहा थी आए का जो लोग बल जाना तो और लोग बोले दखो तो और लोग बोले कर मतलब गलत काम ना करत बोलला
1: मा हुन तो अच्छा है बोले ने ये सब चीज बोले ने बोले कौन विभाग कौन चो मार्गदर्शन बाटले वैसे
0: ये हमारे डी ऑफिसर मार्गदर्शन बाटले
1: अच्छा
0: ये अपना वन विभाग कांगरी वेली
1: अच्छा
0: आए बाटले तार द्वारा ये बोला छे तो करवा छे
1: अच्छा तो ये तो बहुत अच्छा काम है ऐसे कसन बल्ले का है कि वन्य जो जीव है बल्ले आप लोग खुद निर्भर रहे ने आप लोग खुद जीव साय सको और जो कृत्रिम खाना बनाना दिले ने
0: बीमार से मार बोलो
1: खिलाई सको है कि नहीं जितलो हम लोग प्राकृतिक खानदान ने रह दे तो उतला उनमें स्वस्थ रोक सक दे
0: बिल्कुल
1: है कि नहीं तो ये चोले गुजराल और नवा काम का चले से
0: नवा काम में भी क्या सो तई तो ये हमारे कांगर बिल्ली भी चल सी अजय तार बाद ने मतलब इंजीनियरिंग भी काम तो मैं पहले संगरी तम के करूँ बोले करी ये भी तार बोले हने कंस्ट्रक्शन भी मन कुन कुन लगा चल सी अजय तो वहाँ अच्छा। काम तो मर अलग भी थी बोल हमारा कला क्षेत्र भी तीन ये सब काम है
1: अच्छा आओ। तो ये चुकाज कहीं ग्रुप असन बना ला सास होती तुम्हें
0: हाँ मर ग्रुप आचे मतलब हमें सब असन है कि कहाँ सो मर ऊपरे मतलब मैं मेन बॉस है बोल लामा असन हुआ है हम सब आर्टिस्ट हाँ तो आर्टिस्ट बोले सब अपना अपना बॉस बोल लामा अपना अपना साथी है तो हमें साथ मिलकर सब करो वहाँ
1: अच्छा
0: और हमारे ऑफिस बोल रहे जगदलपुर ने धर्मपुरा ने तो वहाँ ते लिया और हमें एक तो मतलब जो पेंटिंग वेंटिंग सीखवा बोल रहे मन के सिखाऊ बोले
1: अच्छा
0: बोले
1: अच्छा सीखा तो बोल काम है दक गुजराल बघेल तो बोले ने तुके पुरस्कार बोले मिरली ससन सुनो से
0: हाँ
1: बोले ने कहा मिरली काय काज मिरली एक बोल सामने
0: ये हमारे बीजापुर इंदिरावती टाइगर रिजर्व बाटले हुई रहा एक टन बाघ दिवस दिने
1: अच्छा

0: जुलाई के ए प्रोग्राम रला बोल
1: हाँ
0: तो पेंटिंग बनाई कर जमा कर रहे हैं, तो वहाँ के एनटीसी और ये अमर का जिम कार्बेट उत्तराखंड मतलब ये का जिम कार्बेट ने जो नोएला नहीं अति राष्ट्रीय उद्यान जो नाचे
1: अच्छा
0: वहाँ तेले सभी मतलब ना ये आयोजित रला, तो वहाँ देश भर ने पहला स्थान ये मर पेंटिंग के मिलला।
1: अच्छा
0: और ये मर पेंटिंग जन रला मर विषय रला अपना आदिवासी ट्राइबल कैटेगरी भी है,
1: अच्छा
0: तो इति अमर बाघ संरक्षण बाघ बचावत और जीव जंतु बचावर और अमर बाघ संगे अमर संस्कृति का है आई बार अंदर से आई बार रला,
1: अच्छा
0: तो वही चीज ने ताकि फर्स्ट प्राइज मिलला।
1: हाँ
0: तार बाद ने अभी हम नवंबर ने हम के इसी मतलब एनटीसी और हमारे कला मतलब कला संकला मतलब संकला सॉरी संकला फाउंडेशन बाटले हम कहीं बाटे जो दिल्ली आग दे रहा है, तो दिल्ली ने हमी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी संग बोले भेंट मुलाकात होली हो,
1: अच्छा
0: ताकि सामने मतलब पेंटिंग के बारे में बोला बातचीत होला और एक अपॉर्चुनिटी बोला हम बोला मैं एक क्या बोलवात एक इंग्लिश
1: गोटो का अवसर मेरे
0: हाँ
1: लिए
0: गोटे खावसर
1: हाँ
0: गोटे खावसर बोले हम के मिलला कि हम के मिल बार मतलब एक हम के खूबे अच्छा लगला।
1: अच्छा लग
0: हाँ
1: रहा
0: ये बार ले मतलब एक छोटी जगह ले हम गलो और मिल लो बल्ला मा बोले आजकल ये आर्टिस्ट लोग के बोले कहाँ तक ना बोले बल्ला मा नहीं आए सब ने, तो हम के आई भवन ने बोले पूरा राष्ट्रपति भवन ने बोले गलू वाती बोले दिखाला सब चीज दिखाला
1: अच्छा
0: हमारे आदिवासी जस जतक बोले हमारे रीति रिवाज बोले आचे नहीं आती पूरा पेंटिंग बोले आचे अंदर ने
1: अच्छा
0: वहाँ सब बोल दख बार मौका मिलला।
1: हाँ
0: तो आई आती बोले हमारे प्रदर्शनी रला
1: अच्छा
0: ये हमारे जतक बोले पेंटिंग बनाए रूक नहीं
1: हाँ हाँ
0: ये सब प्रदर्शनी अति बनाए रला,
1: अच्छा
0: तो वहाँ तरी सब ने हम के 5 दिन रला तो 5 दिन पूरा चीजें सरकार बांट ले रहे।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ दख जसन की तुई जो प्रथम पुरस्कार ही बोलली
0: हाँ
1: बाघ चु जन संरक्षण
0: हाँ
1: और आदिवासी चु जीवन बोले काय काय चीज उता बनाव रही
0: मराती कहाँ से रला ये टोटम टोटम बोले हमर गोत्र बीतीन
1: गोत्र
0: हाँ, तो गोत्र हिसाब ने बोले हमर संस्कृति ने जसन की पहले जमाने ने बुलवात की नहीं सो हमारे पूर्वज लोग ये तीन कैटेगरी ने हमके बात बाट लाए बोल लामा बोले एक तो मतलब ज्यादा दोहन है जैसे कि आदि हमारे लोग मन का है कि अगर कोई जानवर के मारू हुआ तो जहाँ से जानवर के मारे कोई पेड़ पौधा खड़ हुआ तो पेड़ पौधा काटे, तो वहाँ तरी साहब ने कहा ये हमारा प्राकृतिक संतुलन बोले है कहाँ से हो तो घट रहा बोल रहा जानवर बोले कम मत रहा
1: कम होता
0: तो वहाँ तरह का एक टोटम जसन की बोल रहा है गोत्र भी तीन
1: बोस
0: सिस्टम मान लिया
1: बोस
0: बोस
1: बोलो
0: बोस बोलवा जसन की नहीं
1: हाँ
0: बोस बोलवा तो वहीं भी तीन सिस्टम मान लिया बोलवा मतलब सुन मैं बोले तो एकदम कन्फर्म ना जानी मात्र
1: हाँ
0: सुन लिया बोल के रहे सांग भी अच्छी तो वहाँ तरह ऊपर मैं बनाए रहे पेंटिंग के,
1: अच्छा
0: तो वहीं पे असन है कि तीन बाघ ने बाट रहा है एक तो जानवर के बचाए बकाजे एक बोला तार बाद ने वनस्पति बचाए बकाजे पेड़ पौधा काजे और एक टन पशु पक्षी मतलब पक्षी बचाए बकाजे, तो जसन मोर जसन बोस आवा कि नहीं बाघ बसने आवा तो बाघ बसने मर बाघ के बचावा गोटो बाटे गोटो बड़ बरगद गोटो पेड़ के बचावा बोलवा और गोटो हमारे बाज के क्या बोला बाज के चचा नसन बोलवा कि नहीं तक बचाए बाटा आई तीनों के हिसाब ने माती दर्शा रहे।
1: अच्छा
0: और तार बाद ने हमारे कहाँ सो ये टाइगर टाइगर बॉय बोल के चंद्रू चंद्रू मंडावी
1: चंद्रू
0: तार अति बोले तार गोटे झलक दिखाए रही
1: अच्छा
0: कसन बोल कतकी बोले खतरनाक जानवर कसन बोल होत नहीं
1: हाँ
0: मात्र का है कि ताकि प्यार ले हमें रखबू बोल रहे कहीं ना करे था हमको बोले हमार ऊपर बोला है मन्नत की प्यार करो आई चीज की मैं दर्श मतलब दिखाई रही
1: अच्छा
0: और हमारे जतक बोले हमारी संस्कृति है जसन ये हमारे पूजा पाठ ले दरी करी ये सब के अति दिखाए बारे में पेंटिंग डरला।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ तो बोले ने ये कितलो तुझो बोले ने मंचो सोच रोली बोले
0: हाँ हाँ सोच
1: है कि
0: रोली
1: नहीं
0: हाँ
1: बोले ने कसन प्रकृति के आम बचाव खिला सकूं और
0: हाँ
1: आम चो जोन पुरका चो लोग मन
0: हाँ
1: उन मंचो बोले कितलो असन विचार रोली
0: विचार रहे
1: है
0: हाँ
1: कि नहीं
0: हाँ हाँ
1: असन आमी बस बना लू बोले ने
0: हाँ
1: कहा कि आम चो रान बन पशु
0: हाँ
1: पक्षी
0: हाँ
1: चढ़ई चिड़ी बोले बाचुक लाए
0: हाँ
1: सक
0: हाँ
1: दे
0: बातचुक ले सके बोल
1: है
0: के
1: कि नहीं
0: हाँ
1: ये जोन परंपरा है कि बोले कहा है कि बचातर खूब जरूरी है
0: हाँ हाँ
1: आज
0: बिल्कुल
1: तक तुचो असन पढ़े लिखे नौजवान लेखा लेके मना अगर सोचुन बाती ये
0: हाँ
1: काम के आगे बढ़ा तो बोले ने आम की वैसे
0: हाँ
1: आए कि नहीं
0: हाँ का
1: हाँ
0: है तो
1: तो बोले ने ये भी तुचो और काय सोच आसन आगे काय कर तो विचार आसे
0: ये
1: जान
0: भी ये सोच आ मतलब हमारे बस्तर ने हमारे संस्कृति तो बहुत ज्यादा है
1: हाँ
0: बस्तर ने है नहीं और ये संस्कृति का है जसन मॉडर्न है जसन वैसे अच्छी नहीं मतलब मॉडर्न जैसन वंशी अच्छी आज तरी सब ने हमारे संस्कृति बोल धीरे धीरे खत्म वैसे अच्छी, तो मेरे ये सोच आज कि जब तक बोले हमारे पढ़ा लिखा नौजवान मनात हमारे साथी मनात तो एक ही मतलब एक सूचना मतलब एक संदेश ही है कि मर

0: कि हमारे संस्कृति के ना बोलो और दूसरा संस्कृति का ना अपनाओ,
1: हाँ
0: और अपना संस्कृति का बचाए रोल बोले का है। अगर हमारे ये मतलब एबल लोग बाहर लोग बोले हमारे संस्कृति के दबा जाए, हमारे संस्कृति के जी बखा जावा
1: हाँ
0: बाहर जैसे विदेश ले बुलावत नहीं,
1: हाँ
0: हमें ये गांव गांव बाटे बाटे एमन रुकवा धकवा ऐसे सब ने हमारे संस्कृति रला बोले का है। लोग हमारे संस्कृति तो बची बची रह सी,
1: बच्चे
0: और लोग
1: हाँ
0: बोल हमारे जान भाई बोले ये भी हमारे पहचान कहाँ हो, पहचान बोल तो नहीं है बोल हम
1: हाँ उन तो है
0: ऐठा।
1: हाँ
0: तो वतर बारे ने भी मैं कह जाता बोले पेंटिंग बने बेच के नहीं,
1: हाँ हाँ
0: और हमारे एक पेंटिंग ने बोले गोटो गाय कि आमी बस्तर ने वर्ली आर्ट बोल मतलब वर्ली आर्ट के मतलब ये वर्ली आर्ट दूसरा बट रहा है
1: हाँ
0: अमर नु है।
1: अच्छा
0: तो वर्ली आर्ट का अधिकतर बोलवात कि अमर बस्तर पेंटिंग है, आए बस्तर पेंटिंग नु है। अमर बस्तर पेंटिंग ने जैसे वर्ली आर्ट मास मतलब तार डिजाइन बोल रुआ है नहीं असली टाइप पर रुआ है, मतलब का अमर कलरफुल रुआ है
1: अच्छा
0: सब जसन आतर कलर जसन रुआ है कपड़ा कलर वाला ये
1: हाँ
0: सब हमारे कलर रुआ है
1: अच्छा
0: आटा हमारे अलग है।
1: हाँ हाँ
0: और ये अमी मतलब का अमी अपना इलवाज वर्ली आर्ट के
1: अच्छा
0: आटा का बोल मर ये सोचा कि अमर जोन एकदम प्रॉपर जोन अमर पे कहा आदिवासी मतलब आदिवासी बोला अमर जोन ये पेंटिंग है जो नाम हमारे बस्तर पेंटिंग है
1: हाँ
0: ताकि आगे बढ़े बार एक तो नाम दे बार।
1: अच्छा
0: अब जब तक हमारे पेंटिंग ना बढ़े तब तक हमारे पेंटिंग ना जाने,
1: ना जानो
0: मतलब
1: थोड़ा
0: हम दूसरा बटल पेंटिंग मन जानू पहाड़ी पेंटिंग वाला
1: हाँ
0: बंगाली पेंटिंग बोली कर जानू
1: हाँ
0: ये सब बाहर पेंटिंग मन है आए
1: हाँ
0: सबके जानू हमारे पेंटिंग कौन जान ना
1: कौन
0: जाने
1: जान हाँ
0: हाँ
1: उन तो आज जब तक आमी आम चो खुद चो चीज की कहीं उजागर नहीं करूं,
0: हाँ
1: भले लिखित ने हो
0: हाँ
1: पेंटिंग ने हो
0: हाँ
1: नाल कहीं मूर्ति कला कहीं से भले हो,
0: हाँ
1: वो आमी दुनिया के निशान लेन तब तक काहे की नहीं जानो
0: ना नहीं जाना
1: है कि नहीं।
0: आओ
1: ये चोल का है कि आम चो उन महत्व आम चो जीवन का जे काय होक ला सके
0: आओ
1: ये जसन की ये भी काम कर सांगलीस ये बस भी थी
0: आओ
1: ये बल कितलो बड़े भारी
0: आओ
1: घोटा
0: बड़े बारे घोटा
1: है
0: है
1: कि नहीं,
0: आओ
1: कितली पैसा खर्च कर ले बल का है कि बचाव के लिए नहीं
0: ना
1: जाए,
0: नहीं
1: ये आमचो रीति नहीं आसे
0: आओ
1: रसूम नहीं
0: आओ
1: आसे
0: हमारे पूर्वज लोग एक बना रहा है तब
1: बनाए
0: तक
1: रहे
0: सोची रहा है पढ़े लिखे ना रहा है मतलब तक सोची रहा है
1: सोची
0: देखन
1: रहे।
0: आओ
1: हाँ
0: असन असन कर ले असन वैसी बोल करे।
1: हाँ
0: और ये भी खूब आए तो बस तो हाथी बल खाम आएला।
1: हाँ
0: और ये भी हमारे और एक टन बोले जसन की ये आमर गोट की बस वाले भाई
1: हाँ
0: बहन भी तीन रिश्ता रू रात
1: रिश्ता
0: बोलवा
1: हुआ है
0: हाँ नहीं
1: हाँ हाँ
0: तो ये भी जमाना में बोले गोटक रला वही से मतलब गोटक कुटुम रला वही से एक
1: हाँ
0: दिन धीरे
1: हाँ
0: धीरे हम बड़े होते गलो बोला हम अलग
1: हाँ
0: अलग बढ़ते गल है
1: बढ़ते
0: असनी
1: गए
0: यही सब ने जब तक बड़े होता तक हमारे संरक्षण वैसे अच्छे बचाए
1: हाँ
0: बुआ चीज के
1: हाँ
0: आई
1: हाँ
0: चीज है।
1: उन तो आए थे
0: हाँ
1: बोले ने आम चो जो जीवना है पूरा संतुलन ने बराबर ने चले ने
0: हाँ बराबर ना चलो
1: चलो।
0: हाँ
1: तो अलना गुलजार सिंह बघेल तो इतलो अच्छा बिलन तू चो पढ़ाई लिखाई संग संगे ये गोटक दूसर हुनर
0: हाँ
1: आए ये दूसर हुनर ले तू चो जो बोले ने मान सम्मान होए से
0: हाँ
1: और बोले ने आम चो देश चो पूरा शीर्ष स्थान ने जाऊन बती तुई दखलीस ये हुनर कारण ने है
0: उनर कारण है
1: कि नहीं।
0: आओ हाँ
1: तो असनी फिर के भाई गोट बाट हुआ तो चुनती बाटती होली जाले आले जी
0: हाँ
1: काज खूब खूब जुआर।
0: हाँ जुआर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नंजर। इस कार्यक्रम में आपने सुना गुलजार सिंह बघेल से भेंट किए बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम खेल पत्रिका। इस कार्यक्रम में नैना सिंह ठाकर से भेंट करेंगे पूर्णिमा सरोज।
3: सफाई लोग के मैं मैनामती करें से जुहार। खेल पत्रिका ने तुमन मन सफाई लोग चो स्वागत आसे आरु आज ही चो दिने हम चो युवा पीढ़ी खेल ने खूबे आगे बढ़ते जाए से जित्रो आगे बढ़ते जाए से बलो ने हुनमन देश विदेश ने बले हुनमन नाम कमाए सो। तो देखा भाई बहन मन इत्रो अच्छा जोन खेल कूद हम चो देश ने बले आगे बढ़ते जाए से और सफाई गाँव गावली चो लोग मन बले था भाग धरे सो। तो असने आम चो बस्तर चो बले जो नाव आए हुन देश ने और विदेश ने बले होली से और असने ही खेल का जे हम चो लगे बस्तर चो बेटी नैना धाकड़ नाम बल्लो खन हम के असन लगे से कि हम खुबे गर्व महसूस करूँ से कि हुन आपलो शक्ति आपलो साहस ले पूरा जोन एवरेस्ट मन के हुन जीत हासिल कर ली से। तो असन शख्सियत के हम यथा खूबे खूबे स्वागत करूँ से आज ही आमचो लगे गोट बात कर तो काजे आमचो महिला शक्ति आमचो बस्तर चो बेटी छत्तीसगढ़ चो शान भारत चो शान बले हमें बलुक सकूँ हूँ आमचो संगे आसे। तो खूबे खूबे स्वागत आए नैना जी तुम जो ये खेल पत्रिका कार्यक्रम ने
4: सपाई के जोहार और धन्यवाद।
3: तो जसन तुम जो नाव धरते कन खूब साहस असन महसूस हो से ताकत इली असन लागे से तो तुमन इतरो सुंदर काम मन के केवल मूर करला
4: 2010 ले स्टार्ट होली से और 2010 ले एब तक कंटिन्यू आसे
3: अच्छा
4: लगातार यही फील्ड ने करे से
3: जसन की तुमके ये सब जसन ये साहस जो काम के तो आमी आज ही देखूं से मानतर ये जो मूर कसन तुम के मूर करुक चाहला कि कसन ये जो शुरुआत होली कि कोनी सांगला कि कहाँ ले ये जान पड़ ली क्योंकि आई कहे जे कि तुमन मन तो एकदम टाकरा गुड़ा नाव चो गाँव आया हम चो बस्तर चो होता चो आस और हूं थाने कहीं सुविधा बोले नहीं आई कि कोनी सांग दे कि नहीं सांग दे तो असन स्थिति ने तुमन कसन करुक मुरियाला
4: मैं स्कूल टाइम ले असन रहे कि खेल बीती काम ने मोचो मन खूब रुझाऊ रहे हुन खेल खेल तो काज में असन रहे बही असन खेल तो काज में असन होले कि मैं नेशनल चैंपियन रहले हुन जूडो कराटे ने और साथ में मोचो पढ़तो भी थी काम्बल आसे चेवे असन होली कि मैं देखते रहे कि मैं सातवीं पढ़ते रहे और आजू बाजू जो लोग बाग मन असन बलत मुझे आया के कि तू चो बेटी काय करे से हुन बाट काय करे से हुन बाहर जाए से काय खेले से बिन बाप चो ले की आए काई होए ले कसन होए दे असन बलू ने तो मैं असन बल ले कि ये सब कसन सोच विचारा से हम जो गाँव ने तो ये चो काज मैं अपन माँ ले बल्ले की कसन आया असन नहीं होए मुझे साथ दे मैं तो करें दे देश काज करें दे मैं असन बल्ले मुझे आया बल्ले से नहीं नहीं नहीं सब लोग बोल रहे हैं कैसे करेगी क्या करेगी असन बल्ले तो मैं बल्ले की नहीं नहीं माँ आप सपोर्ट तो करो मैं तो करूंगी असन बलून मैं ये काम के धर ले मुझे विचार रहे कि हुन आस पास जो लेकी मन के दख ले सातवीं आठवीं पढ़तो मतलब हुन मन काज खूब पढ़तो हो से जसन की डिग्री धरून भाती
3: बल्ले सातवीं आठवीं पढ़ला बल्ले खूबे
4: होली असन ने तो मैं असन बल्ले की नहीं नहीं नहीं एमन काज कुछ तो कर तो रहा है उन नानी नानी लेकी मन जो बिहा होते दखते मतलब मन एकदम टूटून जाए से नहीं उन 13-14 साल चो लेकी उन एक बच्चा चो माए हो से असन दख ले मैं की ये कंडीशन का आया है ये सब आचार विचार का आया है तो उनके मुझे मन ले मैं साथ ही पढ़ते रहे मुझे मन विचार है कि काय कर ले मैं असन करें दे कि ये मन जो विचार के दूर करुण भाती कुछ अच्छा दें दे तो मैं ये बात उन बात नहीं दखे मुझे काम ने मैं दखे और मैं असन बल्ले मुझे आया ले कि माँ आप मेरे को सपोर्ट करो है ना मेरे को सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के साथ खेलना है खेल के साथ मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि समाज की चार बेटियां ने उन आगे बढ़े दे बलून भाती मैं असन विचार कर ले तो मुझे आया काय बल्ले से हाँ ठीक है तू करके देख साथ में देते हैं साथ क्या करेगी तो मैं सत बल्ले से कि सातवीं पढ़ते रहे और घर ले एक रुपया नहीं धर ले और मुझे मन ले विचार आए से कि अब मैं कैसी भी कंडीशन में पढ़े दे और हुन पढ़ते पढ़ते मैं एक खेल विधि काम करें दे अब करुण करुण असन होली मुझे मन ने कि बाकी लेकी मन के दख ले कि नहीं नहीं एमन तो स्कूल नहीं हुए एमन चो पहले से ब्याह होए से उम्र नहीं होली से तो ये विचार मुझे मन ने खेद कर ली बेटीच मन का चिकाय असन होए से कि आगे बढ़ुक नहीं दिया तो मैं सियान सदन के पूछ ले पचार ले उनका आए बड़े विता मन काय बोले तू जो दिमाग ज्यादा चले से तू बल तो लेके आस तो ये विचार मुके मन ले ठेस पहुंचा ली उन मन के मैं कहीं जवाब नहीं दे और मुझे मन ले मैं ये ठान ले कि असन मैं करें दे कि बस्तर काज कि बस्तर चो लेकी मन काज कि आज बस्तर चो जो भी समाज युवा पीढ़ी आसे हुन असन काम करे कि हमर क्षेत्र चो नाम बल होए हम चो राज चो बल नाम होए और हमर देश चो बल नाम होए ये चो काज मैं असन धर ले कि बस मोके असन कर तो रहा है कि मैं भिड़न गेले काई ना काई होए दे और हुन बल निबल की काय कहते ईश्वर जो आसे हम चो साथ असन होली कि मैं बस मेहनत कर ले
3: बस परिणाम होनी
4: हाँ होनी मैं फल के नहीं चिंता करे मैं बस मेहनत कर ले एबे नहीं बल तो मोचो हुन काम ने मैं इतलो आगे बढ़ ले कि मन असन बले कि ठीक है एक गेम के छाण ले दुई गेम के छाण ले तीन गेम के छाण ले असन छाड़ून छाड़ून में रहे लेकिन मुझे मन लिए विचार रहे कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि हमारे राज्य की जो बच्चियां हैं वो आगे जाएगी बस तो हुन देश राज तो पाछे रहे सोच विचार लेकिन क्षेत्र जो हम आजू बाजू जो लोग रहे हुन लेकी मन काज में सोचून असन रहे कि ये मन के कहीं ना कहीं मिलतो रहे और हुनी विचार ले मैं कर ले अपन काम के आज नहीं बल्ले मैं जो भी आए जसन भी आए मुके नहीं पता, लेकिन मोचो आज जो सफलता है वो उन लेकी मन काज खुशी है कि आज वो लेकी मन कॉलेज जाए सोसा और अपने काज नी बल्ले अपन मन पसंद जो कपड़ा पहन सत, नी बल्ले अपन मन पसंद काज पढ़त, नौकरी जॉब जो है सफाई करत। तो उनके दखुन मुके ए भी आसन लागे से कि हाँ काही तुम्हें कर ले।
3: देख आज बोलने आज ही दिन ने

0: नैना धाकड़ बोलो ने गोटक माउंटेन गर्ल ने मंतर मैं बोले से कि ये नैना धाकड़ माउंटेन गर्ल इतरो ऊपरे ऊंचाई के छूला और फिर हुंचो पाछे फिर आमचो जो बस्तर का जी इतरो बोले बोलो ने उदाहरण प्रस्तुत कर ला सत। तो नैना के मैं ये पूछू चाहे से कि माउंटेन गर्ल बन तो का जी जो मूर ले कसन मूर होली बोल
1: ये मैं ये भी सांगले कि मैं खूब सारा गेम खेले खेल खेल खेल ले ने
0: हाँ
1: हूँ हूँ अलग रहे मैं काय खेले हॉकी स्टार्टिंग इथा ले जाए घर ले हूँ सूट बूट डालू ने दुई ठन चोटी लेकिन हूँ ग्राउंड ने तो सूट कहाँ चले थे दौड़ तो कास तो हूँ शॉर्ट ने चड्डा चड्डा टी शर्ट तो हूँ चड्डा टी शर्ट लोग मन के आंखी में तरस खाए हूँ आए मुझे आया के सांगे कि तुम्हारी बेटी तो उठा
0: असन असन पिंदे से
1: हाँ असन पिंदु नसन करे से लेका मन संग खेले से तो असन करते करते मुझे मन ले ये होए कि क्या करूं ऐसा कि मेरे को कुछ अलग करना मिले हो नहीं होए मैं 2010 ने पढ़ते पढ़ते कॉलेज ने कॉलेज ये रहे फर्स्ट ईयर रहे और मैं जाऊं हूँ टाटा स्टील था रहे उठा मैं बल्ले कि नहीं मेरे को कुछ पार्ट टाइम जॉब दे दो ताकि मैं थोड़ा अपना पढ़ाई का भी खर्चा उठा लूँ और घर की पारिस्थितिक स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि मैं उसको वो कर सकूं तो उठा मैं जाऊं रहे हाँ। तो हुन मन मोके नी बल्ले रहे उठा जो डायरेक्टर रहे हाँ। और काय बल्ले रॉकी मॉर्टिन सर है हाँ। नहीं हुन हाँ। पटेल सर है हाँ। शंकर पटेल सर है स्पोर्ट कोटा चो
0: हाँ। नाम मन के हाँ। कर
1: हाँ। ये भी मुझे ये भी काय नहीं खूब खूब दिन होली तो मुझे दिमाग लेवल थोड़े ऊपर नीचे हुए से लेकिन पर हुन मन असन बल्ला कि देख बेटा अभी तुम पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते नौकरी करोगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा ठीक है हम सोचते हैं तो हुन मन मोके दखा एक दिन दुई दिन तीन महीना चार महीना असन करत करत दखला और दखुन भाती फिर असन होली कि नहीं लड़की में कुछ तो है कुछ तो है मेहनत करने का झिझक मैं बल जाऊं जाऊं इंटरव्यू ले लेते तो मेरा नौकरी लगा देते सर कुछ तो कमा लेती मैं दिमाग ने असन ताकि घर चो काम बल होती मोचो बल होती और हूँ काम चो काम होती तो असन मोचो बुद्धि रहे लेकिन काय होली कि हूँ एक डेढ़ महीना बाद एक ठन फोन इला मोके और असन बल तो काज की एक ठन बात करे से बोल हूँ डायरेक्टर सर तो मैं बोलते हाँ जी सर बोलिए तो हुन बले से कि नहीं एक ठन काम है अगर आपको एक महीना घर से अलग जाना दूर रहना होगा तो आप कर लोगे घर पे मान जाएंगे मैं बोले सर काम अगर अच्छा है बुरा है उससे मेरे को मतलब नहीं है काम ऐसा रहे कि मेरा इज्जत रह जाए मेरा ईमान रह जाए तो हुन बले से नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है अगर आप बोलोगे तो हम बात करेंगे तो हुन कॉल है एव रहे हुन टाटा स्टील जमशेदपुर चो
0: अच्छा
1: हुन हम चो भारत चो पहली महिला है मिस बछेंद्री पॉल मैडम
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: हुन चो फोन एव रहे इथा कि बस्तर चो एक जनले की असन दे कि हम कोई बाहर अभियान काज जातो काज हुन पहाड़ो काज
0: हुन बले तो माउंट एवरेस्ट हाँ सबले पहल महिला
1: हाँ तो हुन असन होली ते मोचो मन असन होली कि नहीं नहीं मैं तो मना लूंगी अपनी मम्मी को लेकिन घर ने असन दशा रहे कि मोचो आया मोचो बिना रहे नहीं एक दिन पर मोचो भाई मन नहीं रहे था तो हुन के मैं बल्ले कि कुछ नहीं होगा मम्मी मैं पहले गई थी ना 10 दिन के लिए वैसे कैंप अटेंड करके आऊंगी तो मैं चाय बोले से हाँ ठीक है 10 दिन के लिए है तो ठीक है असन बोलू भाती मैं गेले उठा टाटा नगर उठा ले हम गेलू नी बल्ले इंटरनेशनल भूटान भूटान चो 12 पास रहे तो हम पूरा राज्य ले अलग अलग राज्य ले 12 महिला मन रहा उन अभियान के करतो काज हमके नी हाउ बल्ले 30 दिन लाग ली हूँ 30 दिन से अभियान में सबले नानी मैं रहे और बाकी मन सब 40 साल 35 साल है ना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मन और मैं कहीं नहीं मैं हूँ लग कहीं नहीं लेकिन मोचो विचार मोचो गट्स मोचो इच्छा शक्ति हूँ दखुन हूँ मन इतलो खुश होत कि आसन बोला थी लड़की में ना कुछ तो है ये लड़की में कुछ तो है अब होए दे कसन नहीं बस्तर चो माटी आए नहीं बस्तर चो पानी और हवा आए तो हूँ तो होए दे तो आसन बोला तो एक असन मोड रहे कि हमके नहीं हुन एक महीना जो हुन ले हमके कम कर तो रहे कि नहीं सबमिट नहीं हो पाएगा मौसम खराब है नीचे जाना है तो मुझे मन बल्ले कि हे भगवान इतलो दूर मेहनत करूँ हुन लास्ट मुकाम ने कसन पीछे नहीं नहीं नहीं बल्ले मैं फिर हुन सोच विचार करूँ पूछे से कि नैना कसन कर तो रहा है तुझे मन ने काय बल्ले से हुन बछेंद्री पाल मैडम बल्ले से मैं बल्ले मैडम अब इतलो दूर तो हम लोग आ ही गए हैं अब 1 लाख लास्ट है चाहे जो हो जाए ये महिला शक्ति है तो आगे बढ़ेगी और हुनी गट्स बांधून हम नी बल्ले हुन लहसुन चो सूप के प्यून उबालून भाती हुन लहसुन चो सूप के प्यून हम हुन रात के

0: 8 या 9 बजे चलो स्टार्ट कर ला उन चलते चलते नी बल्ले सुबह के 2:30 बजे सुबह रात आधी रात सब पहुंच लू हाँ पहुंचून तक तो जितलो एक्सीडेंट मतलब रहे नहीं उन मतलब के भी जिंदगी में भूल तो लाइक नो है क्योंकि महिला महिला चो टीम है 10 टन कांड है उन बर्फ ने है ना वहाँ छत बोल तो नहीं आए है ना पानी बोल तो नहीं आए ना चांद बोल तो नहीं आए ना सूरज बोल तो नहीं आए ना रोशनी बोल तो नहीं आए ना नेटवर्क नहीं आए उन असन बोलो ना उठा गेलू जाऊन हम 4 बजे हम नीचे उतर लू नहीं बल्ले फॉरेन चो पुरुष मन चो टीम रहे हुन मन हम चो हुन फुट प्रिंट रहे नहीं उठा चढ़ून चढ़ून हम चो लग इला हुन मन ए उन भांति बलसत कि मानना पड़ेगा आप लोगों को कि भारत की जो महिलाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं तो उठा ले एक जो जुनून रहे मुचो हुन एकदम उड़ान भर ली कि हम जो पुरुष थे वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और हम महिलाएं कर लिए तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है तो ये ऐसा था कि वो जो समय था वो हमारे लिए बहुत मोरेबल था तो 2010 से मुझे एक चीज मिला कि बछेंद्री पाल मैम के साथ एक अभियान में मैं शामिल हुई टाटा स्टील के थ्रू और वो जो कर रही हूँ आज यहाँ स्टार्टिंग से अभी तक वहीं से चल रही
1: है ये तो खूब अच्छा गोट के मेहनत तुम्हें मोर कर लगी बोलो ने कोनी बोले लोग हो जो लगी इच्छा शक्ति आसे उनके खिंडिक सहा हो तो जरूरी है कहे ना कहा ले उन मन के मार्ग मिरे से रास्ता मिरे से बाट मिरे से और फिर हुन बाट के धरुन फिर आगे जा तो कोशिश कर लो ने हुन ऊंचाई की हमी हम रुक सकू ने तो देखा ने ना धकड़ी इतरो अच्छा अच्छा गोट मन के तुम्ही सांगा से मानतर तुम जो जीवना चो कितरो अच्छा और बुरा अनुभव बोले रहे ने तो जितरो बोले तुम पढ़ाई लिखाई तो कर ला खेल कूद बोले मन ने बोले खूबे आगे रहो ये मैं सुन ले से सफाई बाटे मैं बोले तुम जो जानकारी के खुजुक मोरिया ले तुम जो नाव के सुन पाछे फिर हूँ तब मुके ये देखा पढ़ ली कि तुम्हें पढ़ून लिखून संगे संगे खेल संगे संगे जसन की कई ठन मुसीबत बोले तुम चो लगे हेउ रहे तो उन मुसीबत मन के जसन माउंटेन ने चेक तो काजे कई खार तो असन होली कि नै ना धाकड़ होता माउंटेन ने चेकते चेकते मरी होली असन बोले खबर मिरू रहे तो असन तीज मन के तुई कसन सामना कर ली
0: दक असन आए नहीं हुन दृढ़ शक्ति बहुत जरूरी है और मैं तुम्हारे से कि हुन सपाए लोग जो हम जो बस्तर चुआ जो हम भारत चुआ हुन सपाए चो आशीर्वाद मुझे लगा से तो हुन चो आगे मैं काके नहीं माने तो सपाए लोग चो आशीर्वाद मुझे लगा से ये चुका मैं सब के आभार बने से तो हुन हमेशा रहे से काय बोले से कि जिंदगी रहेगी तो पता नहीं क्या कर लेंगे लेकिन लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे तो ये मुझे विचार है कि हुन सब जो आशीर्वाद के बे बलकाचो संग मिले से तो सबसे पहले आशीर्वाद धरे से क्योंकि आशीर्वाद इथा नहीं तू था काम है से
1: कहा ना ले कहा काम है से रहे से
0: तो असन कितलो मुसीबत इला और हुन मुसीबत ले मैं मन ले बस असन रहे जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा होगी मेरा काम मेहनत करना है
1: बिल्कुल बस तो आज हम जो छत्तीसगढ़ जो बस्तर जो नाव होली से तुम जो कारण ने कि महिला शक्ति काय काम के करुक नहीं सके दे बोलते बोले ने हुन साहस जो दूसर नाव नैना धाकड़ा है तो असन साहस के तुम्ही ऊंचाई के धरला हुन चो काजे कैक ठन सम्मान मान सम्मान तुमन मन के मिरली से तो हुन मान सम्मान पावतो के कसन लागली और सबले बड़े सम्मान तुम चो काजे काय मिरली
0: देखा असन आई कि हुन नी हाउ बल्ले मैं CGPSC चले से हम जो छत्तीसगढ़ ने और कितलो सारे एग्जाम हुए से तो उठा मुझे नाम चले से तो लोग बाग असन बले से हुन नैना सिंह धाकड़ जो नाम ऐसे नहीं हम जो 5 नंबर बन ली हम जो 2 नंबर बन ली तो मैं कहे नहीं बले कि मुझे नाम ऐसे तो मैं बहुत प्राउड फील करे से मुझे प्राउड मोमेंट तो वही आए कि हुन लेकिन मन का जो मैं विचार धरू रहे हुन सक्सेस होली तो हुन मुझे विचार रहे हुन सक्सेस होली और ये जो सम्मान मान सम्मान जो बात आए हुन खूबे सारा मान सम्मान मुझे लगा से और लोग मन चो प्यार मुके मिल ली तो हुन चो काज मैं धन्यवाद करे से लेकिन जो रहे हुन 2022 ने मुझो नवम्बर ने जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा हम मुके मिल ली हुन सम्मान मुझ काज खूब गर्च रहे काय काज जब मैं जाऊ रहे उठा हिमालय ने तो लोग मन खूब सारा हुन एक न्यूज समाचार चलाऊ रहे हम ये चो काज खूब कर लू और हम लोग ने इसको बढ़ाया हम लोगों ने ये किया हम लोगों ने बेफिजुल चो काम असन बल तो बोले हुन मौत चो खबर बली था खबर ले छप ली कि नहीं नहीं वो तो मर गई है उसका डेड बॉडी खींच के ला रहे हैं घसीट के ला रहे हैं असन बलून भाती अफवाह फैलू रहे हैं उन सपाई मन के बल धन्यवाद करे से मैं कि हुन मन असन बलून और मुझे नाम प्रचार करुण दय से तो और अच्छा से लेकिन ये राष्ट्रपति भवन ने मुझे बढ़तो काज रीजन जो रहे अवार्ड जो जसन मोके

0: अवार्ड मिल रही हूँ, खूब भाग्यशाली बात है, क्योंकि ये अवार्ड काज नहीं हूँ कितरो साल ले लोग बाग बसु रहे से, लेकिन मुझे काम आसन रहे कि मैं एक साथ मतलब विश्व की दो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहस से, मतलब पहली हाईएस्ट चोटी और चौथी हाईएस्ट चोटी को मैंने एक साथ फतेह किया 10 दिन के कम समय में, और भारत की पहली महिला का खिताब लिया। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा अवसर था, और साथ में जो मतलब लगातार मैं हर माउंटेन्स पे जा रही थी तो उसके कारण से मुझे ये अवार्ड मुझे दिया गया। लेकिन इस अवार्ड के लिए मैं बहुत भाग्यशाली थी, लोग मेरे अवार्ड्स को देख रहे थे, मैं बस वहाँ सुनने गई थी, क्योंकि जब मैं आई तो लोगों ने ये बोला अरे बस्तर की बेटी, बस्तर की बेटी और बस्तर की एवरेस्टर। तो बस्तर की एवरेस्टर और भारत की एवरेस्टर में बहुत फर्क है, शब्दों का भी बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा मुझे मन में खेद था कि मैं बस्तर की हूँ मैं माना, लेकिन वो भारत की बेटी बन चुकी है फिर भी आप उसको बस्तर पे ही रखे हो। तो मेरे मन में ये विचार आता था कि क्यों। तो जब वहां से जब अनाउंस हुआ कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने विश्व की दो ऊंची चोटी फतेह किया है माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहस, नैना सिंह धाकड़, बस ये सुनने के लिए मैं वहां बैठी थी। तो वो मेरा प्राउड मोमेंट था। और अवार्ड तो बहुत बड़ा अवार्ड है ये हमारे बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, क्योंकि ये पहला अवार्ड है छत्तीसगढ़ राज्य का, तो बहुत बड़ा अवार्ड है जिससे कि सबको इस अवार्ड के लिए मतलब इतनी खुशी थी कि मतलब बस्तर की बेटी को मिला, बस्तर की बेटी को नहीं मिला, सब ये सोच रहे थे कि वो हमें मिला। तो ये जो खुशी था ये सबके लिए था, ये जो खुशी का जो क्षण था, मतलब 3 साल में ये क्षण को जी हूँ, तो ये इतना बड़ा वो पल था।
1: अभी भी ऐसा लगता है उस क्षण को जी रहे हैं, और आपकी जो ऊंचाइयाँ और साहस की बातें सुनकर सबकी रूह कांप जाती है कि महिला होकर इतनी बड़ी बड़ी चोटियों पे आपने फतेह हासिल की है। और फिर असनी जितरो बले तुम जो विजय होली से उनचो काज बस्तर चो भारत चो सफाई चो शुभकामना बले रहे। मंत्र देखा नैना ऐसा नहीं कि आमी तो पढ़ून लिखून जाऊँ से और महिला शक्ति चो गोटक उदाहरण तुम्हें प्रस्तुत करला सो, तो ये महिला मन के जसन की तुमके दखुन भाती तो हुनमन साहस जो काम करो मूर कर सो मानतर हुनमन के और बढ़ा तो काजे तुमचो बाटले कहीं संदेश असन हो सके युवा महिला शक्ति हो नाले कहीं बले महिला शक्ति के हमी काय संदेश दे सकू।
0: देखा मुझे तो एक ही निर्णय आए, मुझे छत्तीसगढ़ जो सपाई बहन बस्तर जो सपाई बहन भाई मन का एक संदेश आए, कभी खुद को कम मत आकिए, कभी खुद को कम मत आकिए, हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है, अपनी प्रतिभा को पहचाने और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर अपने सपनों के लिए उड़ान भरे। क्योंकि ये युवा जो संदेश है मैं उन युवाओं के लिए देना चाहती हूँ कि जो कहते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, मेरे पास उसकी कमी है, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है कि हम उन चीजों को फेस नहीं करते, सामना नहीं करते। तो युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता,
1: मेहनत करना पड़ेगा,
0: कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है सफलता का, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए निरंतर और खुद पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। याद रखिएगा हर ऊंची चोटी की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। तो ये मेरा निर्णय है कि एक हिमालय ही फतेह करना है ये जरूरी नहीं, एक अपने कोई भी निर्णय को लेना है तो उसके लिए खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लोग तोड़ेंगे, 10 बातें बोलेंगे और आपको पीछे हटने के लिए वो पूरा भरसक कोशिश करेंगे कि आप हटें, लेकिन आप अपने अंदर का एक दृढ़ निश्चय रखें कि प्रभु पर अपना पूरा समर्पण दे दीजिए कि वो बैठे हैं ना, ईश्वर है तो कुछ भी नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, और वो ईश्वर हमारे माँ बाप भी है, तो ये हमारे लिए वो बखूबी निर्भय करता है कि अगर हम उनका विश्वास जीतते हैं तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमें वो सफलता हासिल होगी।
1: तो नैना जी जसन की तुम्ही इतरो अच्छा अच्छा गोट के सांगला कि आया बाबा चो सपोर्ट तो तुमन मन के खूबे मिरली मंतर असन जसन एवरेस्ट चो चोटी ने चेक तो काजे सबले पहल तुमन मन सांगलास कि बचेंद्री पाल संगे भेंट हो रहे, तो और बले आगे कोनी तुमन मन के जोन मदद करला ये बात चेक तो काजे, तो हुन मन के सुरता करुण भाती हुन मन चो अनुभव के बले हम चो पूरे सांगा।
0: देखा सबसे सबसे पहले मैं तो ये एवरेस्ट काज में बले से हम जो पूर्व आईएएस रहे रजत बंसल सर, मैं उनके सह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर का, अगर वो मुझे कहीं से भी सुन रहे होंगे तो मैं सच कहती हूँ कि वो इंसान ने मुझे एक बार में पहचाना। कि कहते हैं ना कि एक आईएएस अफसर का जो नजर होता है वो एक ढांचा दिखा देता है कि आप क्या हो ना, क्योंकि उन्होंने पूरी किताब से खेला था और मैं सिर्फ मेहनत से खेली थी। तो एक होता है ना कि बस मैं गई हूँ चैम्बर पे और देखे बोले कि ये है छत्तीसगढ़ की पहली एवरेस्टर, इसको देख लो, चैम्बर में ऐसा बोले फर्स्ट टाइम मिलने पे, तो मैं शॉक्ड हो गई कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर। तो होता है ना कि एक जो नजर होता है और वो उनकी जो जुबान थी, मैंने उसे डन करके दिखाया कि हाँ सर मैं आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे एवरेस्ट करना है। तो सबसे बड़ा जो आश्रय है एवरेस्ट का, तो मैं वो रजत सर को देना चाहूंगी। अच्छा। अगर वो शायद ये बात नहीं बोले होते या मेरा सहयोग नहीं किए होते तो शायद मैं इसके पीछे टाइम और लगता, क्योंकि पहले से भी मेहनत कर रही थी। और इसके पहले जितने भी लोग थे, जैसे हमारे विवेकानंद सर थे, आईजी सर थे, जो पूर्व आईजी सर थे हमारे, उन्होंने मेरे को 2018 में 18-19 में बहुत मेहनत किया उन्होंने भी मेरे लिए। और उनके साथ हमारे संग्राम भैया थे, अनिल लुक्कड़ भैया थे, शकील रिजवी सर थे, और ये ऐसे नाम लूँ तो मतलब अनगिनत लोग हैं, जैसे अनएक्सप्लोर बस्तर के जीत सर हैं, पर इन लोग ने मतलब छोटे छोटे मुकाम के लिए मेरे को सपोर्ट किया। अंजार भाईजान है, सच कहूँ मतलब जितने भी लोग हैं उनमें छोटे छोटे चीज़ों के लिए मेहनत किया है। कहते हैं ना कि एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अगर किसी ने सुई भी दिया है ना तो वो भी बहुत कीमती होता है। तो ये मेरे लिए वही था कि किसी ने सुई दिया, किसी ने धागा दिया, किसी ने कुछ फटा कपड़ा दिया कि सिलने के तरीका कैसे है, तो ये चीज़ मुझे सिखाने का मौका दिया। उन सबका मैं जिंदगी भर शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो लोग नहीं होते तो शायद मैं अपना मुकाम नहीं हासिल करती। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को देख मेरे पास ऐसा हुआ कि एक बड़ा रास्ता बनाया और उस रास्ते पर मैंने अपना एम सेलेक्ट किया। साथ ही हमारे जो NMDC के दास सर थे, प्रशांत दास सर थे, तो उन्होंने जो फंडिंग का मतलब रजत सर और इन्होंने मिलके जो फंडिंग का जो मेरे को स्पॉन्सरशिप दिलवाया था, तो इनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। और हमारे बीच अभी नहीं रहे डिकाते सर स्पोर्ट्स वाले, उनका भी बहुत मतलब था कि वो एक कागजदे सहयोग बहुत था। तो मैं कहती हूँ कई लोग खींचते हैं, कई लोग बनाते हैं, लेकिन अगर हम अटूट रहें अपने कार्य के लिए तो कहीं ना कहीं वो मंजिल हमें मिल ही जाता है। बस अटूटता जरूरी है। तो इतने सारे लोग थे कि मैं नाम लेते थक जाऊंगी, सभी लोग हैं, सभी हैं कुछ ना कुछ रूप से मुझे सहयोग किया ही है। और सबसे अच्छा चीज बताती हूँ मैं आपको कि बस्तर के शिक्षा भाग का जो संघ था उन्होंने मेरे को सबसे पहले सपोर्ट किया था। जब मैंने एवरेस्ट का सिर्फ प्लानिंग किया था तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था कि उन्होंने अपने सैलरी का किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 500 करके मेरे को दिया था, नहीं हो बोल के 10,000 या 20,000 रुपए मैंने वहां से कलेक्ट किया था। तो मेरे दिमाग में यह था कि क्राउड फंडिंग के थ्रू अगर मैं जाती हूँ तो बस्तर के हर वो युवाओं को वो क्षण मिलेगा, वो पल मिलेगा कि हम किसी के दुख को समझे, किसी के मुसीबत को समझे, किसी के लक्ष्य को समझे तो हम सहयोग दें। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट सर्विस में है तो हमको ये पता है कि हम अपने परिवार को पालेंगे, तो वो परिवार को ना पाल के अगर आजू बाजू भी नजर देखे ना तो हमको अगर 10 रुपए किसी को देंगे तो हमारा कम नहीं होगा, ईश्वर देने वाला है ना। और वो अगर मुकाम हासिल करते तो वो जो सबसे बड़ी संतुष्टि है वो कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके हमारे सोनार पाल के हैं शर्मा सर, राकेश शर्मा सर करके, तो एकदम मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने बिल्कुल जी जान लगा दिया था मुझे ये करने के लिए कि नाना जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन उनका वो वही सहयोग रहा, बाकी तो फिर यही सब कुछ जगदलपुर से जितना जो सहयोग बना वो सब यहीं से रहा।
1: नैना जी तुम मन जो इतरो अच्छा अच्छा गोट के तो हमें गोठिया से और इतरो बड़े बड़े काम तुम मन कर ला सा, तो मैं बोले से केबे केबे कहीं असन गोट बल्या से जो तुमके खूबे परेशान करे से या दुख पहुँचाए से, असन कहीं गोट ये मुकाम इतरो हासिल कर तो पहल बोलो ने रास्ता ने कहीं कठिनाई जेके तुम सुरता करुण भाती एकदम मतलब तुमके परेशान करुण देश असन कोई गोट ठा से जाले उनके बोले सांगुन देश।
0: सबसे बड़े गोट महिला हो तो बड़ी गोट आए कि महिला मन के कहाँ है बलनी हुन जो दृष्टि पड़े से नहीं लोग मंचो हुन बेकार हो से हुन अच्छा नहीं आए। तो मैं असन सोचे कि भगवान मेरे को क्यों लड़की बना दिया, कि हर चीज में मुझे क्यों रोका जाता है, क्यों मुझे लड़की बना दिया। तो मुझे मन में ये खेद रहे कि सच में मेरी मम्मी को ना मेरे को लड़का पैदा करना था, वो मेरे को लड़की पैदा करके गलत कर दी, तो मुझे मन में ये खेद रहे। लेकिन जब मैं अपन दृढ़ इच्छा के साथ ले तब मुझे मन में ये रहे कि बस कि बेटी है तो दुनिया है, बेटी है तो संसार है, बेटी है तो पूरा यूनिवर्सल है। तो ये बेटी का जो निर्णय था मुझे बाद में समझ में आया। तो ये मन का जो खेद था, मैं हमेशा ये सोचती थी कुछ भी मुसीबत आ जाए तो मन में ये रहता था कि हाँ मैं लड़की होके बहुत प्राउड मोमेंट करती हूँ, अच्छा हुआ कि मैं लड़का नहीं हुआ। तो ये था मेरे
1: सुंदर गोठ के तो तुम्हें सांगला सुनैना और ऐसा लगे से कि गोठियाते चरंग तुम चो संगे मातर का है कि हम जो कार्यक्रम जो समय बल्ले होते रहे से और मैं लेकिन गोटक गोठा और पूछे से तुमके कि तुम्हें हम जो महिला शक्ति चो जो गोटक उदाहरण बनन भाती तो इतरो अच्छा गोठ के सफाई चो पूरे आने साहस और फिर जोन बोले दुख तकलीफ मेहनत मसागत कर लो ने हो से हूं तो आए मंत्र इतरो अच्छा ऊंचाई करुण भाती बोले बोलो ने लोग मन छो जो आशीर्वाद है हूँ तो आशे छी आप जो अपन मन लगे और तुम

0: में चढ़ लो पर पैर जमीन पे रखो,
1: जमीन पे।
0: तो ये जो जमीन पे रखने वाला पैर जिसको समझ में आ जाएगा ना, वो कभी अपने आप को ये नहीं समझेगा कि मैं भगवान हूँ, वो ये समझेगा कि मैं तो मानव से भी तुच्छ कण हूँ। बस वो कण को हमें समझना है, ये सबसे बड़ा बात है।
1: बहुत बड़े बात मनमन सांगलास कि आम के आप लोग भूई ले जुड़ी रहता रहे
0: जी।
1: हाँ तो नैना इतरो अच्छा अच्छा गोठमन के तुम चो हरिक चो उदास चो और मेहनत चो परिश्रम चो सब फाय गोठ के तुम्हें सांगला। तो केबे केबे तुमन मन बलो ने आम चो बस्तर चो बेटी चिया मानता राजी भारत चो प्रतिनिधित्व करे सा। तो केबे केबे ऐसा नहीं लागे कि आम चो गाँव चो कहीं संस्कृति आम चो गीत गोविंद कहीं पसंद आसे तुमके जाले उनके वाले सांगन दिया।
0: सबसे पहले मुझे जो मन चढ़े नहीं हुन यही चढ़े कि मैं दिमाग ले रहे कि मुझे सांस्कृतिक चीज के भी हम चो ले नहीं जाए। तो हुन पैर चुकड़ा आए ने कांच वाली आए है हाथ चुमूड़ी आए मतलब मुझे लग आसे। तो हुन लोग मन देखुन ये कैसे पहनी है ये कैसे पहनी है ये कहाँ पहनते हैं। लेकिन हम चो बस्तर चो साना है तो सांस्कृतिक जो आसे हम चो कल्चर जितलो बल हम चो जीवन आसे ये। तो हुन जैसन की लोक भाषा चो गीत आए हैं फोक गीत आए हुन गातो काज हैं नाचतो काज मैं तो आगे
1: ये तो ओके हम बलोने सुनिया सफाय लोग के खूब हरिक चो गोठाए मातर को नी गीत तुमके पसंद आसे जाले दुई लाइन गाउन भाती बोले।
0: हुन मैं कॉलेज ने रहे तो हम मुझे काय लेखा मन से खूब डरे मैंने तो मुझे टीम ने कोई बल लेखा होले मैं काय दूर दूर भागे काय काज मुझे आया मुझे बलू रहे कि लड़का वाला मैटर घर पे नहीं लाना। तो हुन लड़का भी थी मतलब फ्रेंड दोस्ती हम चो नहीं रहे तो हम चो टीम रहे फर्स्ट ईयर ने तो एक कंपटीशन रहे उता हम फर्स्ट ईयर रहे तो हुन गाना आसे हुन लोक संगीत चो गाना आसे खेलू खेलू खेलू खेलू रे गिदोलिया आई मांजे डांडे खेलू बस्तरिया दादा आयला अचे काय खुबे मन माने खेलू खेलू खेलू खेलू खेलू रे गिरोलिया आई मांजे डांडे खेलू बस्तरिया दादा आयला अचे काय खुबे

0: नी तुमचं गावचो इंडा बोला आमके नी भायर दादा तुमचं गावचो इंडा बोला आमके नी भायर दादा सजानी बला काय रजानी।
1: बहुत सुंदर। तो ये जो ना तुमचं आमचं संस्कृतीचं जुडाव आरो साहसचं काम ये सफाय आमचं राज्य आमचं देशचं प्रतिनिधित्व करतो का जे बिलकुल तयार असे आरो भविष्य ने बले तुमचं नाव धरलो बलो ने साहसचं नाव धरलो असं होय दे। आज आम्ही नैना संगे इतरो अच्छा गोट के गोठ्यालू की हुंचो जो इच्छा शक्ति आहे काही बले काम के करतो काजे सबले पहिले आपलो भरसा संगातो राय इच्छा शक्ति के मजबूत करतो राय और ये बल्लर बले आसे की जोन उड़ान आहे हुन पंख ले नहीं होए हौसला मन ने होए से बलून भाती उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है बस मन में आत्मविश्वास रहतो खूबे जरूरी है। तो इतरो सुंदर गोठ काजे अमी नैना धाकड़ के खूबे खूबे धन्यवाद देऊ से आरु खेल पत्रिका ने इतरो अच्छा गोठ काजे अमी तुमन मन के फेर एक हार आभार देऊ से आरु तुम जो भविष्य खूबे उज्ज्वल रहो असन शुभकामना बल करू से आरु यही संगे खेल पत्रिका आज जो अमी समाप्त करूं से सब फाय खेल पत्रिका सुनिया भाई बहन मन के मैं मैना मती करें से जुहार
2: जुहार।
3: अभी आप सुन रहे थे खेल पत्रिका। इस कार्यक्रम में नैना सिंह धाकड़ से भेंट की पूर्णिमा सरोज। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है संपत राम नाग की। संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: फोनिन लोगरस के सुन तो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो
2: फोनिन लोगरस।
1: नमस्कार दादा, मैं चिंगरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ ले इंद्रभान सिंह बोला था।
2: हाँ दादा, जुआर ना कसना सास?
1: ठीक है दादा, ड्यूटी में हूँ और ड्यूटी के टाइम खत्म हो गई से और बस आए का टाइम हो गई से दादा। और हमारे कति तो खूब आंधी तूफान रही से दादा, एक हफ्ता सारे कोई कार्यक्रम ठीक से सुन नहीं पाए, नेटवर्क गड़बड़ रही से एकदम।
2: हाँ हाँ, उन तो सफाई बात है ना।

0: गर्मी से क्योंकि रात मिल रही है।
1: हाँ, गर्मी से राहत मिली से आवाज में दिसंबर को पंडवानी गीत ला सुनू दादा, वो का पिजन बाई की आवाज में, पिजन बाई का आवाज में पंडवानी गीत, वो गीत ला सुना दिया दादा।
0: ठीक है इंद्रमान दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: स्वामी करा दादा, जोहार।

एकादशी दुआस के दिन किच्चा कहा रानी सुरेशना के पास भोजन खाए भर पहुंची और लेके थाली जब तैयारी भये सुरेशना और देवी सलेंद्री हाथ में पंखा लेके हिलावा थवे कका।

भी द्रौपदी के दासी है, एक नाम सलेंद्री है। मोर पास में बेटी के सामान रखे हो, ये तोर भाची है की चक्कत है। गाँव भर कहते बेटी की बेटो सब बहुत जन मोर भाची नहीं हुआ है, पर ये मोर राज रानी के लायक है। 12 बजे रात के मोर से घर में भोजन के थाली सजा के आज भेज देबे। सुदेशना घायल हो गए और देवी सलेंद्री ला बोले, देवी सलेंद्री 12 बजे दोपहर के बेर हो गए, कहे भाई भोजन के थाली

दीदी कथे दाई और भैया के नियत मोला अच्छा नहीं लगा तब मैं का करूं बेटी ये थाली ला जल्दी ते पहुंचा के आ जा। हाथ में थाली लिए लोटा में पानी और देवी सलेंद्री आ गए।

0: चमुंदलीस। देवी सलेंद्री भोजन लगे के पहली मन में सोचे है भगवान मोर बरते दया करे मुरारी, काबर कि अभी अगर आखी मनी दिया गे मैं थाली लस छोड़ दू प्राण लेके भाजा भगा जाऊ। ऐसे कहकर सलेंद्री और प्रेम के साथ धीरे धीरे भीतर में पहुंची।
1: हेलो पोनी लोगराज।
2: हेलो
1: यहाँ पोनी लोगराज दादा, कौन बोला ससना?
2: राम कुशल पटेल बोला था, मेरा पारा लोरमी ले।
1: पटेल दादा संगाना काय काय काम?

0: चले से आजकल?
1: सब बढ़िया है। माहौल तो अभी गर्मी के फुल गर्मी चला थी ना, तो
0: अच्छा पानी नहीं मार ले से?
1: हाँ पानी नहीं, हवा गारा चल रहा है खाली।
0: हाँ। असन जल खूब गर्मिया से यो गांव बाट ले।
1: हाँ बहुत गर्मी है।
0: हाँ।
1: पेड़ झाड़ तो सब कट कट गए, पेड़ झाड़ रही थी तो कुछ हवा आती तो कुछ नहीं
0: है। रुख राई मन वाले लगा तो रहा है और घर मन वाले बना तो रहा है, ज्यादा जुगे करुण रुख मन के नहीं रहा ने।
1: हाँ।
0: पटेल दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो कच फोन लगा ला ससना?
1: ममता चंदा का कह दे दो फिर।
0: हाँ ठीक है पटेल दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पुनीन लोगराज।
1: हेलो
0: हाँ पुनीन लोगराज।
1: पुनीन लोकरस।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा आगे ना संगास नहीं ना।
1: दादा मैं अमीर कश्यप बोले हैं ना सामने
0: हाँ
1: लगा ले।
0: हाँ और अमीर दादा कसन आसासना सांगा खूब दिन ले फोन
1: आमी
0: लगा
1: तो
0: ला
1: नगत
0: सकते।
1: नगत आसू आल तो मैं आकाशवाणी परिवार को सुना सासना।
0: हाँ मैं सफाई अच्छा हूँ दादा।
1: तू संपत नाग बोल सीस ने
0: हाँ दादा मैं संपत नाग बोले से। हाँ
1: चिता लेना तू चवाज के।
0: मुख्य चिताल चिताल लागली का। और अमीर दादा दान दानी बुनुक मुरिया लासना गाँव बाटे आजकल।
1: हाँ ये दे रोपा लगात का छिंग तैयार करूँ ना पोला पका तराय।
0: हाँ हाँ और पानी कसन आ जाले तुम चो गाँव मन बाटे।
1: पानी तो आजकल नहीं आयता ना
0: हाँ हाँ फिर
1: रोजुन शाम शाम तो बादरी धा के समान तर मारे नहीं अच्छा ले।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पानी सुविधा आसे पानी दकान दको तो पोला पका लो रासे।
0: हाँ हाँ और कोनी कोनी बीच ने तो कौन कौन बटे अच्छा मार लिसका है ना सन।
1: हो कौन कौन तो बाट अच्छा मारे से काय।
0: हाँ और अमीर दादा तुम चो गाँव बाटे हम सर की बोल बेचू आस ना।
1: हाँ बेचू ना सरगी।
0: हाँ कसन आस जल सर की होने सु।
1: सरगी बोले छाया से ना।
0: हाँ। और अमीर दादा सांगा आजी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला ससना।
1: ये आजी मके गोटो छत्तीसगढ़ी गीत सुना उन दिया सुना काय तो बीती ना उन चना के दार बीती।
0: हाँ चल ठीक है अमीर दादा तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते बेना।
1: हाँ।

0: हेलो।
1: हाँ फोन इन लोगराज।
0: हाँ भैया, योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बने तरह ले।
1: हाँ योगेश दादा, सांगा कसन आसास ना।
0: बढ़िया हन भैया।
1: हाँ और गर्मी कसन आ जाल दादा यो।
0: अड़बड़ गर्मी भैया, घर ले बाहर नहीं निकले सकने से हो जाते।
1: हाँ। और काय काय काम बुता करू आज जले आजकल तुम्ही।
0: अभी तो अब खेती में तैयारी करत हन भैया, मानसून बरसात आही
1: हाँ
0: ओकर बाद धान के बुआई काम ल करबो, तो अभी खेत में जोताई काम बराबर करे के काम ल करत।
1: हाँ। गर्मी सीजन ने काय काय लगान रोज जले सो तुम्ही।
0: अभी तो कुछ नहीं है, साग भाजी एक दूठो लगाए हम बाड़ी में, और खेत खार मन तो अभी खाली हवे।
1: हाँ। तुम्हें पानी लेने रोपा लगा हुआ ने।
0: हम ज्यादातर बुआई ओनारी के काम करथन भैया, रोपा थोड़ा से कम लगाथन।
1: अच्छा बुन तो भी क्या हुआ है। हाँ सांगा आजी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला ससना।
0: शेख हुसैन जी की आवाज में कोई भी बढ़िया से गीत सुनवा दे।
1: तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पोनी लोगलास हाँ जुआर ना कौन बोला सा सागे ना संगास नहीं
1: सुखदा काम बने हिला कोंडा गांव जिला छोटे बन जुड़ा
0: हाँ और सुखदा दादा सागा ना यूं काय का है आजकल काम बता चले से
1: आजकल है पानी बंद नहीं मारे
0: हाँ नी मारे गांव बट ने
1: हाँ बट मारे हिला जगदलपुर बट
0: हाँ जगदलपुर बट बोले कौन कौन बट मारे से ना के कौन कौन बेरा
1: गरम गर्मी कैसे ना सुन
0: हाँ गर्मी तो लागे से ही ना अशोक दादा तुम चुपार सर की मन विनवास ना विनय सतने अशोक दास प्रयाम दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो कैसे फोन लगा ला सस ना
1: चंद्रिका प्रयाम से दादा या नांगर फांद दिया
0: ठीक है अशोक दास दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पुनिन लोगराज
1: जोहार दादा
0: जोहार ना आगे ना सांगास नहीं कौन बोला सास तुम्ही
1: कावर आसले पे गोंचू दादा बोले
0: हां गोंचू दादा सांगा ना खूब दिन ले फोन लगा लिस काय नु
1: ओ तुम्ही बोले ना अमीर भाई हां बेड़ा बूता फाट बन तब शांत
0: करते हां हां जान दान नि बुनुक सार लास ना तुम्ही
1: ना जुन दादा तो काय बोले
0: कला सास बोला
1: ना जुन
0: हां पानी कसा ना जाले गोंचू दादा तुमचो गांव बाटे
1: ओ समय और दिन है बेड़ा दुका इली दादा
0: हां खूब इली ना
1: खूब इली
0: पानी का सन मार ले जाले
1: पानी बली थी नागर एक दिन नागर और चले थे
0: अच्छा नागर जब तो सनी लीने
1: आओ
0: सांगा ना जी कौन गीत के सुनते कच फोन लगा ला सर
1: मुद्रा हम कैसे अब बोलो भी गीत सुना दिया
0: ठीक है गोंचू दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना

0: हेलो पुनीन लोगराज,
1: हाँ, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम। आगे ना संगस नहीं दादा, कौन बोला सास तुम्ही
1: रामचंद्र माखीजा,
0: संगा? आज कौन गीत के सुन तो कजल लगाला सास ने?
1: आप सुनाओ। यह केदार यादव जी की आवाज में है, ये छत्तीसगढ़ है भैया, सुन लो राम कहानी। साथी मारे सूरत आ गई और आखी में पानी, भैया यही गीत लग सुनाइए आप। मौसम कैसे है सर उधर?
0: हाँ मौसम तो एबे गर्मी लागे से ही ना आजकल।
1: हाँ, एधार बदल छाए है, उमस छाए है, गर्मी हवे। हाँ,
0: हाँ, एवं
1: एधार पड़े रही थे एक दो दिन में, अभू
0: हाँ,
1: रात रात में।
0: हाँ,
1: और वैज्ञानिक मन बताते है केरल से मानसून आई 1 जून से, तो कहीं कहीं ओकर असर दिखत है हमारे
0: हाँ,
1: छत्तीसगढ़ में।
0: हाँ,
1: उधर बदल है, आज बदल है, फिर
0: हाँ,
1: धूप भी
0: हाँ, उतलो गर्मी नहीं आयो संजाल ने है।
1: है। हाँ
0: अल ठीक है माखी जा दादा, तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना, सुनाते हुए
1: हाँ दादा, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।

0: हेलो पुनील लोगरस, कौन बोला सर? दादा
1: दादा मैं दीपक यादव बोले थे।
0: कहाँ ले दीपक दादा?
1: मैं किलेपाल।
0: किलेपाल ने काय बनावा दीपक दादा?
1: मैं दादा फारस्ट नहीं रहूँ।
0: हाँ हाँ रेडियो किधर दाय सुनवास फिर दादा?
1: दादा मैं सुनवाया दादा।
0: हाँ हाँ कसन लगवा है ना ये आकाशवाणी जगदलपुर कार्यक्रम?
1: अच्छा लगवा है।
0: हाँ तुम ही तो रान राखा करा सास बोले से।
1: रान राखा कर तो रहा है ना दादा, फिर भी तो हम चुका जाए बोले अच्छा हुआ है।
0: नहीं कर तो रहा है कि नहीं सफाई भी ढूंढ रान के राखा कर लेने वाले देना ने
1: रान
0: तो
1: रले।
0: रान
1: तो
0: रले तो
1: पानी घस रहे दादा,
0: हाँ पानी संगे
1: पानी
0: संगे
1: घस।
0: और बोल जसन चाती आए बोड़ा आए और प्रकार जो राने मीरू आए नहीं ना सागवान बोले।
1: हाँ दादा ये तो आम से ही काजे है ना दादा, ये इतरो बल रान अगर आम ही नहीं सुरक्षा कर ले फिर कौन करवाए
0: कौन
1: हम।
0: आम के सफाई के किने के सोच विचार करते रहे हम के रूप मन बोल उतलो नी गोन तो रहे ने और
1: चाहे की विदेश विदेश भी तो मन ये बात ही हुआ था हम तो
0: हाँ
1: बस्तर के एकदम मन करुआ।
0: हाँ उन विदेश भी था नेता चौरान के दखन को बड़ी को आ जान हम के बोला चला गया नहीं ना रान रले ने कि चाहे गांव बेरा चाहे लगे कि जान बोस का जे बोले ऐसे
1: इतना
0: सब।
1: ने कहा उतरो गर्मी बल्ले नहीं आए, उतरो ठंड बल्ले नहीं आए हम
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: बस्तर में।
0: हाँ
1: हाँ दादा कहा कि विदेश ने तो इतरो गर्मी आ से की पता नहीं कुबे आ से। उन्होंने कहा जे हम जितरो बल्ले ये बात ये हुआ था हम जो बस्तर ने उनके कहा अच्छा लग हुआ है।
0: हाँ चला हुआ है। और दीपक दादा संगे आजकल फिर जसन कहाँ कहाँ पड़िया होता का है बूटा लगा तो वाट मन बोल करू हसना तुम्हें?
1: हाँ दादा मैं के हूँ तने ऑपरेटर काम करवाया।
0: अच्छा ऑपरेटर नहीं कोनी कोनी जसन की बाड़ी ने नाले पेर मरान ने कोनी कोनी आजकल उन मिलगिरी और बोल रूप
1: हाँ
0: मन
1: हम तो
0: सुतोसन भी थी उन।
1: पौधा मन मेरु आए उनके
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: नहीं हुआ को लगा हुआ था
0: हाँ हाँ
1: आई की असन पौधा लगा था कि जैसे आम के फायदा मेरे
0: हाँ
1: जैसे आम होली इमली होली
0: हाँ
1: कल्पी होली असन पेड़ के लगाते रहे।
0: हाँ जो तुम बोल ली शाम होली मुनगा होली नाल पर पानस होली
1: हाँ
0: ये तेतर संगे संगे मोरुख मन बोल आजकल के निकम होते जाए से उन मन
1: हाँ
0: कौन
1: दादा
0: लगान रहे
1: आई
0: खूब
1: की
0: फायदा।
1: ये सब के लगा ले आम के बोले फायदा मिले रहे
0: हाँ
1: दादा मके गोटो गीसे अंतर है।
0: हेलो सांग ना जी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सर। हाँ दीपक दादा तो जो फोन तो कर ली चुका जी हम जो बाटले गीत सुना सुनाते।

0: हेलो पुनील लोगराज।
1: हाँ दा पुनील लोगराज।
0: हाँ कौन बोला सा दादा? अगे ना संगा सुनाई ना।
1: संजीत कुमार बने दादा पांड्याड गांव परस गांव ले।
0: हाँ और संजीत दादा संगा ना आजकल काय काय काम होता करू आज तुम्ही?
1: बेड़ा बो दादा जोनर टोल नु से ना छे पानी गल मारे जाता बीच बीच ने।
0: हाँ जोन रखता सार लास भी दादा तुम्ही?
1: हाँ दादा
0: हाँ हाँ कसन
1: सारे
0: रे
1: दादा
0: जले
1: नीजी
0: सुधी
1: कलेस
0: होता काय बोला?
1: रेड कल तो नहीं दादा रेड कलेस डाउन आ जाता जोनर छे जी।
0: हाँ तो कौन कौन बेरा आसनी डाउन रू आए और कौन कौन दिन वरुची आए बोल का ने?
1: हाँ दादा मंडी निकल बिकर भी दादा इतना जो अंदर बीच तो इतना चला
0: हाँ सांगा दादा आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा रहा सास ना?
1: मनीराम मंडाई हूँ जो संगर जो गोनी गीत सुना दिया दादा।
0: मनीराम चो
1: हाँ दादा
0: संजीत कुमार दादा सांगा ना कितलो तक पढ़ला सास जल तुम्ही?
1: मच एमएससी कंप्लीट है दादा
0: काय ने कर ली सास
1: आजकल
0: जल एमएससी?
1: गणित ने कर ले दादा
0: हाँ
1: आजकल डीएलएड एग्जाम दे जाऊ रहे हैं।
0: हाँ कसन बन ली जल ना जी डीएलएड बीती पेपर रहे तो?
1: ठीक बन लीजिए दादा।
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा कॉलेज में ले दादा बीएड करेंगे वाले से।
0: नहीं कर तो रहा है ना समय रहता रहा ही कर तो रहा है कॉलेज वगैरह करूक नहीं हुआ है बी आ बी वाले ने ने।
1: हाँ दादा
0: ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पोनिन लोगराज।
1: हेलो।
0: हाँ पोनिन लोगराज।
1: हाँ राम राम भैया।
0: हाँ राम राम। कौन बोल रहे हो दीदी आप?
1: रानीगांव नगरी ले चित्ररेखा साहू।
0: और दीदी बताओ आज कौन सा गीत सुनने के लिए फोन लगाए? चल
1: पंचराम मिर्जा कोई भी गीत सुना दे छत्तीसगढ़ी।
0: ठीक है दीदी, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे फुलोक रस फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम। प्रस्तुति थी संपत राम नाग की, संयोजक थी चंद्र ऋषि ठाकुर। आकाशवाणी का ये चक्तरपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चक्तरपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो पर भी सुन सकते हैं। रात के 11 बजने को है। हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में

श्री पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।